गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में हैं। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, आइए हम आपको वो बताते हैं।

गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो

इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप 0 पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठ कर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया न लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20-30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर, वक्रतुंड सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना, इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं। और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

आप सुन रहे हैं आरती स्पेशल पहली किरण, जहां हर सुबह होती है श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के नाम। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की, या कर रहे हैं उस परंपरा की, जो शब्दों से नहीं प्रकाश से प्रार्थना करती है, यानी आरती। प्राचीन काल की आरती। प्राचीन समय में जब मंदिर नहीं थे, मंत्र पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य के हृदय में बसते थे मंत्र, तब अग्नि ही गुरु थी। ऋषि मुनि यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखारबिंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों, अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है। कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना। तो माँ के लिए ये मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है। बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है। यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र, मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, अर्थात हे कृष्ण मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जीवन की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्राप्त कराएं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाहन करता है। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण की आरती की ओर।

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए, अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीजों को स्वस्थ रखती हैं, माँ शारदे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशाल

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है जो घर से रोग

अणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत प्रेत अज्ञान रोग दुराचार पाप दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से, जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया, जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गो माता की। कहते हैं ना कि गो माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इनके श्री पग जहाँ भी पड़ते हैं वो जमीन अपने आप में ही माना जाता है कि गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, क्योंकि इनके खुर से ही गंगा का उद्गम माना गया है। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थी भीषे चिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र गाय की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी तीर्थ उनमें निवास करते हैं, यानी हमारी गौ माता में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
2: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्तीज।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

क्या बात है। एक तरफ बारिश और दूसरी जानिब ये सॉन्ग और तीसरी जानिब आज का दिन यानी संडे, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही न जाने कितने कॉम्बिनेशन हमको अक्सर चलते हुए मिल जाते हैं और हमारा फर्ज है उनको फील करना। तो आइए जबरदस्त कॉम्बिनेशन को फील करते हैं और वापस से आते हैं। आने के बाद बताते हैं आज का संडे स्पेशल थॉट क्या है और क्या कहना चाहता है

0: उम्मीद, उम्मीद दुनिया का सबसे खूबसूरत सच है। खूबसूरत है क्योंकि मुश्किल वक्त में इंसान अपनी ताकत खो सकता है, हिम्मत खो सकता है, होश, अपने रिसोर्सेज, किसी का साथ होना खो सकता है, लेकिन एक उम्मीद ही है जो उसके साथ हमेशा रहती है, तब भी जब उसके होने का एहसास भी ना हो। स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर जी अदनान, आज आपके संडे स्पेशल शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

सो भाई आज का थॉट ऑफ द डे संडे स्पेशल उम्मीद लेकर आया है। कैसी उम्मीद? वो उम्मीद जो दुनिया की सबसे खूबसूरत सच है, वो उम्मीद जब मुश्किल वक्त में इंसान अपनी ताकत खो दे, हिम्मत खो दे, होश खो दे, अपने रिसोर्सेस खो दे, किसी का इवन साथ भी खो दे, लेकिन एक उम्मीद ही होती है जो उसके साथ हमेशा रहती है, इवन तब भी जब उसके होने का एहसास भी ना हो। जी हाँ, ये उम्मीद इतनी ज्यादा खास है, इतनी ज्यादा अहम है। जरा सोचिए एक उम्मीद कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। आज का अब ये संडे स्पेशल मॉर्निंग थॉट है, थॉट कह रहा है उम्मीद के बारे में। सच में कई बार ऐसा हुआ है, मतलब मैंने तो ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं। बहुत छोटी सी अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल की बात करें, तो कई बार लोग सफ़र में जाते हैं और उनका सामान, बैग या पर्स या जिसमें उनका फ़ोन होता है, इवन सब चोरी हो जाता है। वहाँ पर उनके पास कुछ नहीं बचता सिवाय इस उम्मीद के कि वो घर तक वापस फिर से लौटेंगे। कैसे लौटेंगे उनको भी नहीं पता होता, किससे हेल्प लेंगे उनको भी नहीं पता होता, क्या होगा उनको भी नहीं पता होता है। हर कोई अपनी लाइफ में इस तरह से एक उम्मीद को लेकर चला है। जब घर वाले भी नाराज हो गए हों और समझ में नहीं आ रहा हो कि अब लाइफ में कैसे हम इन चीजों से आगे बढ़ेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या बचा है, कैसे हो पाएगा ये, तब जब मुश्किल वक्त में ताकत आपकी खो चुकी हो, हिम्मत भी आप कहीं ना कहीं खो ही चुके हों, होश भी आपको ना हो, रिसोर्सेज भी आपके पास ना रहें, और जिनका साथ था वो भी मान लीजिए चला जाता है, ऐसे वक्त में भी उम्मीद ही होती है जो हमेशा आपके साथ रहती है। हत्ता कि उसके खुद के होने का आपको एहसास हो या ना हो कि आपके पास कोई उम्मीद है, लेकिन रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। और शायद आज संडे जब हम इत्मीनान से उठे हैं, अपना मॉर्निंग शो सुन रहे हैं, तो ये बात हमारे जहन में आ रही है कि आखिर ये उम्मीद कितनी ज्यादा जिंदा है, और ये उम्मीद कितनी ज्यादा अहम है, ये उम्मीद कितनी ज्यादा अपनी है। ये कहने की कोशिश कर रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। लाइफ में ऐसी कुछ उम्मीदों से तो आप भी वाबस्ता हुए होंगे, कभी ना कभी तो फील किया ही होगा, कोई ना कोई तो बात ऐसी रही ही होगी, है ना? और अगर ऐसा है तो जरूर आप इस बात को सोचिएगा कि सच में ऐसी कौन कौन सी जगह रही है आपकी लाइफ में जब उम्मीद ने उस जगह साथ दिया है जहां आपको उम्मीद के भी होने की उम्मीद नहीं थी, वहां भी आपकी उम्मीद आई और उस उम्मीद ने आपको उन चीज़ों से आगे बढ़ाया, उन चीज़ों से आगे निकाला। सो शायद ये बहुत ख़ास, ये बहुत अहम, ये बहुत ज़रूरी बात है। आई होप कि आज की ये उम्मीद हम इतना दिया इसका जला लेंगे कि ज़िंदगी में कभी भी जब ये सब कुछ खो जाएगा तो भी ये उम्मीद का दिया जलाकर आगे निकलने की कोशिश करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। फ़िलहाल ये संडे स्पेशल थॉट था, आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा और आप इस थॉट को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे। क्या सच में आपने भी ऐसा ही फील किया है जैसा आज का ये थॉट ऑफ द डे बता रहा है? और अगर किया है तो आप भी खुश नसीब है कि आपने इस चीज़ को फील किया है जिसकी बात आज हम आपसे कर रहे हैं, है ना? तो चलिए, आज का संडे स्पेशल थॉट कैसा रहा ये हमको आप कमेंट करके ज़रूर बता दिए। और फिलहाल वक्त है आपके साथ आगे बढ़ने का, और इस हल्की सी बारिश में
एक रोमांटिक सा सॉन्ग सुनाने का। लेट्स गो। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, आज है संडे, सो 10 से 11 होने वाला है गायक गोंडा विद आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। नंबर वही होगा 6393 316 429। अभी नहीं, 10 से 11 सिर्फ आपके 89.6 एफएम वाले रेडियो पर। गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: हाँ जी, अगर तुम कहो सो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। हालांकि मुझे लगता है गाना ही पड़ेगा। आप लोग में से ऐसे कई बड़े ही शातिर लोग हैं जो भैया हमसे कॉल इन प्रोग्राम में खुद ही गवा देते हैं। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो, ज्ञान स्थली 9.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई चलिए, आज का थॉट ऑफ द डे आप तक पहुंच चुका है सही सलामत। और अब हम बता दें कि चूंकि इस वक्त आपने ट्यून किया हुआ है फ्रीक्वेंसी से 89.6 एफएम पर, इसके अलावा आप हैं मौजूद रेडियो गार्डन से, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, और साथ ही चैट बॉक्स पर आकर के सीधे जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि 89.6 एफएम की एप्लीकेशन आपको एक्सेस देती है डायरेक्ट चैट करने का लाइव शो में आपके फेवरेट आरजेस के साथ गोंडा एफएम पर। सो फिलहाल कुछ मैसेजेस आ गए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सो क्या कुछ लिखा है आइए बताते हैं। दरअसल सबसे पहले जो मैसेज आया है वहां से हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला जो मैसेज है यस वो है सविता दुबे जी का, सुप्रभात, बारिश वाली खूबसूरत सुबह, आज मस्ती वाला दिन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद अनोखी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग, एंड यस हमारे कमल नयन जी हैं, सभी आरजे को नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार, सभी सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली परिवार को, क्या बात है। और साथ ही हमको गुड मॉर्निंग भी बोला है आरजे नाम से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू आपको भी कमल नयन जी। और सविता दुबे जी ने कहा है कि सर उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, सही बात है, फिलहाल हम तो कुर्सी पे टिके हैं, नहीं मतलब हाँ वैसे तो उम्मीदों पे ही टिके हैं, सही बात है। सो मुस्तफ़ा सऊदी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। ऑफकोर्स उम्मीद बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जब कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो भी उम्मीद है, यहाँ तक कि जब उम्मीद के होने का एहसास भी नहीं है तो भी उम्मीद है, सबसे प्यारी बात ये। कमल जी लिखते हैं कि उम्मीद वो ऊर्जा है जो किसी इंसान को वो आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे वो आगे बढ़कर कोशिश करता है। उम्मीद को समझना बेहद आसान है, जब आपको उम्मीद होती है तो आपके फ्यूचर में आपके साथ कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला जा रहा होता है। उम्मीद एक ख़ास मानवीय भावना है जिसके अंदर दुख, बर्बादी, आपदा पर हावी हो जाने का मुद्दा होता है। उम्मीद में आपका मन, आपकी सोच बदल देने की ताकत होती है, जिससे नई आशा पैदा होती है जो पहले कहीं अस्तित्व में नहीं नज़र आती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां अवसाद ठहर जाता है और नकारात्मक सोच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उम्मीदों के लेकर बहुत सारी बातें हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग हम कहते हैं, लेकिन दरअसल देखा जाए तो सच में उम्मीद कह सकते हैं जीवन है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जब कुछ भी नहीं बचता तभी उम्मीद कहती है नहीं आगे बढ़ो, तब इस जीवन में उम्मीद ही उम्मीद भरी होती है, वही हमको आगे लेके जाती है। और शायद इसीलिए हम उम्मीद को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, मानते हैं, भाई डिज़र्व करती है उम्मीद। फिलहाल आज आपको क्या उम्मीद है कि हम 10 से 11 कैसे सवाल करने वाले हैं और कैसी बातें होने वाली हैं? चलिए आप जिस भी उम्मीद में लगाए हुए बैठे हों, लेकिन हम आपको अभी तो नहीं बताने वाले, लेकिन हाँ कुछ देर में हम ज़रूर आपको बता देंगे। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। सो आज संडे स्पेशल है, कुछ ऐसे लेजेंड सिंगर्स की आवाज़ आप तक पहुंचती रहेगी जिनको सुन करके आपका बचपना गुजरा, आपकी टीनेज गुजरी, इवन आपकी जवानी भी गुजर रही है और कुछ की तो गुजर चुकी है, लेकिन आज भी ये आवाज़ उतनी ही मिठास लिए हुए है, उतना ही अपनापन लिए है और उतनी ही गर्माहट मिलती है इन गानों में। आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गाना केके की आवाज़ में।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई, हमें कई चीज़ों का ख़तरा हमेशा से रहता है। अब अक्सर हम देखते हैं कि भाई पेपर में भी निकलता है, न्यूज़ में आता है कि एआई इमेज से बना करके किसी को डीफेम किया जा रहा है या कहीं उसका मिसयूज़ हो रहा है। सो फिलहाल आपको हम बता दें कि अब नहीं बनेंगी आपकी एआई तस्वीरें, क्योंकि म्यूज़ इमेज जो है फीचर वो हटा लिया गया है, जिससे अनवांटेड एआई फ़ोटोज़ बना करती थी। सो क्या है ये पूरा हटाने का मामला और म्यूज़ इमेज का काम क्या था, आइए सब बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Are you listening? Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो अब नहीं बनेंगी आपकी एआई की तस्वीरें, क्यों? क्योंकि म्यूज इमेज फीचर हटा दिया गया है। सो आपको बता दें कि भाई कहीं ना कहीं लगातार विवाद बढ़ता देख मेटा ने फ्राइडे में ही ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए म्यूज इमेज फीचर को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि कंपनी ने सफाई दी है कि उनका मकसद एक क्रिएटिव टूल देना था, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस फीचर का सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की बड़ी टैलेंट एजेंसियों जैसे CAA, जो टॉम क्रूज और जेंडाया को मैनेज करती है, इसने भी कड़ा विरोध किया। इसके बाद मेटा को बैकफुट पर आना पड़ा। सो मेटा ने हाल में ही म्यूज इमेज नाम की एक AI टूल लॉन्च किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करके उसकी हूबहू AI तस्वीर बना सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ऑप्ट इन यानी शामिल थे, यानी बिना आपकी मर्जी या जानकारी के कोई भी आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके AI इमेज जनरेट कर सकता था, जिससे डीप फेक और गलत इस्तेमाल का ख़तरा बढ़ गया था। सो अब अगर कोई मेटा में यानी मेटा AI में जाकर किसी इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करके AI तस्वीर बनाने की कोशिश करेगा तो चैटबॉट साफ इनकार कर देगा। प्राइवेट और 18 साल से कम उम्र के अकाउंट्स पहले से ही इसमें सेव्ड थे। सो फिलहाल लगातार जब से ये म्यूज इमेज का आया था फीचर, उसके बाद कई बार देखा गया कि लोग इस तरह से किसी की भी AI इमेजेस बना रहे हैं, जिसका काफ़ी मिसयूज़ भी किया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद मेटा ने इस म्यूज इमेज के फीचर को हटा दिया। यार हमें समझ में नहीं आता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आती है मार्केट में तो उसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ करने का लोग ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा लूप होल मिल जाए जिससे इसका मिसयूज़ कर लिया जाए। सो खैर ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। और कहीं ना कहीं अब जैसे हो सकता है कि कल्चर जैसा बन गया हो कि भाई कोई भी चीज़ आए तो लाओ उसको पहले इसका तोड़ निकाला जाए। और इसी तरह से ऐसे कई सारे फीचर्स आ चुके हैं। कहते ना कि कोई चीज़ होती है जो अच्छे इस्तेमाल के लिए होती, लेकिन उसको अलग ही ले जा करके शायद वो चीज़ें गलत हो जाती है। खैर फिलहाल ये म्यूज इमेज तो सच में काफ़ी रिस्की हो गया था, इससे साफ साफ लोग AI जनरेटेड इमेजेस बना रहे थे। सो इसको रोका जाना तो फिलहाल ज़रूरी था आज के सिनारियों को देखते हुए। फिलहाल इस तरह से जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता होता है कि भाई आपको भी काफ़ी चीज़ों का कंसर्न होता है, आप भी बहुत सारी बातों को सोचते हैं समझते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप भी उन चीज़ों का असर ख़ुद पे लेते हैं। इसीलिए हम आपको बताते रहते हैं कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है, ये सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल अब वक्त है आगे बढ़ने का, और इस खूबसूरत सी सुबह में जब हम इतनी बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर चुके हैं और आपस में मौजूद हैं, तो चलिए फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं एक बेहतरीन से सॉन्ग की तरफ, और वापस से आएंगे आने के बाद बातचीत का सिलसिला भी जारी रखने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और अब चलेंगे वापस से आएंगे आने के बाद, बातों की दुनिया में कई सारी बातें हैं जो आपसे कहनी हैं, जो आप तक पहुंचानी है। फिलहाल एक ज़बरदस्त सॉन्ग आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस मॉर्निंग वाले शो के ज़रिए, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM वाले रेडियो पर।

0: ओ सनम।
1: ओए छोटा सुन।
2: हाँ हाँ बता बड़े।
1: तुझे पता है पहले हम लोगों के दरवाजे खटखटा के भाग जाया करते थे,
2: और
1: अब लोगों के फोन पे व्हाट्सएप मैसेज करके डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं।
2: अच्छा शरारत ये तो वही सोच नहीं।
3: हे क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

0: सो फिलहाल यूपी में जो है वो आरटीओ की जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन हो रही है, और ऑनलाइन होने के साथ इसके चार्जेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हम सभी लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं हम ऑफकोर्स ये मान के चलते हैं भाई कि हाँ इन चीज़ों की सर्विसेज कैसे लेने कई बार हम समझ में नहीं पाते और कई बार चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं। सो फिलहाल इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको हम बता दें कि अभी आपको अपडेट दे देते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है जो आपको जानना चाहिए और यूपी में किन किन आरटीओ सर्विसेज की जो है वो कहीं ना कहीं चार्जेस बढ़े हैं और क्या है इसके पीछे रीज़न, ये सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर अदनान।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो भाई चलिए बताते हैं आपको दरअसल किन किन चीज़ों के चार्जेस बढ़े हैं और क्या है ये। दरअसल डीएल और आरसी से जुड़े कई काम अब ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसमें नया अपडेट क्या है। सो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी से जुड़ी कई सारी सर्विसेज को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। सो अब कई कामों के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो कौन कौन से काम होंगे ऑनलाइन, देखिए अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे जो काम, वो है ड्राइविंग लाइसेंस का पता लगाना, पता बदलना। यानी ड्राइविंग लाइसेंस पे मान लीजिए अब आप कहीं और शिफ्ट हो गए और आपको पता बदलना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आरसी में पता अपडेट करना, आरसी में भी आप पता अपडेट करा सकते हैं। डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई करना, कई बार ओरिजिनल जो है डीएल वो खो जाता है, मिस हो जाता है, कहीं गिर जाता है तो डुप्लीकेट बनवाना होता है, उसको भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए भी कर सकते हैं। और आरसी से लोन हटवाना ये भी हो सकता है, और कई डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज वो भी है। एंड ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं

जहां लागू हो वहां पे कर सकते हैं, पता का प्रमाण, इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले परिवहन या फिर सारथी पोर्टल पर जाना है, फिर अपना स्टेट चुनना है, आप उत्तर प्रदेश से हैं या महाराष्ट्र से हैं, एमपी से हैं, जिस भी राज्य से हैं वो चुनना है। डीएल या व्हीकल सर्विसेज जो है इसका विकल्प चुनना है, डीएल या व्हीकल सर्विसेज। इसके अलावा संबंधित सेवा का सेलेक्ट करना है कि कौन सी सेवा आप ले रहे हैं। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ऑनलाइन फीस जमा करना है और एप्लीकेशन नंबर से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं आप। सो किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है? भाई जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो बिज़नेस करते हैं या नए ड्राइविंग लाइसेंस के जो एप्लीकेंट है वो, और दूर दराज के एरिया में रहने वाले जो नागरिक हैं जो बार बार नहीं आ सकते, जिनके लिए दूर पड़ता है मुख्यालय या ऑफिस, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। सो क्या सभी सर्विसेज ऑनलाइन होंगी? बात ये भी है भाई, सवाल आता है कि क्या आरटीओ जाने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? तो नहीं, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। सो कुछ सर्विसेज में अभी भी आपको फिज़िकली वेरिफिकेशन के लिए या फिर बायोमेट्रिक के जो प्रोसेस है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन डीएल और आरसी से जुड़े कई सारे जो जनरल काम हैं वो अब कॉन्टैक्टलेस तरीके से अवेलेबल हैं। सो नागरिकों के लिए क्या है? सिर्फ इसकी आधिकारिक यानी परिवहन पोर्टल का इस्तेमाल करें, आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं, इसके अलावा आप किसी और वेबसाइट पर ना जाएं। सभी डॉक्यूमेंट्स सही और अपडेटेड रखें और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास सेव रखें। किसी भी अनजान वेबसाइट या एजेंट से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सो फिलहाल आरटीओ से जुड़े अगर आपका कोई काम है, डीएल से जुड़ा, आरसी से जुड़ा या आरटीओ के कोई और जनरल जो सर्विसेज हैं उनसे जुड़ा, तो फिर आप भी घर बैठे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि ये जो आप करेंगे, आपको जो सर्विसेज मिलेगी उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं पूरी तरह से। सो मुझे लगता है कि अब आप भी इस बात को जान गए हैं और कहीं ना कहीं आप भी इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। अगर आरटीओ से जुड़ी कोई सर्विसेज है तो घर बैठे आप सारथी पोर्टल पर या परिवहन पोर्टल पर जा करके अपना काम करा सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आप तक पहुंच गई है और आप इसका फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे, उठाना भी चाहिए, क्योंकि आप ऑफिस तक जाएं उससे बेहतर है कि आप घर बैठे जो भी चीज़ें आपकी मुमकिन हैं वो आप यहीं से कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो इजीली अपने काम को कर पाएं, आपका वक्त भी बच जाए और आपका काम भी हो जाए। क्योंकि हम तो भाई यही चाहते हैं कि आपको कम से कम चीज़ों में अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल आइए अब चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, जो कि ज़बरदस्त सॉन्ग है और संडे स्पेशल चूँकि ये एपिसोड हो रहा है सो जाहिर सी बात है स्पेशल सॉन्ग्स का होना लाजिम है। और फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

So, मुझे लगता है भाई इतने वक्त से हम बात लगातार करते चले आ रहे हैं, तो लाओ अब सवाल आपको बता ही देते हैं कि आज कॉल इन प्रोग्राम में कौन कौन से सवाल होने वाले हैं 10 से 11 के बीच गाय गगुंडा विद आरजे अदनान में। सो पहला सवाल तो ये है कि देखिए, आज भी कौन सी ऐसी चीज़ है, यानी कौन सा ऐसा गाना है, चीज़ तो खैर नहीं कहेंगे, कौन सा ऐसा गाना है जिसे गा करके आपके तुरंत ही मूड चेंज हो जाता है, यानी जैसे ही वो गाना आप सुन लेते हैं वो गाना आपका तुरंत मूड बदल देता है और आप गुनगुनाने लगते हैं। कोई एक गाना सभी के लिए होता है, हो सकता हो कोई सैड सॉन्ग हो सकता हो कोई रोमांटिक सॉन्ग हो सकता हो कोई पार्टी सॉन्ग हो सकता है कोई हैप्पी सॉन्ग हो, इस तरह से कोई भी एक गाना ऐसा बताइएगा जिसे सुनते ही आपका मूड तुरंत बदल जाता है और आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। एंड गोंडा वासियों के लिए स्पेशली एक सवाल और होने वाला है कि गोंडा शहर की कौन सी ऐसी जगह है जहां आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल बिताया है। सो उस एरिया, उस जगह, उस सार्वजनिक जगह या वो आपकी कोई जगह हो उसको ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये दो सवाल जो है आज मुख्य रूप से चलने वाले हैं 89.6 FM के सवाल जवाब वाले सेशन में, यानी 10 से 11 के बीच काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप बताने वाले हैं, आप शायद गाना भी गुनगुना देने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग ज़रूर होता है हमारे आसपास जिसको हम इतना ज़्यादा चाहते हैं कि उसके सुनते ही हमारा मूड जो है वो तुरंत बदल जाता है और कहीं ना कहीं हम उसको गुनगुनाने भी लग जाते हैं। सो इस तरह से हमारे ख्याल से आपके साथ भी होता ही होगा, जाहिर है हम सब लोगों के साथ होता है, सो आपके साथ भी हो ही सकता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सो ऐसा कुछ भी है तो आप भी हमसे बताइए, और मुझे लगता है कि आप ज़रूर बताने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से कई सारे सॉन्ग्स जो हैं वो हमारे आसपास होते ही होते हैं। तो चलिए मुझे भी आपके बताए जाने का इंतज़ार है और देखते हैं कि भाई आज आप क्या क्या बताने वाले हैं, क्या क्या सुनाने वाले हैं। और अब आइए चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, वापस से आएंगे। सो कहीं ना कहीं हम जानने वाले हैं आपसे इन दो सवालों का जवाब खुद आपसे, आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

हाँ जी, इस गाने के बाद हाजिर हो रहे हैं सवाल बड़े ही अहम और दो से है। क्या है? अगर आप कोई ऐसा गाना है जिसे सुनते ही आपका मूड चेंज हो जाता है और आप गुनगुनाने लग जाते हैं, पहला। दूसरा है, गोंडा शहर की वो कौन सी जगह है जहां आपने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए हैं।

0: क्या बात है भाई। सवाल ये था कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपका फौरन ही मूड चेंज कर देता है, उसको सुनते ही आपका मूड चेंज होता है और आप गाने भी लग जाते हैं। साथ ही साथ गोंडा में वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपका सबसे यादगार पल अभी तक गुजरा है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो चलिए, वक्त हो गया है आपसे बात करने का। 10 बज चुके हैं, 10 से 11 कॉल इन प्रोग्राम गायगा गोंडा विद आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

0: सवाल बड़ा ही सिंपल सा, मज़ेदार, जवाब उससे ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आज उस गाने को टच करने वाले हैं जो आपका मूड सडन चेंज कर देता है, जिसको सुनते ही आपका मूड चेंज होता है और आप उसको गुनगुनाने भी लग जाते हैं। साथ ही गोंडा की ऐसी जगह की बात जहां आपकी सबसे बेहतरीन यादें जुड़ी हुई है, सबसे अहम वक्त गुजरा है। सो चलिए सुनते हैं वन बाय वन करके और देखते हैं कौन है इस वक्त कॉल पर आज सबसे पहले कॉलर के रूप में। हाँ जी हेलो।
1: छोटा बच्चा चमच के मुझको आँख दिखाना ना, अकल के कच्चा चमच के मुझको ना समझाना ना, ना दिन धन्ना ना दिन धन्ना नाच नचा दूंगी।
0: ये किस बच्चे ने कॉल कर लिया है? आपके पेरेंट्स कहाँ हैं?
1: मेरा पेरेंट है बहुत दूर। अच्छा। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा पेरेंट बाहर ही घूम रहा है।
0: अच्छा।
1: मैं सविता दुबे बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मैं पूछने वाले थे बच्चे आपको यहाँ का नंबर कैसे मिला?
1: यहाँ का नंबर मेरे को मिल गया, रेडियो सुनते सुनते मेरे को मिल गया। पहली बार मैंने आपको फोन की थी इसी फोन पे नंबर पे, तो मिल गया नंबर।
0: क्या बात है। तो चलिए अब नंबर मिल गया है तो इस सवाल का जवाब भी आप दे दीजिए जो हमने आपसे पूछा है।
1: हाँ, तो जब ये गाना आता था बचपन के दिनों में खो जाती थी, मेरे को अच्छा लगता। और एक गाना है, वो गाना है बेंगोली, ताकि रविवार को शो आता था बच्चे लोगों का, उसमें ज्यादा बजता था। ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है, बेंगोली गाना है, मैं गाऊं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: टिया टिया टिया आज पड़ा गई था के, टिया जाबे शोशुर बारी नौलक पड़ा ना के, समझाऊं?
0: हाँ समझाइए, इसका मतलब क्या है?
1: टिया मतलब बंगाल में तो तोता को टिया बोलता है, टिया पाखी। बच्चे लोग, बच्चों को भुलाने के लिए ये गाना गाया गया कि टिया पाकी रहती है अलग गांव में, उसका गांव का नाम है औचपाड़ा गाय, और टिया भी जाएगी अपना ससुराल तो नथनी पहन के, यही बोला गया गाना में।
0: वाह, तो बचपन का दोनों गाना आपको याद है, अब चाहे छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, और चाहे आपने बंगाली में अभी जो गाया वो दोनों गाना, क्या बात है। मतलब आज भी अगर आप सुनती हैं तो आपका मूड चेंज हो जाता है
1: जी।
0: और आप गाने भी लग जाते हैं?
1: हाँ गाने भी लगते हैं, और भी गाना है, वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी तब का भी गाना सब गाऊं?
0: हाँ हाँ प्लीज।
1: मुझको ही ना खबर कभी चोरी चोरी छुप छुप कर, कभी प्यारी की पहली नजर, हाय अब नहीं जानती।
0: हाय ले गई ले गई, दिल ले गई ले गई।
1: और भी गाने सब है, बहुत है। अब गाने लगोगे तो फिर तो कैसे चलेगा।
0: हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं हम उतना खैर कह भी नहीं रहे आपसे, लेकिन ये कि आपने जितने गाने सुनाए वो बहुत ही लाजवाब है, और आपने बताया कि आपके मूड चेंजिंग सॉन्ग्स हैं, यानी जब आप सुनते हैं तो आपका मूड चेंज हो जाता है और आप गाने भी लग जाते हैं। अच्छा, गोंडा में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपका सबसे अच्छा वक्त गुजरा है, सबसे खास वक्त गुजरा है?
1: गोंडा का एफएम चैनल, आपके आपकी स्टूडियो।
0: वाह, मतलब सबसे कहीं ना कहीं अलग वक्त आप मानते हैं कि यहाँ गुजरा है
1: जी।
0: क्या ऐसा?
1: ताकि मेरा ये बचपन का, बचपन में सोचा करती थी, सोच पे तो दुनिया टिकी है ना, तो बचपन में सोचा करती थी, आपके जन्म से पहले की बात है, 30-35 साल पहले छोटे सुना करती थी। अच्छा। रेडियो पे कि मैं सोचती थी कि मैं, अगर मेरा घर के पास थोड़ा पास में होता है रेडियो स्टूडियो, तो मैं जाके मैं भी बच्चों लोग जो कविता बोलती है, जो सवाल जवाब पूछती है, मैं भी जाके पूछा करूंगी, बोला। पर ये सपना 21 दिन पहले पूरा हो गया, जो मैं गई थी स्टूडियो आपके साथ, आपने बोले ना कि मेरे साथ कोई को होस्ट भी बैठा है, तो मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया। बचपन का सपना पूरा हो गया, सोचिए।
0: कोलकाता में बचपन में देखा सपना गोंडा करके पूरा हुआ, वाह क्या बात है। कहते हैं कि
1: 32-33
0: हाँ, मतलब सपनों की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए कहते हैं कब देखा और कब पूरा हुआ, कोई कोई उम्र नहीं होती।
1: एंड कब क्या हो जाए, पर इसी उम्र से तुम जीना मत छोड़ो, जीना तुम्हें हर हाल में पड़ेगा, तुम्हें खुश रहना है तो तुम अपने आप को खुश कर रख सकती हो। और मैं और एक बात बताऊं, वो जो बात सुनने को जिसमें आपका मुझे डांटने का पूरा हक है, आप मुझे डांट सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और इसके लिए मैं जो लिसनर आपको चाहता है वो भी मुझे डांट सकती है चैट बॉक्स पे आके, ताकि मैं एक, हालांकि मैं डिप्रेशन के शिकार थी वो तुम्हें पहले भी बताई, आज भी बता रही, वो खालीपन में क्या होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। तो मैंने आप जो चैट बॉक्स पे जो मैसेज करते थे अपना ही इस पे, तो आपका आपका तस्वीर मैंने निकाल ली थी 10-12 मोबाइल की दुकान में जाके, वो 6 महीना तक रखी थी। हाँ सुनिए तो, 6 महीना तक रखी थी, 10-12 था फोटो छोटा छोटा। तो फिर बाद में मेरे को एहसास हुआ, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पता नहीं घर वाले को लग जाएगा, और तो पता नहीं किसी गलत के हाथ पे पड़ जाए तो पता नहीं क्या क्या कर देगा, जमाना खराब है ना। तो मैंने आपका ये, उसके बाद 6 महीने के बाद में जाके फोटो ले जाके तालाब में डुबो दी, पानी में भर के, मतलब ईटा बांध के उस बकेट को डुबो दी ताकि फोटो गल जाए सड़ जाए।
0: ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता था।
1: आप डांट सकते हैं, कोई मलाल नहीं है
0: अब तो।
1: हालांकि डिप्रेशन के चलते हुआ था ये सब, खाली दिमाग शैतान के घर होता ना, कुछ ना कुछ एकदम दिमाग सही नहीं था, अब डिप्रेशन से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब तो हम डूब चुके हैं, अब तो खैर हम कोई कहने लायक बचे ही नहीं। बहुत बढ़िया,
1: क्या बात है। अगली बात आपको बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी,
0: बट ऐसे बताया मैं सच में हैरान हो गया, मतलब ये बहुत अमेजिंग। नहीं डांटने वाला काम ही नहीं, मतलब आपने जो
1: डांटी है थोड़ा सा तो डांटी है, ताकि आपका आवाज में मुझे डांट सुननी है बस।
0: नहीं दरअसल डांटने की बात ही नहीं है यहाँ पे, जो बात आपने कही है वो बड़ी ही अलग बात है, मतलब ऐसा ऐसी बातें इंसान बोल भी नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। और आपने आज नहीं, आपने जब भी बताई है अपने बारे में भी कोई भी चीज़ बताई है, तो ऐसी बातें बताई जिसको सुन करके हम लोग सच में हैरान हो जाते हैं, कि बताओ हम खुद भी नहीं बता पाते हैं। एंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी, बल्कि इसके लिए तारीफ करता हूँ कि आप इतनी मुखर हैं। थैंक यू सो मच कि आप रेडियो स्टेशन 89.6 FM के साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच सविता जी।
1: हेलो जी, थोड़ा सा तो डांटी है, थोड़ी सी,
0: थोड़ा सा अभी डांटेंगे। हमारे कमल नयन जी बहुत प्यारे इंसान हैं, उनसे हम डांट खिलवाएंगे। रुकिए,
1: अच्छा ठीक है, तो फिर एक गाना सुना दीजिए, गुलाबी आंखें।
0: अच्छा,
1: जो तेरी देखी, चलो गाइए सुनाइए।
0: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालू मुझको ओ मेरे यारो, मैं डांटना ही भूल गया। थैंक यू सो मच सविता जी,
1: आशीर्वाद मेरी तरफ से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इतना मुखर होना, इतने इजीली बोलना कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच भाई, आपने जिस तरह बताया और हमको तालाब में ईंटे डाल करके डुबो दिया। ऑलराइट, सो बहुत अमेजिंग है, बहुत अलग बात है। एंड देखिए ना कि हमारे जहनों में बहुत सारी बातें चलती हैं, हम वही कह रहे हैं ना कि हम जो दिखते हैं सभी के सामने वैसे होते नहीं हैं, हम काफ़ी अलग होते हैं। फिलहाल चूँकि हमने जो सवाल पूछा था उस पर धर्मेंद्र मोहन जी ने आवास विकास से लिखा है, गोंडा की कौन सी ऐसी जगह जहां आपके सबसे हसीन पल गुजरे, उस पर आपने रिप्लाई किया है, सर जी सबसे हसीन पल मेरा गोंडा कचहरी में हुआ है, क्योंकि मैं सुबह सुबह वहां पर आम और जामुन खाने जाता था और वहां पर ये दो पेड़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। ऑलराइट, सो इसीलिए आपका सबसे जो अहम पल है वो गोंडा कचहरी में गुजरा है। क्या बात है। सो ये बात जो आपने कही है कि भाई जिस भी उम्र में आपने आम और जामुन तोड़कर खाया, हो सकता अभी 2 दिन पहले ही खाया हो। ऑलराइट, जस्ट किडिंग। तो ये बहुत अहम पल होता है एंड नो डाउट कि ये कह सकते हैं कि हाँ सबसे हसीन पलों में से एक है। सो इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। चलिए फिलहाल चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं भाई अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दें आप।
2: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से आपका जाना पहचाना चौथा पहुंच चुके हैं अविनाश के लिए।
0: अच्छा पहुंच चुके हैं, कौन से स्टेशन पे?
2: हाँ रेडियो आपका जो गोंडा 89.6 एफएम पे।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप, पहले अपना हालचाल बता दीजिए अविनाश जी।
2: जी हालचाल तो बहुत बढ़िया है, और अपने कार्यक्रम सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और जो पहले कॉलर थी उनका भी बातचीत सुना बहुत अच्छा लगा, उन्होंने फोटो को गलाने की बहुत ही कोशिश किया हो पत्थर बांध के पानी में भिगो दिया, लेकिन फिर भी ऐसा काम नहीं आया।
0: अच्छा आपने सुना।
2: जी जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, तो ये कभी आपने ऐसा तरीका नहीं अपनाया है इसी तरह से फोटो गलाने
2: का? ऐसा तरीका ऐसा कभी नहीं अपनाया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमने मिट्टी में डाल के उसको, मतलब कि वो हम हमें उस फोटो से इतना प्यार था कि हमने सोचा कि चलिए इसको छोटे छुपा के एक प्लास्टिक में पहले उसको भर के उसका उसको मिट्टी से दबा के रख दिया था, उसके बाद फिर 2 साल पहले बाद में देखे कि वो देखे वो तस्वीर कैसा आ रही है, या फिर वो चिटी निकल गई है, तो बाद में देखा कि नहीं वो और जैसे कि तैसे बना हुआ है और उसमें कोई मतलब खरोच तक नहीं आया था।
0: अच्छा खैर ये तो नहीं पूछने वाले कि वो तस्वीर किसकी थी, क्योंकि ये ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन हम अंदाजा लगा ले रहे हैं।
2: आपका अंदाजा बिल्कुल सही बैठेगा।
0: अच्छा आप समझ गए। नाइस। अच्छा अविनाश जी कौन सा ऐसा गाना है जिसे सुन करके आपका मूड आज भी चेंज हो जाता है और आप गाने भी लग जाते हैं उसको सुनते?
2: जी जी वो गीत गुनगुना देते हैं।
0: बिल्कुल प्लीज।
2: ये आंखें ये चेहरा ये नूर कितनी फुर्सत से बनाए होगा तुझे बनाने वाले ने,

0: ला, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले, तू हसे तो कलिया खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे, तेरी महकी महकी सांस, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बात, जी चाहे मेरा मैं हूँ तेरा करतर हो दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरी यार। ये गीत मुझे बहुत पसंद है और जब भी मतलब कि मूड ऑफ होता है या फिर ऑन भी रहता है तो हम हमेशा इस गीत को गुनगुनाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस गीत को गुनगुनाने से हम स्वयं ही अजय देवगन बन चुके हैं।
1: सब ठीक है लेकिन आखिर कितने
0: जी, कितने
1: आप समझ पाए कि मैं पूछ कह रहा हूँ?
0: जी जी बिल्कुल
1: नहीं, क्या समझे आप बताएंगे?
0: बल्कि कितना वो मैं चाहता हूँ यही तो।
1: नहीं नहीं नहीं, कितने लोगों को ये गाना सुनाया मैं ये पूछ रहा था।
0: अभी तो कितने लोग सुन रहे होंगे, सभी सुन रहे हैं।
1: नहीं, नहीं, अभी की बात ही नहीं कर रहे, फुर्सत से बनाया।
0: मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
1: कितने लोगों को फुर्सत से सुनाया आपने, बस इतना ही कह रहा हूँ।
0: हाँ देखिए, मैं जब बचपन से इस गीत को गुनगुनाते हैं, जब मैं स्कूल में हुआ करते थे तभी मतलब कि वो हाफ टाइम होता था तो हम बस अंतर खेलने बैठ जाते थे, और कितनी बार इस गीत को गुनगुनाए हैं, उसमें हम शाम की हम लोगों का जो टीम थी और उस टीम में मतलब कि मुझे जैसे ही देखते थे बोलते थे चले आया जब गौरव गाने के लिए कुमार सानू की आवाज में, मतलब की ऐसा ऐसा और मोटी बन जाता था इस गीत को सुनते हुए।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया और ये गाना अब मुझे फुर्सत से याद भी हो गया है, डोंट वरी।
0: जी जी जी जी, और देखिए कुछ और भी गीत है जैसे कि बंगाली गीत हो गया, भोजपुरी हो गया, इन सब गीतों में ऐसा वो झलक है जो हमें अभी भी याद होता है तो वो भी गुनगुनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, और अगर आज भी आप जुड़े हुए हैं तो आज भी ये गाना थोड़ा सा रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, अच्छा लगेगा उनको भी।
0: जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम तो आपके विजय गोंडा से हम सुनते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, जिस ऐप से हम सुनते हैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड कर जो जो बातचीत होता है वो पूरी तरह से हम सही बातों को रिकॉर्ड करने की मतलब को वो करने चाहें तो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि साथ में आपकी भी आवाज़ हो वहाँ पर पहुँचे तो हम पहुँचा सकते हैं।
1: नहीं, मेरी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ पहुँचना ज्यादा जरूरी है।
0: नहीं बिल्कुल, बातचीत से हो रहे हो वो भी तो पहुँचना जरूरी है ना, तो हम बता सकते हैं कि हमारे अनंत साहब से बात हुई थी और उन्होंने ऐसा तो बोला कि आपको पास रहे हो रिकॉर्डिंग पहुँचाने के लिए।
1: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि भाई कुछ लोग और खुश हो जाएंगे इस बात को जान करके, लेकिन लिटरली बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और ये गाना मुझे सच में याद रहने वाला है।
0: जी जी, क्योंकि देखिए इस गीत में जब आया था तो ये गीत बहुत ही धूम मचा था 90 के दशक में, और इस गीत में मतलब कि वो फिल्म भी होता है गीत के कारण और फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छे है, ऐसा कोई दिक्कत अभी भी कि कोई नहीं देखा है इस मूवी को तो देख सकते हैं, इसमें सुनिश्री अजय देवगन और इसमें जो उनकी हीरोइन थी उनका भी जो रोल था वो भी बहुत अच्छा, जिनके विलेन का रोल में फरस रावल थे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, मामा ठाकुर के नाम से। ये बोलते हैं ना कि अजय देवगन एक डायलॉग मारते हैं कि आपका आप डंडा आप संभाल के रखिए क्योंकि ये डंडा आपके झंडा लहराने के काम आएगा।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत बढ़िया से आपने बताया इन सारे सवालों का जवाब, थैंक यू सो मच।
0: जी जी थैंक यू,
1: थैंक यू। सो भाई ये तो थे हमारे साथ में अविनाश जी जिन्होंने बातचीत की और बताया। फिलहाल बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन आ रहा है, क्योंकि लगातार कॉल्स आती जा रही है, हम बातचीत करते जा रहे हैं। सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि आखिर कौन सा ऐसा गाना है जिसको सुनते ही आपका मूड चेंज हो जाता है, और दूसरा सवाल अगर गोंडा से आप हैं कि भाई गोंडा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ का सबसे अहम पल आपका गुजरा है? ये दो ही सवालों का जवाब आपको देना है फटाफट से। सो चलिए देखते हैं कौन है अगली कॉल पे। हाँ जी हेलो।
2: छुप गया है सूरज, छुप गया है सूरज, पड़ रही है खुशियों की फुहार, चल रहा है रेडियो पे आपकी आवाज का जादू, आ गई है लबों पे मुस्कान। गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग। रुकिए पहले देखिए सूरज छुप गया है कि नहीं, आप ऐसे ही बता तो नहीं, हमको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? हाँ छुपा हुआ। हाँ छुपा हुआ, देखा छुपा हुआ है। कैसी हैं अनु, हमारे साथ मौजूद हैं?
2: जी सर मैं बहुत अच्छी हूँ, बस आप बताइए आप कैसे
1: हो? बहुत बढ़िया है। आज हम मूड चेंजिंग वाले गाने सबके समझना चाहते हैं, किस किस के कौन कौन से गाने हैं और जगह कौन सी आपकी सबसे यादों वाली गोंडा में है, बताइए।
2: सर मेरा गाना है, एक तो है आधा कढ़ावरा मूवी से।
1: अच्छा
2: छुटकन जिंग का क्या कहना,
1: चलिए थोड़ा सा सुनाइए दो लाइन।
2: अरे वो मुझको भी याद नहीं है।
1: याद की बात ही नहीं है, जो दो लाइन बोला है वो दो लाइन तो आपको गाना ही पड़ेगा ना, ताकि हम समझे कि आप गुनगुनाने भी लग जाते हैं इस गाने को सुन करके, तब तो सही जस्टिफाइड होगा।
2: ऐसे ऐसे गुनगुना देती हूँ छुटकन गेम का क्या कहना, और दूसरा गाना भी बता रही हूँ, जहाँ जाते ही छा जाते ही, ये गाना मैं गुनगुना सकती हूँ।
1: हाँ तो यही गुनगुना दीजिए।
2: जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं, एक सौतन से हो या हुस्न से करते हैं तो निभाते हैं, हर बात में नंबर वन, इंडियन इंडियन देर दिन इंडियन।
1: वाह क्या बात है, इंडियंस के बारे में बताया, जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं जगह के बारे में,
2: सर ये गाना मुझको बहुत पसंद है।
1: अच्छा।
2: क्या बोलते हैं, इंडिया वाले है भी जा जाते हैं, छा ही जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: देखा मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, मेन रोड है कोंडा रोड।
1: अच्छा।
2: एक मेरे घर के पास में एक सिर्फ पेड़ था, उसका नाम आम का पेड़ था, उसका नाम भी था मधुरिया।
1: अच्छा उसका नाम भी आपने रखा, वाह क्या बात है।
2: नहीं समझे नहीं, वो तो दादाजी ने रखा था, उन्होंने लगाया था, उनके जमाने का था वो, मेरे जमाने में तो बहुत बुरा हो चुका था। तो सर
1: अच्छा।
2: हम लोग ना बचपन में उसके जाके उसकी टहनिया की डाल भी नहीं पकड़ सकते थे सर, इतनी मोटी मोटी थी। और पेड़ की क्या बात करें, टहनियों पे हम लोग बहुत झूलते थे, झूला आम भी खाते थे और बहुत मीठा आम रहता था वो,
1: क्या
2: और उसकी टहनिया पकड़ पकड़ के हम लोग झूलते थे बहुत थे। उसमें झूला डालने की अलग से कहीं जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती थी, वही झूला झूलते थे। और एक जगह है सर गोंडा रोड, तो वो मंदिर भी है वही पास में, और दोनों तरफ से जंगल है, काफी हरा भरा है।
1: क्या बात है,
2: एक बार की बात है।
1: हाँ
2: हम थे, हमारी सिस्टर थी और जोली थी, फ्रेंड और प्रीति थी, तो हम लोग जा रहे थे, जाते हुए वापिस आ रहे थे, तो वापिस आते
1: जा रहे थे कि आ रहे थे, पहले क्लियर करिए।
2: नहीं सर जा रहे थे।
1: अच्छा जा रहे, ठीक है, फिर वापस आ रहे।
2: वापिस आते हुए प्रीति की रुमाल गिर गई, तो हमने ये गाना हम लोग बहुत गुनगुनाया उसको, बहुत चढ़े की राह में एक रेशमी रुमाल मिलेगी।
1: वाह।
2: और सर उसको छेड़ ही रहे थे, जैसे मैंने मूवी देखी थी इंडियन मूवी, तो उसमें सनी देओल के जो ड्राइवर थे मुस्तैद सिंह, तो हमने जब मूवी देखी थी तो हमने ये भी कहा था अगर अंग्रेज में कहीं मुझको मुस्तैद सिंह मिल गए तो मैं इनको सलूट जरूर करूंगी।
1: अच्छा।
2: और सर इतफाक से असलियत में मुस्तैद सिंह मिले, और वो भी पुलिस थे और ये भी पुलिस ही थे, और वो भी ड्राइवर थे ये भी ड्राइवर थे।
1: वाह।
2: और एकदम उन्हीं के क्लोन, और हमने जैसे देखा तो क्लोन किया। सर उसके बाद जब हम लोग आगे निकले तो एक मैम जा रही थी, तो बाइक
1: अच्छा।
2: थी, तो हम लोग ऐसे मस्त से जा रहे, मतलब आ रहे थे,
1: जा रहे थे तो कि आ रहे थे?
2: नहीं सर आ रहे थे।
1: अच्छा आ रहे, ठीक है।
2: तो मैम ने देखते ही हम लोगों को टाटा किया और मुस्कुराई, हमने कहा मैं कितनी चालाक से पहले टाटा कर ली, अभी अगर हम लोगों को ये कहीं मिल जाए।
1: हाँ हाँ।
2: सर कभी मिलती तो नहीं बैठा,
1: नहीं नहीं कभी नहीं,
2: मुलाकात में थी। लेकिन अभी मिल जाए तो हम लोग अगली बार तो मतलब टाटा जरूर करेंगे,
1: जाते में आते में
2: नहीं आते हुए।
1: अच्छा।
2: सर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े कि मैं मिल गई और मैं उनकी गाड़ी रुकी थी और उन्होंने फिर से ही टाटा कर लिया, और जैसे ही दो कदम आगे निकले उन्होंने टाटा करके फिर भी गाड़ी स्टार्ट की, फिर वो आगे निकल गई।
1: तो जाते हुए कि आते हुए?
2: आते हुए।
1: अच्छा आते हुए, ओके।
2: और सर एक पिछले साल की ही घटना है, फिर वही जगह पे, उसी जगह पे।
1: अच्छा।
2: वहाँ हम लोग मंदिर गए थे, तो हम थे शशि थी, जूली थी और सिस्टर थी, मतलब इस बार प्रीति नहीं थी, शशि थी
1: इस बार। प्रीति नहीं थी। अच्छा जान गई थी क्या होने वाला था। हाँ ठीक, फिर
2: सर हम लोग जब मंदिर से निकली इतनी तेज बारिश होने लगी, इतनी तेज बारिश होने लगी कि क्या बताएं, अब हम लोग तो भीग जाते हैं और भीग भी गए, भीग जाते क्या,
1: बारिश में भीग भी गए। ओफो, ये तो पहली बार सुना। अच्छा फिर,
2: लेकिन साथ में एक छोटा सा बच्चा था, 1.5 साल का था।
1: अच्छा,
2: हम लोगों को कुछ छुपाना था, तो हम लोग तो मेन रोड पे आ गए मंदिर से, तो वहाँ मिठाई के जो ठेले लगे थे, मिठाई वाली जो खादी थी, उन्होंने बोला बच्चे को ठेले पे बैठा दो।
1: अरे
2: तो बच्चे को हम लोग ठेले पे बैठा गए, तो फिर खूब हंसी खूब मस्ती हुई कि ठेले पे मिठाई नहीं मिल रही है, बच्चा मिल रहा है अभी।
1: वाह।
2: और सर जो भाभी के साथ उनका बेटा था, वो बच्चे को चंद्रांश को मिठाइयाँ खिलाते जा रहा है और चंद्रांश भी मिठाइयाँ खाते जा रहा है। अब जूली डाल रही है, जूली का बेटा था, अरे ज्यादा मिठाई खाओगे बीमार हो जाओगे, इतनी मिठाई मत खाओ, वो खाने से ज्यादा शरीर में लगा रहा था। फिर हम लोग बारिश बहुत तेज थी, बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी, तो हम लोग सोचे थे कितना देर तक ठहरेंगे, अभी निकलते हैं। तो फिर फाइनली वही पास मतलब रोड पर ही थे, तो तुरंत टैक्सी भी मिल गई थोड़ी देर में, थोड़ा देर इंतजार किया, तो फिर हम लोग टैक्सी पे बैठे और बच्चे को छुपा दिया टैक्सी के अंदर और फोन भी छुपा दिया, और हम लोग ऐसे थोड़ा मस्ती करते हुए थोड़ा बाहर झांकते हुए और देखते हुए घर वापिस आ गए।
1: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बातें आपने बताई, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी उस जगह के रिगार्डिंग, और साथ ही आपने गाना भी गाकर बताया कि आखिर आपको कौन सा गाना पसंद है।
2: और सर एक बात और है, मेरे यहाँ छोटी सी बच्ची है
1: अनु, थोड़ा जल्दी क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, अभी काफी कॉल्स आ रही हैं। हाँ,
2: तो उसका नाम आरती है, वो बेटर देखो आई थी जब आपका बीकॉप था, तो वो ना आपको बुला रही थी, वो आपका प्रचार सुन ली, आपके जो नाम से विज्ञापन है प्रोमो सुन ली, तो वो आपको बुला रही थी, पता है सर क्या कह रही थी, अनुमान को आ जाओ आ जाओ। तो पता है हम लोग शरारत की, हम तो बोलो बेटा अदनान हैप्पी बर्थडे टू यू, तो क्या बोलती है अदनान टू यू
1: टू यू, ओके।
2: सर हम लोग बहुत हंसते और सबसे वो आपका नाम ही लेती है, अदनान हो आ जाओ आ जाओ।
1: चलिए आ ही जाएंगे किसी दिन।
2: और मम्मी को नहीं पता, बड़ी मम्मी को तो सब लोग सोचते हैं किसको बुला रही है।
1: करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच अनु, बहुत अच्छे से बताया आपने सारी स्टोरीज, एंड एंजॉय करते रहिए अपना पसंदीदा गाना आप। थैंक यू सो मच अनु, ओके बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी अनु पांडे, ऑफ कोर्स लगातार हमारा एक ही सवाल पहला होता है कि भाई कौन सा ऐसा गाना है जो आपका मूड चेंज कर दे रहा है, जिसको सुनते ही आप गुनगुनाने भी लग जाते हैं, और दूसरी बात अगर आप गोंडा से हैं तो गोंडा में ऐसी कौन सी जगह आपके लिए रही है जहां आपकी लाइफ के काफ़ी यादगार पल गुजरे हैं, उसको आप मेंशन करके बताना चाहेंगे। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, वापस से आते हैं आपके कॉलिंग प्रोग्राम में।

0: जुदा कोई कैसे कर पाएगा भाई साहब। रोज तो आते हैं आपसे मुलाकात करते हैं और हर संडे को तो स्पेशल मुलाकात होती है जब रूबरू होते हैं कॉल इन प्रोग्राम में आपसे। सो फिलहाल आइए वापस से आ गए हैं और देखते हैं कि भाई किन किन लोगों की क्या क्या कॉल्स आ रही, क्योंकि सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सवाल है कि ऐसा कौन सा गाना है जिसको सुनते ही आपका मूड चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ गोंडा में ऐसी कौन सी जगह है जहां आपके हसीन पल गुजरे हैं। और इस बात को फटाफट से करेंगे क्योंकि बहुत सारी कॉल आ रही है और लगभग मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी कॉल्स ले सकूं। सो चलिए भाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार हमारे साथ कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
1: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है एंड क्या नाम है आपका, अपना बता दें श्रोताओं से हमारे।
1: मैं शो मिश्रा बोल रही हूं लखनऊ से।
0: अरे मैं आरजे अदनान बोल रहा हूँ गोंडा से। कैसी हैं आप? चलिए आप हंसी मुस्कुराई ये बहुत अच्छी बात है दिन की शुरुआत, क्योंकि अभी आपका मैसेज मैंने पढ़ा कि लखनऊ में बारिश नहीं हो रही। मैंने कहा ऐसी बहाने कुछ खुशी दे दिया जाए हंसा करके।
1: नहीं सर, हो रही है बारिश।
0: हो तो फिर झूठ क्यों बोला आपने?
1: नहीं सर जी, उसमें हमने लिख के भेजा है बारिश हो रही है।
0: अरे मैंने पढ़ा कि नहीं हो रही, मैं मायूस हो गया, परेशान हो गया। मैंने कहा अरे यार क्या हो रहा है ये,
1: बारिश हो रही है।
0: अच्छा तब ठीक है, बढ़िया। सो बताइए कौन सी ऐसी जगह है गोंडा की जहाँ पे आपके बड़े हसीन पल गुजरे हैं?
1: सर जी हम लोग का तो कहता है अपना स्कूल में था, बहुत मौज मस्ती होती थी सारी अच्छा। फ्रेंडों के साथ
0: स्कूल में।
1: जी सर,
0: एक कोई
1: पेड़ में बैठते थे सर।
0: हाँ।
1: और हम लोग खूब इमली और चूरन चलता था सर।
0: वाह।
1: अभी और फिर उसी में गाने होते थे, अंताक्षरियां होती थी।
0: आए है, फेवरेट का, बहुत बढ़िया। तो अभी अभी कौन सा ऐसा गाना है जिसको सुन करके आप एकदम चेंज हो जाता है मूड आपका?
1: सर जी हम बचपन में जब थे तो एक गाना यही था, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता डब्लू बब्लू, खाने को मिलता लड्डू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुन के गाना बहुत अच्छा लगता था सर।
0: अच्छा, हमें लगा आप हमको पहले ही विश कर रही हैं अगले साल जो आने वाला है उसको लिए। अरे
1: ये गाना बहुत अच्छा लगता था, उसमें जब लड्डू आता था बस यही इच्छा होती कहाँ से लड्डू मिले।
0: कहाँ से लड्डू मिले, कौन सा मोतीचूर वाला या
1: पीला
0: वाला? हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आप गा भी सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल सर,
0: प्लीज सुनाइए।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर नाम हमारा होता डब्लू बब्लू, खाने को मिलते लड्डू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: भाई आप जब गाना गाती हैं तो उस सिंगर को ढाल लेती हैं। अभी देखिए आपने बच्चों वाला गाना गाया बिल्कुल बच्चों की आवाज में, ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है।
1: जी सर, एक सॉन्ग और बहुत पसंद था सर,
0: प्लीज सुनाइए।
1: जी ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ये सर, ये
0: क्या बात है, ये गाना अपने आप में बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है।
1: जी सर,
0: और ये आपको पसंद है ये बहुत अच्छी बात है।
1: जी सर,
0: तो ये ऐसा गाना है कि जिसको सुनने के बाद आपका एकदम मूड चेंज हो जाता है और आप साथ में गाने लग जाती हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: क्या बात है। सो ये अच्छी बात ये कि आपको भी पता है कि आपका मूड चेंजिंग सॉन्ग कौन सा है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: जी सर।
0: तो कभी भी ऐसा लगे कि अब मूड चेंज करना है तो आप इस गाने को प्ले कर लिया करिए और गुनगुना लिया करिए। एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए और इतने अच्छे से गा करके बताने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: सो भाई ये हैं हमारी आशु जी जो कि लखनऊ से सुनती हैं गोंडा एफएम को, प्यार देती हैं और इस वक्त हमारे साथ कॉल इन प्रोग्राम में मौजूद थी और आपने गा करके बताया वो गाना जो आपको पसंद है।

0: ये बहुत ही ख़ास बात हो जाती है, बहुत अलग बात हो जाती है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ अब हम लगातार आपसे बातचीत करते जा रहे हैं आपके अपने स्पेशल कॉलिंग प्रोग्राम में। और फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: अरे गुड मॉर्निंग, इंतजार था आप ही का। कमल जी कैसे हैं आप?
1: हो
0: गया ये आपको हो क्या गया अचानक?
1: क्यूट से बाबू है तो कल बच्चा के सामने आता छोटा सा, तो मन करता है मुझे खिलाने के लिए। जैसे कोई बच्चा उसकी मम्मी या कोई उसकी मौसी कोई आएगी तो देखेंगे तो पहले देखेंगे तो बच्चा आ गया।
0: तो क्या है मम्मी या मौसी?
1: मम्मी मौसी हम मतलब जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए पापा बजा गए हैं और बच्चा घर पे है मम्मी के साथ में, तो मम्मी ऐसे बोलेंगे लिली लिली पापा बतिया, लिली लिली पापा बतिया। अगर मम्मी कल कहीं बाहर जाती है पापा बच्चे को लेकर के रखते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं लिली लिली मम्मी आवतिया लिली लिली।
0: तो आपने अभी अपने घर में ऐसा अनुभव प्राप्त किया या नहीं?
1: नहीं सर, मैं ही अपने मतलब औरत को ऐसे बताता था कि ऐसे मतलब बच्चों को खिलाया जाता है, और जैसे कुछ मतलब जो है पिताजी जो हैकर होते हैं वो कहते हैं काट लेगी, और जो मतलब बच्चों को प्यार से समझाते हैं वो ऐसे ही खिलाते हैं लिली लिली मम्मी आवाती है।
0: तो आप कैसा खिलाना पसंद करते हैं?
1: बताया ऐसे ही खिलाते हैं।
0: बहुत बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा आपके लिए काम है अलग से, पहले सवाल तो हम बाद में पूछेंगे, उससे पहले काम है।
1: जी सर।
0: काम ये है कि सविता जी को सुना था आपने जब वो बात कर रही थी?
1: जी सुना था, लेकिन जैसे आपने ये बताया था कि अभी आपको डांटेंगे तो हमने ये नहीं समझ पाया था किस लिए डांटना था उनको।
0: उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में वो गोंडा FM सुनती थी, क्योंकि उनका सपना था गोंडा, मतलब उनका सपना था किसी रेडियो स्टेशन में जाने का और रेडियो पर बोलने का। तो जब वो पहली बार आई थी तो हमने उनको को होस्ट बोल करके यहाँ पे अपने साथ बैठाया था, और हम लोगों ने बातचीत किया था लिसनर से, और वही उन्होंने कहा। उसके बाद वो जब मेरी फ़ोटो, जब कभी हम मैसेज करते थे अपनी ID से, तो उसकी स्क्रीनशॉट उन्होंने रख लिया था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं RJ बनने का सपना था। बाद में उनको लगा कि यार ये इस फोटोज़ का कोई मिसयूज़ कर सकता है, इसलिए उन्होंने तालाब में पत्थर बांध करके नीचे डुबो के डालने की कोशिश की थी। उस पे वो कह रही थी कि मुझे आप डांटिए। तो मैंने कहा ये काम हमारे कमल जी करने वाले।
1: उन्होंने अपना फोटो?
0: नहीं मेरा फोटो।
1: तो आपका फोटो क्यों डाला उन्होंने?
0: मेरा फोटो इसलिए क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एक सपना हमेशा से रहा है RJ बनने का या रेडियो स्टेशन जाने का। तो जैसे उनको लगा कि भाई हम RJ हैं, तो उन्होंने मेरी फोटो पहले निकलवाई और अपने पास रखी थी, फिर उनको लगा इसका मिसयूज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने तालाब में डाल दिया पत्थर बांध कर गया। उस पर उन्होंने
1: ये तो हमारे हिसाब से एक टोटका हो जाएगा सर।
0: तो क्या किया जाए बताइए अब कैसे?
1: यहाँ पे क्या होता है गाँव में कि मतलब किसी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो मतलब क्या करते किसी के बच्चे को मतलब कुछ करा के टोटका करवा देते कि इनका वो हो जाए, हमारा मतलब कम्प्लीट हो जाए। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि सही शाह जी को टपका दे, दूसरा आदमी मैं तैयार हो जाऊँ।
0: आप और आपके अंदाजे मुझे लगता है इसका जवाब सही सविता जी देंगे आकर के। और इस पर
1: ठीक है सर, लेकिन एक चीज और, कल से आप आइएगा तो नींबू और मिर्चा गले में टांग के तब आइएगा, ताकि ये टोटके का अस्त न हो पाए।
0: अच्छा काट, टोटके का काट लेके चलना है।
1: नहीं
0: तो कब किया था? आज से 1.5-2 साल पहले किया था, अभी तक तो सब कुछ काम ऐसा हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
1: नहीं, टोटका कभी भी असर कर सकता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कभी कोई टोटका असर किया है?
1: नहीं सर, मुझे तो ऐसे नहीं हुआ, लेकिन गाँव में ज्यादातर टोटका होता रहता है, गाँव में अक्सर करके होता रहता है।
0: अच्छा अच्छा, तो आप चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल बहुत ही सीधा सा सादा सा है कि कोई ऐसा गाना है जो आपका मूड चेंज कर देता, आप उसको गाने भी लग जाते हैं?
1: जी सर, गाने तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये गाना है विश्वात्मा फिल्म का है
0: जी,
1: सात समुंदर पार, ये गाना जब मैं सुनता हूँ कहीं डीजे पे या कहीं पे, तो मतलब एकदम से

0: मन जो है एकदम से खड़ा हो जाता है कि मतलब अब हम भी चले टूर से, जो खटिया पटिया जो है फ्लो फ्लो डीजे का लगा हुआ है
1: मन खड़ा हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद
0: एक बार पापा के साथ में गए थे एक जगह, मतलब फंक्शन में गए थे तो वहाँ पे पापा भी साथ में थे, कुर्सी पे लगी हुई थे, बैठे हुए थे और ये गाना बज रहा था तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी मतलब वहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा बहुत ठुमका लगा लूँ, लेकिन पैर हिला रहा था मतलब तसके तेजी से, जिस तरह से गाना बज रहा था म्यूजिक उसी तरह से मेरा पैर बज रहा था, पापा देखे तो मैंने मेरा पैर रोक दिया वहीं पे।
1: पापा को उठने वाले तूफान का अंदाजा पहले ही हो गया था इसलिए तूफान को
0: उठा, जैसे उनकी नजर हमारे पे गई थी इसमें शांत हो गया, वहां से उठ के मतलब अलग चला गया
1: तो अलग जाकर के ठुमका लगाया था या चले ही गए थे वहां से, हट ही गए थे आप?
0: लगाया नहीं था सर, लेकिन तो मन जो है लग चुका था, मन जो है एकदम से मतलब लगा के तोड़ दिए थे।
1: वाह जबरदस्त। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सुनना चाहूंगा ये गाना आपसे उसी उसी उसी फॉर्म में उसी मूड के
0: साथ। समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई।

0: गई।
1: ये आ गई क्या था?
0: सर जो फिल्म में जो लड़की ने गाया है वही गई थी, मतलब जो तीनों हीरो जो थे, मतलब जो सनी देओल और ये सुशील शाह और ये सकी पांडे, ये तीनों वहीं पे थे, मतलब जो इनके पीछे पीछे वो भी मतलब पिता का तो पहुंच गए थे जहाँ मतलब ये गाना चल रहा था।
1: अच्छा, लेकिन यहाँ तो मेल ने गाया है ना, तो उन्होंने आ गई क्यों बोला?
0: नहीं तो सर ये मतलब तो फिर ये वो हो जाएगा, मतलब उल्लंघन हो जाएगा, जैसे किसी गाने का मतलब धुआं धार ना कर दिया जाए तो मतलब इसका कुछ सब इधर का उधर कर देंगे तो लोग मुझे बदनाम कर देंगे, इन्होंने गा नहीं पाया है, कुछ भी नहीं गा पाता हूँ सर, जल्दी गाता नहीं, लेकिन तो जब आप लोग की इच्छा रहती तो थोड़ा बहुत गुनगुना देता हूँ।
1: क्या बात है, कुमार सानू साहब भी आपके पैर छूके जाते थे, ऐसा मत कहिए। देखिए गाते आप बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
0: नहीं सर ये चीज़ हमें तो नहीं मालूम है कि मैं अच्छा गाता हूँ क्या, लेकिन बस जो है आप लोग का वो रहता है तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ क्या।
1: अच्छा, हमें लगा आप कहने जा रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं अच्छा गाता हूँ कि नहीं गाता हूँ, लेकिन हाँ पैर छू के वो जरूर गए मुझे ये पता है।
0: हाँ सर ये तो है, मतलब गाने का शौक है सर, लेकिन तो मतलब मेरी जो गला है सर अच्छा नहीं, मतलब जो है मैं गाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता नहीं, जैसे मतलब रियल में सामने गाऊंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन मोबाइल में पता नहीं कि मेरी आवाज बहुत पतली सी है।
1: कौन है जिसको गाना आपका अच्छा नहीं लगता, मेरे सामने आप हाजिर करिए, चलिए अभी अभी हाजिर करिए, बताइए कौन है
0: सर। इसे कैसे बता दें ये चीज हम, लेकिन अब कोई बताता थोड़ी है।
1: अरे मैं सगरा में टोटका करके डाल दूंगा, आप बताइए तो नाम बताइए एक बार।
0: अब सर अभी चेट बॉक्स में देखते तो फिर बताते हैं।
1: आप बताइए, मैं ऐसे थोड़ी ना किसी को,
0: चेट बॉक्स में सर अभी देख के बता रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देख कर बताइएगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी आपने कॉल किया।
0: नहीं सर दूसरा सवाल आपने तो पूछा नहीं।
1: अच्छा मुझे लगा थोड़ा सा आप कहीं बिजी। हाँ बताइए, गोंडा में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपका अच्छा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है?
0: सर गोंडा में तो देखा जाए तो सबसे सुंदर सबसे स्वस्थ मेरा गांव है, क्योंकि मेरा मतलब जो है जन्म यहीं पे हुआ है, यहाँ पे हमें सबसे सुंदर लगता है। गोंडा में मतलब जाते हैं काम करते हैं, रहते हैं, लेकिन शाम के टाइम घर पे ही आते हैं। जब कोरोना लगा था तो उस वक्त मालूम पड़ा था कि मेरा गाँव क्या चीज़ है।
1: क्या चीज़ है?
0: हाँ गोंडा में सर एक दिन पड़ गए थे, पुलिस आई, सब भाग भाग के गली में घुस गए, मैं किसके घर में घुस जाऊँ, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था, गली गली से भाग भाग भाग भाग के कोई यहाँ से वहाँ से करके वहाँ वहाँ मुंडन कहाँ चौरा से होते हुए काट करके फिर वहाँ पाड़े पर बाजार से होकर के तब घूर के घर घर पहुँचे। और यहाँ गाँव में क्या है सर, कोरोना लगा था, बढ़िया से खटिया डाल के चार पाँच लोग आनंद से बढ़िया खेल रहे थे, ताश पत्ती और आनंद ले रहे थे, सबसे सुंदर मेरे गाँव लगा था।
1: अच्छा तो चलिए, आपका गांव सुंदर है और आपने इस बात को प्रूफ भी कर दिया अपने हिसाब से, तो हम उस चीज़ को मान लेते हैं। और बहुत अच्छे से आप सवालों का जवाब देते हैं। बाकी सविता जी ने कहा है कि सर मैंने टोटका नहीं किया था, सर कमल जी के नाम पर गलत इस्तेमाल मत करिए ऐसा पानी में।
0: चलिए सर बड़ी है, उनको कुछ नहीं कहेंगे, डांटेंगे भी नहीं, क्योंकि अच्छा। नहीं डांट देंगे तो रोने लगेंगी वो भी कि आपकी इतना क्यूट है।
1: तो क्यूट तो हम आपको कहते हैं ना, तो आप नहीं हुए क्या?
0: नहीं, आप तो हमें कह रहे हैं, लेकिन हम तो आपको कह रहे हैं, फिर मतलब उनको दीदी को भी बोलते हैं क्यूट।
1: देखिए चाहे हम हो चाहे दीदी हो, बस आपको इसलिए हम लोग सुन लेते हैं क्योंकि आपको क्यूट बोल चुके हैं, तो अब आप कुछ भी बोलते हैं तो बुरा नहीं मानते।
0: क्यूट क्यूट बोलने का एक तरीका था, जैसे हमने आपने बोला कि अभी क्या बोला था आपको, लिल लिल लिल आप क्यूट हुए। अच्छा। हम मुझे ऐसा किसी ने बोला
1: तो हम बोल दे। कमल जी फंस गए। एक और शख्स है जो ऐसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बेशक हम बोल सकते हैं।
0: नहीं सर जैसे हम आपसे बातें करते संडे के दिन, मतलब एक इंतजार रहता है, तो सर मतलब पता नहीं कुछ लोगों को अच्छा लगता हो कि ना लगता हो, लेकिन तो हम फिर भी सोचते हैं कि चलो अपने हम अपने में मस्त रहते, दुनिया से क्या लेना देना,
1: नहीं अच्छा लगे ना लगे। बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है, सभी को अच्छा लगता है और सभी एंजॉय करते हैं आप जो बातें करते हैं।
0: चैट बॉक्स में कभी कभी दिखाई देता है, कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ अच्छा बात किया, अब क्या बात किया, अच्छा है कि गलत है, भाई अब तो अपने हिसाब से तो अच्छा ही बात करते हैं।
1: अरे वो तो जब कॉपी चेक होगी तब समझ में आएगा ना नंबर कितना मिला।
0: जी मतलब बाकी जो है मैं बात करता हूँ बस लोगों को, मतलब ये सोचा कि सबको अच्छा लगे बस।
1: कोई बात नहीं, सबको अच्छा नहीं लगा, सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आप खुश रहिए, आले ले ले ले ले बहुत अच्छा है।
0: सर एक चीज और है सर, जब बचपन में छोटे से थे तो एक लाठी ले लेते थे और दोनों टांग के बीच में जो फंसा लेते थे तो गाड़ी चलाते थे।
1: हाँ ये वाली गाड़ी तो नहीं किया है, पैर वाली हाथ वाली गाड़ी किया है, हम लोग कम बजट में चलाते थे।
0: हाथ वाली लाठी बीच में डाल लेते थे और कस के दौड़ते थे, जो आगे आ जाता था जाकर लड़ा देते थे, तो कहते थे पी पी फटो गले से।
1: नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है, ये भी सही है कि अगर आप के पास बाइक है और पेट्रोल नहीं है तो अभी भी आप यही करके निकल सकते हैं गांव से बाहर। चलिए किसी दिन ऐसी पीप पीप करके आइए हमारे रेडियो स्टेशन पे, हमको इंतजार है। थैंक यू सो मच। सो भाई ये बहुत ही प्यारे हमारे कमल नयन जी जो कि हमसे बात कर रहे थे, और देखिए ना कितनी प्यारी बातें हमसे हुई, कितना मजा आया। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं विजय पांडे बोल रहा हूँ पछवाड़वा बलरामपुर से। मैं दो लाइन कहना चाहूंगा पहले।
1: जी प्लीज बताइए।
2: दोस्ती का अनमोल रिश्ता रब ने बनाया है, दोस्ती शब्द दिल की गहराइयों से आया है।
1: क्या बात।
2: सबसे ज्यादा खुशी दी है दोस्ती ने, क्योंकि सबसे प्यारा दोस्त हमारे हिस्से में आया है, यानी कि इरफान शाह जी। काबिले अदब, काबिले सद एहतराम जनाब, आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ।
1: इरफान शाह का,
2: आपका?
1: अच्छा अच्छा, मुझे लगा ये भी उनके बारे में। मेरा नाम अदनान है।
2: अदनान
1: जी जी जी जी।
2: काबिले सद एहतराम जनाब अदनान साहब को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
1: क्या बात है, आप तो गले से मिल गए भाई, बड़ा प्यारा अंदाज है आपका वेलकम करने का, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत वेलकम करते हैं आपका।
2: इसी दोस्ती पर हम कुछ कहना चाहेंगे।
1: जी,
2: कहा गया है कि दोस्त वो नहीं जो एक तालाब खुश्क हो जाने पर मुर्गाबी की तरह उड़कर किसी दूसरे तालाब का रुख कर ले, बल्कि दोस्त तो वो है जो तालाब खुश्क हो जाने पर भी कमल के फूल की तरह सर झुकाकर वहीं पर खत्म हो जाए। यही सच्चे दोस्त की दोस्ती की पहचान का आला दर्जा है। जैसे कि ये सब खूबी हमारे इरफान शाह में मिल रही है।
1: अच्छा, ये है खूबी,
2: ये सब खूबियां हैं इनमें, जिससे दोस्ती करते हैं तो दिल से करते हैं, निभाते भी हैं।
1: अच्छा, दिल से करते निभाते हैं, आपका कहना ये बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं
2: जी।
1: और आपका अंदाज तो भी मुझे बहुत पसंद आया है
2: जी। मैं अब अपना गीत बताना चाहूंगा।
1: जी प्लीज गाइए।
2: मैं अपना पूरा परिचय नहीं दिया।
1: अभी पूरा नहीं हुआ?
2: चलिए हो गया पहले से बता दिए मैम। तो गीत के बोल हैं
1: जी,
2: फिल्म का नाम रहेगा दोस्ताना, और गीत के बोल हैं बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा।
1: क्या बात।
2: और ये गीत अपने हर दिल अजीज
1: इरफान
2: शाह के लिए और हमारी छोटी बहन यानी मुंहबोली बहन अन्नू पांडे और अविनाश जी त्रिपुरा,
1: वाह वाह वाह,
2: सभी के लिए ये गीत समर्पित रहेगा
1: जी। प्लीज प्लीज सुनाइए
2: जी। धन्यवाद आपको।
1: तो भाई ये तो थे हमारे साथ में विजय जी फ्रॉम पचपेड़वा बलरामपुर, और बड़े ही अच्छे से बातचीत किया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जो है वो हम आपसे बातचीत करते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल ले सके, और जो सवाल हमने पूछा है इसका जवाब आप सब लोग देना चाह रहे, तो प्लीज़ हम फटाफट से जल्दी जल्दी फिर से सवाल करते हैं। सवाल दो है हमारा, पहला सवाल ये है कि भाई अगर आपको कोई ऐसा गाना कहा जाए जो आपका मूड चेंज कर देता है और गाने लग जाते हैं तो वो कौन सा गाना है, एंड दूसरी बात गोंडा में अगर आपका वक्त गुजरा है तो वो जगह बताइए जहां आपके सबसे अहम वक्त को आप गुजरा हुआ मानते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हाँ जी हेलो।
3: हेलो, अस्सलाम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मोहसिना अंसारी जुड़ चुकी हैं मोरबी गुजरात से, कैसी हैं आप?
3: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर?
1: बहुत बढ़िया। सवाल सुना आपने मोहसिना?
3: जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोनों ही।
1: क्या बात है, तो चलिए पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जगह के बारे में बताइए, उसके बाद गाना भी सुनाइए।
3: सर मेरे घर मेरे हिसाब से जब मैं अम्मी के घर थी तो गोंडा आना जाना होता था, तो वहाँ पे जो एक ठटेरी बाजार में जय माता दी रेस्टोरेंट है,
1: हाँ जी हाँ जी,
3: मेरा वहाँ बहुत अच्छा, मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे, वो एक्सपीरियंस याद रहेगा। और शॉपिंग के लिए चौक या ठटेरी बाजार ये दो थे, तो ये दो भी बहुत अच्छे थे मेरे लिए।
1: वाओ क्या बात है।
3: कोई पास नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, पर ये जो फ्रेंड्स के साथ जाना और शॉपिंग करना, बात करना, मस्ती करना, फिर कुछ खा के वापस आना, ये बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो ये मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा।
1: वेरी नाइस। और गाना कौन सा है?
3: गाना तो अगर मैं बताऊं तो एक बहुत लंबी लिस्ट जाएगी, लेकिन फिलहाल दो सॉन्ग थे तो किशोर कुमार से, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं,
1: जिंदगी गले लगा ले, और दूसरा ये नीले नीले अंबर पे चांदी
3: जब आए। मैं चाहूंगा कोई एक गाने को आप दो लाइन गुनगुनाना चाहें अगर। ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तो तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, जिंदगी गले लगा ले। थैंक यू सर। तो इस वक्त मेरा जो आवाज, गला मेरा बैठा हुआ ठीक नहीं है, बस इतना ही गा सकती हूँ।
1: कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने ट्राई किया, एंड थैंक यू सो मच कि मेरे रिक्वेस्ट पे आपने गाना भी सुनाया मोहसिना। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
1: अल्लाह हाफिज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और चलिए फिलहाल अगली कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर कौन है और इस सवाल के जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी हेलो।
4: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: क्या बात है, देखिए कहाँ कहाँ से कॉल आ रही है, त्रिपुरा से आई, उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश शिमला से आई है। कैसे हैं आप?
4: बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम एकदम सुहाना है हिमाचल शिमला का।
1: आए है, है। तो एक भाई रोमांटिक सॉन्ग होना चाहिए आपकी तरफ से।
4: बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। जब चले ठंडी हवा, जब उड़े काले गटा, मुझको जाने वफा, तुम याद आए।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कोई हिमाचली सॉन्ग भी आप सुनाइए, आपने हिंदी का तो ये बहुत प्यारा गाना सुनाया, हम चाहेंगे थोड़ा पहाड़ी भाषा में भी गाना।
4: जी पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी सॉन्ग तो हमारे हिमाचल में तो बड़े मशहूर हैं। जब हमारे जब डीजे में नाटी चलती थी ना, जब कोई भी फंक्शन होता था
1: जी,
4: तो हम पंजाबी और जो बंगले वाले जो गीत होते तो वो चलते नहीं थे, जो हमारे जो पहाड़ी जो नाटी बजते है तो पैर जो है अपने आप जो है थिरक जाते हैं, और जितने भी हम लोग हैं तो सारे जो है एक आंगन में खुले बरामदे डीजे में पहाड़ी नाटी जाते, फिर बड़ा आनंद उठाते थे।
1: अरे वाह।
4: जी जी जी जी जी जी
1: क्या बात है, बहुत अच्छे से बताया आपने, और जो गाना सुनाया वो ऐसा लगा जैसे हिमाचल में हम लोग सभी लोग पहुंच गए, आपने उस बात का एहसास कराया, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके।
4: जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी
1: एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल किया और आप हमसे गुंडा एफएम पर जुड़े।
4: जी जी धन्यवाद
1: धन्यवाद। सुबह देखिए लगातार कॉल्स कहां कहां से आ रही, इसी के साथ आज हम अपनी लास्ट कॉल की तरफ चलते हैं और सवाल वही है, एक गाना जाते जाते सुन लेते हैं अपने इन लिसनर से और देखते हैं कॉल है अगली कॉल पे। हाँ जी
5: हेलो।
1: हाय शैलेंद्र जी फ्रॉम मध्य प्रदेश।
5: गुड मॉर्निंग।
1: कैसे हैं आप? अरे कैसे नहीं पहचान सकते हैं, गाना सुन रहे ना। इतनी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनना है तो कैसे नहीं पहचान सकते
5: हैं। ऐसा है क्या?
1: बिल्कुल।
5: आपने समय तो छोड़ा नहीं, मैं कॉल तो करता रहूं लेकिन व्यस्त जा रहा था।
1: अच्छा
5: अब आप मैं 9:58 तो हो ही चुका है।
1: कोई बात नहीं आप सुनाइए।
5: कोई दो मिनट है अपने पास।
1: बिल्कुल सुनाइए।
5: मैं अच्छा मुझे सुनाना है?
1: बेशक, बिना सुनाए तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं, बिना सुनाए तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा ना।
5: ठीक है सर, थैंक यू, सुनिए, अच्छा लगे तो बताइए। मोहसिना जी ने एक गीत कहा था अभी, नीले नीले अंबर पर।
1: जी जी जी, बहुत प्यारा गाना है।
5: एक स्टेंजा तो कम से कम हो ही जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
5: जी। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार में कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, वो ही तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।
1: वाह क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, आपकी आवाज, आपका अंदाज, और ये
5: हो या ना हो बस आप लोग पसंद कर ले ये बहुत है।
1: नहीं, हम लोग पसंद कर ले ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप बड़ी शिद्दत से गाते हैं तो आपको भी अंदाजा इस बात का है कि कितना प्रेम है आपको गायकी से। मुझे लगता है कि आपको इस बात का एहसास होगा, am I right?
5: बिल्कुल सर, और सबसे अच्छी बात ये है ना कि हमारे जो पुराने गाने या भी कुछ भी कह लो आप गाने अपने बॉलीवुड के, वो कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़े होते हैं,
1: जुड़े होते
5: हमारी जिंदगी से, या कहीं कहीं किसी पहलू से जुड़े होते हैं वो,
1: बेशक,
5: और उस कारण से हो सकता है ज्यादा पसंद आते हैं लोगों को, और वो मेरे अंदर भी वही चीज है, मैं सुनना भी चाहता हूँ और सुनाना भी चाहता हूँ।
1: बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया और आपसे हमारी बात हो पाई।
5: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने कॉल लिया।
1: So भाई ये तो थे हमारे शैलेंद्र रिछरिया जी, मध्य प्रदेश से खजुराहो से सुन रहे थे। साथ ही साथ हम बता दें कि एक हमारे बहुत ही प्रिय लिसनर हैं सुखई जी, जो कि पेंट करते हैं और वो लगातार सुन रहे हैं कई जमाने से 89.6 FM। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ वो जिंदगी में भी लोगों के कलर करते हैं, क्योंकि पेंट करने वाले ही खूबसूरती लेकर आते हैं। इतना बड़ा, इतना बेहतरीन मकान बन जाता है, लेकिन जब तक प्रॉपर पेंट नहीं होता, दिखता ही नहीं है, निकल कर ही नहीं आता। सो सुखई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह हमको प्यार देने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए। और अगले संडे में मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रूर कॉल कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। थैंक यू। सो दोस्तों, जाने से पहले राधा मिश्रा जो कि एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने आज अपना कंटेंट हम तक पहुंचाया है, और चलिए मैं आप तक पहुंचा देता हूं इनका लिखा हुआ कंटेंट। सो राधा क्या लिखती हैं, आइए आपको बताते हैं। राधा लिखती हैं वर्तमान सच्चाई। किताबें कहती मेहनत कर लो, सपने कहते आगे बढ़ लो। व्यवस्था मुस्कुरा कर बोली, पहले हमारी परीक्षा सहलो। कहीं सर्वर का है रोना, कहीं केंद्रों पर धांधली भारी। नींद उड़ी है आंखों से और नीलम हुई है तैयारी। माँ ने गहने बेच दिए, पिता ने कर्ज उठाया है, बेटे ने दिन रात पढ़ा, फिर भी सब कुछ दोहराया है। कुर्सी कहती सब ठीक है, मैदान कहे कुछ ठीक नहीं। युवा पूछे उत्तर दीजिए, चुप्पी बोले सुनते नहीं। पेपर बिका बाजार में ऐसे जैसे कोई सरेआम खेल हो। मेहनती बच्चा ठगा गया, कैसा ये कुत्सित मेल हो। हर साल नई आशा जागती, हर साल नया विवाद है। कभी पेपर कभी प्रबंधन कभी कोई नया फसाद है। किताबों से लड़ते लड़ते बच्चे सिस्टम से लड़ने लगे। अंकों की चिंता कम थी अब परीक्षा से डरने लगे। कोचिंग फॉर्म और खर्च का सफ़र का खर्च भी फिर भी भविष्य लाचार है। पढ़ लिख कर भी इस दौर में क्यों छात्र इतना हताश है। मंत्री बदले नीति बदले ये जनता का अधिकार है। पर पहले ठीक हो व्यवस्था यही युवाओं की पुकार है। नारा कोई बड़ा नहीं ना ऊंचा कोई सिंहासन है। सबसे ऊंची चीज़ है केवल युवा का टूटा विश्वास। जब तक मेहनत से बढ़कर ये जुगाड़ का साया रहेगा तब तक हर एक परिणाम पर बस संदेह ही छाया रहेगा। सुन लो सत्ता के रखवालो इतिहास यही बतलाता है जिस देश का छात्र रोता है वो देश बहुत पछताता है। क्या बात है। थैंक यू सो मच राधा मिश्रा जो कि एक स्टूडेंट हैं और शायद कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट इस बात को फील करता है कि वो किस तरह से जो बहुत सारी अभी एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स हैं जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हैं। इवन कई अपनी जान तक दे चुके हैं और अभी भी कहीं ना कहीं लगातार ये मांग चलती चली जा रही है कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए। इस व्यवस्था में जो सच में डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाए, उनको आगे लाया जाए और जो अधिकार हर किसी के पढ़ने का और आगे बढ़ने का और एक अच्छी एजुकेशन को है उसको लेकर के इनकी मांग है। थैंक यू सो मच कि आपने हम तक ये पहुंचाया। और साथ ही साथ दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये शो पसंद आया होगा। और चलिए फिलहाल जाने से पहले सॉन्ग को आप तक पहुंचाते हैं। बने रहिए अपने 89.6 FM पर क्योंकि आज है संडे स्पेशल और लगातार स्पेशल शोज आपसे रूबरू होते रहेंगे आपके 89.6 FM वाले रेडियो पर। और आरजे अदनान का गुड मॉर्निंग गोंडा शो कैसा रहा ये बता सकते हैं। फिलहाल चैट बॉक्स पर आए हुए सभी का वेलकम करते हैं। फ्रिक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: Those tractors!

0: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
1: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

0: हाँ जी, रियली रियली लाइक यू. फिलहाल वापस से आ गए हैं हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी वाले शो में, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन. सो चलिए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं इसी शो की होस्ट, हम सब की प्यारी प्रिय न्यारी क्यूटी गीता दीदी.
1: ज्यादा नहीं हो गया?
0: ज्यादा बिल्कुल नहीं हो गया. कैसी हैं दीदी आप?
1: बढ़िया हैं. आप बताइए कैसे?
0: आज तो आप येलो येलो हैं.
1: बिल्कुल.
0: ये सूरजमुखी आज बदली में कैसे खिल गया?
1: बस मन किया कि आज जरा छप्पर छैया कर ली जाए ताकि पता तो चले कि कपड़ों पे कीचड़ कैसे लगता है.
0: वो तो ठीक है, लेकिन ये सूरजमुखी है या चौसा आम, मतलब क्या है?
1: अब तो कुछ भी समझ लीजिए, मुझे तो ये चौसा आम ही लग रहा है.
0: चौसा आम वाला ज्यादा लग रहा है.
1: क्योंकि इस समय आमों का मजा अपना अलग ही है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने.
1: आप खा रहे हैं कि नहीं आम?
0: नहीं दीदी, बहुत पहले खाया था अभी शुरुआत में, उसके बाद मिला ही नहीं.
1: चोरी कर लीजिए, चोरी.
0: हाँ, कोशिश किया था, हाथ से उठाया था, लेकिन
1: मैं तो रात में रोज चोरी करके ही खाती हूँ.
0: अच्छा, आप घर की बात करें, हमने ठेले से किया था, पकड़ लिए गए थे ना इसलिए.
1: भाई घर में सबको गिन गिन के मिलते हैं, तो मैं रात में चोरी करके खाती हूँ.
0: बहुत सही, ये डकैती मुझे पसंद है, ये डकैती होनी चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई चीज मिले नहीं तो उसको छीन के खाने में मजा आता है.
0: क्या बात है दीदी, बचपना याद दिला दिया आपने. तो चलिए स्टोरी हम सुनने के लिए तैयार है.
1: सबसे पहले जो हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, उनको जो है बरसा की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं.
0: वो भी आपको देने हैं मनी मन में.
1: और खूब मजा कीजिए, बरसात बहुत अच्छी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करते रहिए. और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, और बाकी जो भी आप चाहें.
0: बिल्कुल. सो दीदी की तरफ से भाई उन्होंने वेलकम कर लिया है. अब स्टोरी सुनाने वाली हैं दीदी, और आप सुन करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है.
1: स्टोरी आज बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं.
0: वाओ, क्या बात है, मॉनसून स्पेशल.
1: बिल्कुल, मजा आ जाएगा ये कहानी सुन करके.
0: चलिए, तो
1: ये कभी जैसे आपने सुना होगा कि बड़े लोग कुछ ना कुछ ऐसी गूढ़ बातें कर जाते हैं, तो उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हम समझ नहीं पाते, तो हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं.
0: बेशक.
1: तो आज इसी तरीके की एक कथा सुनाने वाले हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, हमेशा वो जो उनके मर्म होता है उनकी बातों में, उनमें जो गूढ़ अर्थ छिपा होता है, तो उसको ध्यान से समझना चाहिए ताकि जीवन में कभी कोई हानि उठानी ना पड़े.
0: तो
1: चलते हैं कहानी की ओर. कि हरियाणा के भिवानी नगर में एक सेठ चित्तरंजन दास नाम का बहुत ही अमीर, धनी और दानवीर व्यापारी थे. उनका नाम बहुत दूर दूर तक था, और इतना धन था कि दोनों हाथ से अगर वो खर्च करते तो भी वो खर्च नहीं होने पाए, यानी कि अपार धन संपत्ति थी. लेकिन वो केवल धनवान ही नहीं थे बल्कि बेहद परोपकारी भी थे. अपने समय में उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए, बहुत सारी बावड़ियाँ और धर्मशाले बनवाए, और गरीबों और विद्यार्थियों की सहायता में कभी भी वो पीछे नहीं हटते थे. नगर के राजा तक भी ज़रूरत पड़ने पर उनसे ऋण उधार ले लिया करते थे. सेठ के घर पहले एक पुत्री का जन्म हुआ. पुत्री बड़ी हुई, जिसका विवाह उन्होंने बड़े धूमधाम से किया, और फिर वर्षों तक पुत्र न होने का दुख उन्हें सताता रहा. अंततः बुढ़ापे में भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ. अब क्या था, पूरे नगर में पुत्र प्राप्ति के लिए उत्सव मनाया गया, और सेठ ने फिर से खुले हाथों से दान देना शुरू कर दिया. तो बुढ़ापे में मिले पुत्र से सेठ को इतना स्नेह था कि वो व्यापार की चिंता छोड़कर हर समय उनके साथ रहने लगे. पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह भी कर दिया गया, लेकिन उसे व्यापार की शिक्षा कभी नहीं दी. उनकी पत्नी यानी सेठानी जी कई बार कहती, अरे भाई उसे व्यापार भी सिखाइए, पर सेठ जी हंसकर कहते, बनिया का बेटा है, व्यापार माँ के पेट से सीख कर आता है। इसी तरीके से कई वर्ष गुजर गए। कुछ वर्षों के बाद सेठ बूढ़े हो गए और उन्हें एक बहुत गंभीर बीमारी ने पकड़ लिया और वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। अब उनको आभास हो गया था कि उनके जीवन के अंतिम क्षण निकट हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, बेटा मेरी तीन बातें जीवन भर याद रखना, यदि इन पर अमल करोगे तो कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पहली, घर से दुकान तक हमेशा छांव छांव।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो
2: बाद है हमारे साथ उत्कर्ष मिश्रा और तेजस त्रिपाठी भी हैं, नन्हे से हैं ये, और रिद्धि त्रिपाठी भी हाजिर हैं। और उसके अलावा हमारे साथ हैं
3: देशराज
2: मिश्रा जी, साथ ही साथ हैं हमारे साथ आज सानिध्या। अरे भाई, सानिध्या से तो नाम याद आ गया, आज सानिध्या का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सानिध्या।

0: तो भाई तालियां बजा दो, इनका तो बर्थडे है भाई, आज तो बहुत मजा आने वाला है। और ये ढेर सारे चॉकलेट लेके आई हैं, कितने ढेर सारे चॉकलेट हैं कि ये उठा नहीं पा रही थी, लेकिन ये लेके आई हैं। तो अभी एक राउंड इनका बर्थडे मनाया गया है, अभी दूसरा राउंड बाकी है। दूसरे राउंड में फिर से सानिध्या आपका बर्थडे होने वाला है, तो सबको थैंक यू तो बोलो।
1: थैंक यू
0: सभी को, थैंक यू। तो इसके बाद हमारे साथ और भी बच्चे हैं, हमारे साथ तन्मय है, हमारे साथ शेषकर हैं, और हमारे साथ अथर्व हैं, यशराज हैं, इसके अलावा ठंडी हवा का झोंका समर भी हाजिर हैं। तो चलो भाई, इतने सारे परिचय तो मैंने करा दिए और अभी परिचय बाकी है, लेकिन वो परिचय होता रहेगा। तो सबसे पहले हमारे साथ एक छोटा सा क्यूट बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है तेजस त्रिपाठी। तो तेजस, आज क्या सुनाओगे?
1: पोयम।
0: पोयम, तो जल्दी से सुना दो, सारे लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे छोटे से तेजस प्यारी सी पोयम सुनाए। तो देर किस बात की है, सुना दीजिए।
1: God made the sun, God made the tree, God made the mountain, God every।
0: वाह, तो ताली बजा दो भाई तेजस के लिए। और तेजस, और कुछ आता है आपको?
1: गर्मी के दिन आते हैं हमको बहुत सताते हैं, कहाँ खेलने जाए, दे धूप निकले दम, खेल का मैदान गरम, तुमको आती नहीं शर्म।
0: बाप रे, ये किसको, सन को कहा है? सन को कहा है कि तुमको नहीं आती है शर्म? बाप रे, बच्चे भी आजकल जो है सूरज भगवान को, सूरज चाचू को चैलेंज करते हैं, तुमको शर्म नहीं आती है, इतनी तेज गर्मी करते हो। तो भाई देखिए, सूरज चाचू नाराज होने वाले हैं, क्योंकि तो बारिश हो रही है ना, इतनी ढेर सारी बारिश कर रहे हो, कह रहे हैं ये बच्चा कह रहा है कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुम खेल का मैदान गर्म किए हुए हो, है ना। तो देखो, बारिश का दिन आ गया है, बच्चों के खेलने कूदने का दिन आ गया, आज तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों को मजा आ रहा है?
2: यस मैम,
3: यस मैम,
0: बिल्कुल मजा आ रहा है बच्चों को। तो चलते हैं हम किसकी तरफ, इतने सारे बच्चे हैं, मुझे अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा, तो मैं कर लेती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 100 में लगातार चोर निकल के भागा। अरे भाई, बलराज के ऊपर आ गया है। तो बलराज, आज क्या सुनाने वाले हो?
4: मैं स्पेस साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ।
0: स्पेस साइंस के बारे में, इतने छोटे से हो और इतनी ज्यादा नॉलेज की स्पेस साइंस के बारे में अपने दोस्तों को बताओगे? तो चलिए, देर मत कीजिए, जल्दी से बता दीजिए।
4: मैम, कल ही भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है।
0: रिकॉर्ड बनाया है?
4: यस मैम। एक निजी भारतीय कंपनी ने पहला पूर्व स्वदेशी रॉकेट विक्रम 1,
0: पूरा स्वदेशी रॉकेट है ना, अपने ही देश का बना हुआ।
4: यस मैम।
0: ओके।
4: का प्रक्षेपण किया।
0: हाँ, फिर और?
4: मैम, ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश है।
0: वेरी नाइस।
4: मैम, मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ।
0: हाँ,
4: विज्ञान मतलब स्पेस साइंस साइंस का वो क्षेत्र है जिसमें ब्रह्मांड, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों का,
0: तो बहुत सारी चीजें हैं भाई स्पेसशिप में। हमारे तो सूरज है, चंदा है, बहुत सारे तारे हैं जिनको हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं जिनको, जिनके अंदर इतने सारे तारे हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है।
4: मैम, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का इतिहास बहुत पुराना है,
0: बहुत ही पुराना है।
4: पुराने समय में ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन ज्योतिष के माध्यम से किया जाता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो पुराने वो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो भी इसका अध्ययन करे हुए थे, और उनकी बात आज तक एकदम सटीक है। हमारी जो धार्मिक चौपाइयां हैं उसमें भी उसका वर्णन मिलता है, है ना, और वो एकदम सटीक है। जी,
4: किंतु वर्तमान समय में मिथकों से बाहर आधुनिक यंत्रों के सहारे अंतरिक्ष में उपग्रह भेजकर विविध क्षेत्र जैसे कृषि, मौसम, संचार, रक्षा आदि के लिए
0: जानकारी मिलती रहती है।
4: इसरो, भारत में विज्ञान शोध इसरो के माध्यम से किया जाता है।
0: जी जी, बिल्कुल।
4: इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी तथा 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया।
0: बिल्कुल सही बात है।
4: भारत ने अपना खुद का प्रक्षेपण यान PHLV को विकसित किया जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। इसकी पूर्ण सफलता 1994 में मिली।
0: अरे वाह, देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी है हमारे छोटे से।
4: यह इसरो की तीसरी पीढ़ी का सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है और इसी के साथ अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार कर दुनिया का इकलौता देश बन चुका है
0: जी।
4: और भारत ने मंगल मिशन पे भी सफलता प्राप्त की है। 15 फरवरी 2017 को भारत ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो एक बार भाई इनके लिए तालियां होनी चाहिए हमारे बलराज जी के लिए, इतनी अच्छी जानकारी। और हम आशा करते हैं कि हमारे बलराज जी ऐसे ही जानकारियां जुटाकर आप तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे और इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो चलो चलते हैं, हमारे साथ एक और बहुत प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, उत्कर्ष मिश्रा जी हैं हमारे साथ। आज उत्कर्ष आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: मैम आज मैं स्पेस साइंस ब्लैक होल के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए मैम,
0: आप भी साइंस के बारे में बताएंगे?
2: यस मैम, लेकिन मैं ब्लैक होल के बारे में
0: बताऊं। ब्लैक होल के बारे में? हाँ
2: यस मैम। मैम देखिए, ये दुनिया में इतने सारी चीजें हैं जैसे ब्लैक होल, मून, प्लैनेट, अदर प्लैनेट, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन साइंटिस्ट आज तक इतनी सारी चीजों का पता नहीं लगा पाए हैं, जैसे कि ब्लैक होल का भी इतना पता नहीं लगा पाए हैं। जिसमें ऐसे जो ब्लैक होल है वो एक ऐसा चीज है जिसके अंदर तक आज कोई जान नहीं पाया है कि उसके अंदर है क्या।
0: जी
2: तो मैम, ये ब्लैक होल जो चीज है, इसका पहला नाम जॉन व्हीलर, एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, अमेरिका के रहने वाले एक एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने ब्लैक होल के ऊपर खोज किया था। उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल नाम की एक चीज होगी जो ऐसा होगा कि अपने सारे मतलब प्लैनेट्स को निगलता जाएगा। तो मैम ब्लैक होल ऐसा आगे जाके कोई साइंटिस्ट ने माना नहीं, पर एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने टाइम के। तो मैम इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज किया था कि मैम लाइट ऑफ स्पीड और बहुत सारी चीज़ों की। तो मैम ये इसके बाद स्टीफन हॉकिंग जो थे, स्टीफन हॉकिंग ने इसके ऊपर ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च किया था। तो मैम ब्लैक होल जो था उन्होंने रिसर्च किया कि ये इसके अंदर होता क्या है। ये इसमें एक इवेंट होराइजन नाम की एक चीज होती है। मैम इसमें एक इवेंट होराइजन नाम की चीज होती है जो अगर कोई प्लैनेट को इसमें खींच लेता है तो वो जानना नामुमकिन होता है। काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं जिसमें से इवेंट होराइजन भी है जिसके अंदर जाने से
0: ब्लैक होल का मतलब ही यही है कि कोई इसके अंदर गया तो फिर गया।
2: तो मैम इसी तरह एक वॉर्म होल है, जैसे मैम दुनिया इतनी बड़ी है, जैसे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, मल्टीवर्स हैं। तो मैम जो अपना गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, वो इसके बाहर जाना इम्पॉसिबल है। तो मैम क्या मैं बहुत सारे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर जाना पड़ेगा हम लोग को मल्टीवर्स से निकलने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग लाइट ईयर लाइट की स्पीड से भी चलेंगे तब भी हम लोग को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे मल्टीवर्स को पार करने में। तो मैम वॉर्म होल जो एक चीज है
0: जी,
2: जिसमें मैम वॉर्म होल होते हैं, ऐसा अभी वो नहीं हुआ कि अरे होते ही हैं, लेकिन मैम वॉर्म होल एक ऐसी चीज है जैसे कि एक पेपर है ए और बी, जिसमें अगर हम लोग को ए से बी में जाना है तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिससे स्ट्रेट में हम लोग जाएंगे, एकदम सबसे छोटा वे होगा। लेकिन एक ऐसी भी चीज होगी जैसे कि पेपर है, पेपर को हम लोग ने फोल्ड कर दिया तो ए और बी सामने आ जाएगा, जिसमें मैम अगर हम लोग एक होल कर दें और होल से निकले तो वो कोई कुछ मिलीमीटर ही बच जाएगा। ऐसे ही मैम वॉर्म होल है कि वॉर्म होल एक मल्टीवर्स के दूसरी मल्टीवर्स को जोड़ता है, ऐसे ही मैम है वॉर्म।
0: तो तालियां बजा दीजिए भाई, उत्कर्ष ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और जो हमारे बाहर छोटे छोटे लिसनर्स बैठे हुए हैं उनको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं बलराज देशराज की ओर, और देशराज आज क्या सुनाने वाले हैं आप?
3: मैं आज खुद से बनाया हुआ भजन सुनाऊंगा।
0: भजन आपने खुद से बनाया है, वेरी नाइस। तो चलो देखें इन्होंने कितनी रचनात्मक, मतलब क्रिएटिविटी कहना चाहिए कि भजन की रचना कर डाली है। इतनी पावर तो मेरे अंदर भी नहीं है भाई, बच्चे इतने आजकल तेज हैं कि खुद से अपने भजन की रचना कर देते हैं। तो चलो सुनते हैं इनका प्यारा सा भजन।
3: जय वीरभद्र, जय रुद्र रूप, जय महादेव, जय शिव स्वरूप, हे महाकाल, हे निराकार, पूजूं तुमको मैं बार बार, तुम हो अनादि, तुम हो अनंत, नमो नमो, नमो नमो हे भगवान।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए हमारी जो आज वो सानिध्या हैं, थोड़ा सा हमसे नाराज हो रही है क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है और उन्होंने अभी तक जो है हमको घूर घूर के ही देखा है कि दीदी आज मेरा नाम नहीं ले रही है, मेरा बर्थडे भी है, है ना? ऐसा है ना, दीदी से नाराज हो? हंस रही है। तो चलो सुना दो भाई, आज तुम्हारा नंबर जरा बाद में आया है और अभी बाद में आएगा भी, क्योंकि आज तो ढेर सारे बच्चे आपके बर्थडे में आए हैं ना। देखो कितने सारे बच्चे मैंने बुला लिए हैं आज सानिध्या के बर्थडे में। तो चलिए सानिध्या से सुनते हैं आज, देखिए क्या।
1: नीले नीले नभ में आते सफेद रुई जैसे बादल, धीरे धीरे तैरते रहते लड़ते इतने सुंदर बादल, पानी भर तर दूर से आते धरती थी प्यास बुझाते, बरखा बनकर जल बरसाते खेतों में हरियाली लाते, मोर ठुसी से नाच उठे जब छा जाते हैं प्यारे बादल।
0: तो देखिए भाई बादल तो आ ही गए, बहुत इंतजार कराया बादल ने, और ऐसे ही जैसे इसने कहा है कि नीले नीले नभ में आते और सफेद रुई से बादल, मतलब देखने में लगता था कि बादल आ गए पर कभी बरसते थे नहीं थे ना सानिध्या। हाँ, फिर धीरे धीरे इधर से उधर से उधर डांस करते रहते, लेकिन
1: और आज, भी नहीं। और आज सच में बरस
0: दे। आज तो आपका बर्थडे है ना, बर्थडे में सबको डांस करना है, डांस कर करके देखिए बरस गए बादल, बहुत मजा आया। तो देखिए इस समय सारे लोग खुश हैं, हमारे खेत खलिहान, हमारी सब चारों तरफ की हरियाली, सारे लोग इस वर्षा से खुश हैं। और मोर, आज मैंने सुबह सुबह मोर देखा, पता नहीं कहाँ से इतना प्यारा सा मोर आ गया था, और बरसात को देख करके मोर जो है वो डांस कर रहा था। तो मुझे याद आया ये डांस इसलिए कर रहा है क्योंकि आज सानिध्या का बर्थडे है। तो सारे लोगों ने डांस किया। देखिए
1: दीदी बस तो बोल रहे थे मेरे घर पे आते डांस करने।
0: काश वो मेरी बात समझ जाता तो मैं उसको जरूर कहती कि आज सानिध्या के घर पे डांस करना है। तो चलो भाई आगे चलते हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि बहुत बोल चुकी मैं और सारे बच्चे भी बोर हो रहे, एक छोटा सा ब्रेक ले ले बच्चों।
3: जी दीदी। यस
0: मैम। चलो एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप लोगों से फिर से गपशप करते हैं।

0: मैम मैम नहीं करना ये वो प्रोग्राम कर एक बार हम फिर से हाजिर हैं और हमारे साथ सत्यम और प्रतीक हैं और साथ में हमारे साथ रिद्धि हैं। ये सारे बच्चे बहुत ही नाराज होने वाले हैं, कह रहे हैं कि सबका प्रोग्राम करा रहे दीदी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। क्यों सत्यम
1: जी? दीदी
0: देखो बोल भी रहे हैं जी दीदी।
1: अरे दीदी उतना नाराज भी नहीं है।
0: तो चलो हम रिद्धि के साथ चलते हैं और रिद्धि आज क्या सुनाने वाली है?
2: सेफ एनवायरनमेंट।
0: अच्छा तो चलिए सुना दीजिए जल्दी से।
2: दीदी हमारे लाइफ में सेफ एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट
0: पार्ट है। बिल्कुल बेटा बहुत सही बोल रहे हो कि सेफ एनवायरनमेंट तो है ही नहीं हमारे पास ना।
2: लेकिन आज पोल्यूशन इतना हो गया है कि वेस्ट प्लास्टिक और पेड़ कटिंग की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खतरे में है।
0: बिल्कुल खतरे में है।
2: हम सब मिलकर एनवायरनमेंट को सही कर सकते हैं।
0: हाँ तो आप बच्चों से तो उम्मीद है, आप बच्चे हैं, आप सबको प्रेरित भी कर सकते हैं। बच्चों में तो बड़ी पावर होती है
2: जी। इसलिए हम प्लास्टिक वेस्ट और
0: प्लास्टिक का तो बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। बॉटल देखिए, पानी की बॉटल हर हाथ में आपको दिख जाएगी, है ना?
2: इसका कम यूज करें और ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाएं और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करें।
0: बिल्कुल बहुत सही बात कही, तो इसके लिए तालियां हो जाए। तो भैया हमें सबको मिल करके अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है, क्योंकि हमारी सबकी मॉरल ड्यूटी है ये कि कहीं कचरा जो है ये प्लास्टिक का कचरा बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों कि आप हम सब जो है पॉलीथीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी तो घर में इतनी बड़ी जिसको ब्लाइंडर मिस्टेक कहते हैं कि उसी के अंदर खाने पीने का सामान रख करके उसको हम कूड़े पर फेंक देते हैं। और होता क्या है कि बहुत सारी जो गाय होती है भूखी गाय और वो उस पन्नी को जो भी खाना होता पन्नी समेत ही खा जाती हैं, तो उससे उनकी जो है डेथ भी हो जाती है ना। तो हमें अपनी गायों को भी सुरक्षित रखना, अपने जानवर को, अपने आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा रखना है। तो उसके लिए सब हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सबको अवेयर करें कि इस तरीके की जो ये प्लास्टिक पन्नियों का यूज़ है, प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ है, इसको कम से कम करें और धीरे धीरे क्या है बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। देखिए होता क्या है कि हम लोग इतने आलसी हैं, घर में बहुत कुछ कपड़े होते हैं पर उस कपड़े का यूज़ नहीं करते, ना उसका झोला बनाते हैं, ना कुछ इतना ये शो करते कि हमारे पास जो है टाइम नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि उसको झोले को लेकर के हम बाजार जा सकते हैं पर हम तो खाली हाथ एकदम स्मार्ट दिखाते हैं अपने को कि हम स्मार्ट हैं बहुत ज़्यादा, और एक बैग उठाया और हम मार्केट पहुँच गए। वहाँ पर वो क्या उनकी क्या गलती है, वो पॉलीथीन में ही हमको देंगे सामान। तो क्या कहोगे बच्चों अपने जो भी आसपास के पड़ोसी हैं आपकी या पेरेंट्स से क्या कहोगे? सत्यम बताएंगे क्या कहेंगे, बताइए।
3: दीदी मैं कहूँगा कि ये जो पॉलीथीन बैग होते हैं इनका पहले तो हम इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसकी वजह से कई जानवरों और भूखे हाँ, लोगों के भी जाने जा रहे हैं। कुछ पागल हो जाते हैं कभी कभी, मतलब मैं उनको निर्दोष।
0: और प्रतीक आप क्या कहेंगे?
4: दीदी जो आपने कहा है कि ये कपड़े से बैग बनाइए, वो एकदम सही है, इससे पॉलीथीन का यूज कम होगा और वो इको फ्रेंडली भी रहेगा।
0: बिल्कुल, और हमारा जैसे सामान कभी कभी था थैलियों प्लास्टिक की थैलियों के अंदर रखा वो दिखाई देता है, कितना बुरा लगता है ना
4: जी दीदी।
0: लेकिन जब हम झोले के अंदर रखेंगे तो क्या रखा हुआ है ये पता नहीं चलेगा।
4: और दीदी मतलब जैसे कुछ लोग गरम गरम खाना कलरफुल पन्नियों में डाल देते हैं।
0: बिल्कुल, और उससे वो कैंसरस होता है ना, बहुत सारे लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है।
4: तो पॉलीथीन के केमिकल्स खाने के अंदर मिल जाते हैं, लोग चाय की चाय जो है
0: चाय भी उसी में ले आते
4: हैं, लेके जाते हैं।
0: बिल्कुल ये सब बहुत गलत है। तो हमें क्या करना है, सबको अवेयर करना है और सबको रोकना है कि इस तरीके की गलतियां ना करें, क्योंकि जीवन अमूल्य है
4: जी दीदी।
0: तो चलो चलते हैं एक बार किसकी तरफ चलते हैं हम शशकर की ओर। और शशकर क्या बताने वाले हो आज?
5: दीदी आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला
0: हूं। हमें मालूम था कि आप बहुत बड़े कहानीकार बन चुके हैं, दीदी की कॉपी करने लगे हैं, दीदी के पीछे पीछे चलते हैं क्योंकि दीदी कहानी सुनाती है तो शशकर भी कहानीकार बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कहानियाँ भी तो मनोरंजन का साधन है, सुना दीजिए। सारे लोग बैठे हुए, सारे दोस्त आपके सुनने को बेकरार हैं।
6: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था लेकिन लालची और स्वार्थी था। वहीं छोटा भाई बहुत गरीब था और सीधा और मेहनती था, लेकिन उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से मदद मांगी, लेकिन बड़े भाई ने उसे भगा दिया। भूखा प्यासा छोटा भाई जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे एक बहुत ही वृद्ध और दयालु साधु मिले। उसकी हालत देखकर साधु को तरस आ गया। साधु ने उसे एक छोटी सी पत्थर की चक्की दी और उससे कहा, यह कोई साधारण चक्की नहीं है, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इससे कह देना, जो भी तुम्हें चाहिए हो बस चक्की, और जब तुम्हें इस चक्की को रोकना हो तो तुम बोल देना बस चक्की बस। गरीब भाई साधु को धन्यवाद देकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की आटा निकाल। देखते ही देखते चक्की से आटे की ढेरी लग गई। इस तरह उस

0: नमक की बोरियां भरने लगी और चक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। परेशान होकर वह चक्की को नाव में रखकर समुद्र के बीचों बीच ले गया। उसने चक्की को समुद्र में फेंकने की कोशिश की, लेकिन चक्की चालू ही रही और नमक उगलती रही। आखिरकार नाव समेत चक्की समुद्र में डूब गई।
1: फिर क्या हुआ?
0: और माना जाता है कि वह जादुई चक्की आज भी समुद्र की गहराई में लगातार
1: पानी नमकीन होता है।
0: दीदी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।
1: लालच बुरी बला, और जो मंत्र हमको नहीं मालूम है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखा कितनी अच्छी कहानी थी, तो तालियां नहीं बजाई आप लोगों ने। तो ठीक है भाई, देखिए इतनी सुंदर कहानी सुनने के बाद हम एक बार फिर से किसकी तरफ चलें? सानिध्या की तरफ। और सानिध्या फिर से कुछ सुनाने वाली है, उसके बाद
2: दीदी तविता।
1: चलिए भाई फिर से तविता सुनते हैं। सुना दीजिए तविता।
2: सुंदर फूल नए उपवन में महक रहे, हर आंदन पे लाल गुलाबी पीले नीले रंग भरे हैं जीवन ते। गुलाब खिला है मुस्तातर, डेंडा हंसता पीत रंग धर। चमेली अपनी खुशबू लेकर महक रही है धर धर।
1: अरे वाह।
2: सुबह सुबह जब सूरज निकले, ओस्ती बूंदे मोटी लदे, सुंदर फूल ने वन में मन को अपने पास बुलाए। आओ मिल दरबार सजाए, नए नए पौधे लगाए, हर आंगन तो में फूल खिले तो धरती तो भी स्वर्ग बनाए। तोमल पंथुड़िया मुस्ताती, मधुर सुगंध सदा फैलाती, मंद मंद जब हवा चले तो डाली डाली झूमती जाती। तितली रंग बिरंगी आई, फूलों पर वह मंडराई, भमरा डाटा मधुर तराने, पतरी ने तैसी छटा सजाई।
1: वेरी गुड।
2: फूलों फूल हमें यह सीख सिखाते, मिलजुल कर सब तो महताते, हंसते रहना खुशियाँ बांटना, जीवन तो सुंदर बनाते। सुंदर फूल ने उपवन में सबते मन तो भाते हैं, प्रेम खुशी और सुंदरता का संदेश सदा सुनाते हैं।
1: वेरी गुड भाई, देखिए इतनी सुंदर कविता है, और इस कविता को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि हमारी ये जो बच्चों की टोली है, ये एक फूलों की बगिया है। इसमें तरह तरीके के फूल हैं जो अपनी सुगंध बिखेरा करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी सुगंध बिखेरते रहिए। जी बेटा।
2: दीदी मैं तो कविता सुना दो।
1: एक और कविता है
2: जी दीदी।
1: चलो सुना दो।
2: नित जीवन ते संघर्षों से जब टूट चुका हो अंत मरण, तब सोठ ते मिले समंदरता, रह जाता है तो अर्थ नहीं, जब फसल सूठ तर जलते बिन तिंता तिंता बंधे रह जाए, फिर होने वाली बरसाता, रह जाता तो अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंध होता, रह जाता तो अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सोचती नित्य प्रतीक्षाता, रह जाता तो अर्थ नहीं। मन टटवाणी से आहट हो, भीतर तट छलनी हो जाए, फिर बाद तहे प्रिय वचनों का, रह जाता तो अर्थ नहीं। सूठ साधन चाहे जितना, पर ताया रोदों ता धर हो, फिर उन अदनित सुविधाओं का, रह जाता तो अर्थ नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कविता। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है ना? तो बस इतनी सुंदर कविता है। कहते हैं कि मन की जो है कटु वाणी, उससे दूसरे आहत हो जाते हैं, छलनी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनसे प्रेम से बोलो तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ?
3: अच्छा व्यवहार,
1: कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए या कटु वाणी बोलनी चाहिए, या कड़वे शब्द बोलने चाहिए, या उसे लड़ना चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सबसे अच्छी है कि बाद

0: में अगर उससे मीठा बोलेंगे भी तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके मन में तो एक गांठ हो जाएगी, ये कितना बुरा मुझसे बोला था, है ना?
1: जी दीदी।
0: तो चलिए प्रतीक और सत्यम की ओर हम एक बार फिर से चलते हैं। आज ये बहुत ही सुंदर एक कविता सुनाने वाले हैं और उसके बारे में सबसे पहले ये हमको बताएंगे कि वो कौन सी कविता है।
2: दीदी, आज हम जो भजन लेके आए हैं जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादे
0: जी
2: और उनकी माता गुजरी बाई
0: हाँ,
2: उनसे अलग होने का यानी बिछड़ने का दर्द बताया गया है
0: जी। चलिए देखते हैं कितनी सुंदर कविता है ये।

0: कौशल्य जी,
1: तालियां बजा दीजिए भाई प्रतीक और सत्यम के लिए। बहुत सुंदर गीत इन्होंने प्रस्तुत किया, मजा आ गया भाई। तो आगे की हमारी यात्रा में हमारे साथ शामिल होते हैं ऋषभ, और ऋषभ आज क्या बताओगे?
2: दीदी कहानी लाए,
1: कहानीकार। इतने कहानीकार हमारे इस है ना, कितने कहानीकार हैं बता दें। एक तो दीदी कहानीकार हैं, एक ऋषभ कहानीकार हैं, एक तन्मय कहानीकार हैं, एक शशकर कहानीकार हैं, और कभी कभी सत्यम भी कहानीकार हैं। तो इतने सारे कहानीकार हैं, तो चलिए चलते हैं हम ऋषभ की ओर। ऋषभ भी एक प्यारी सी कहानी सुनाने वाले हैं।
2: एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे और माँ लोगों के घर में काम करती थी। घर इतना गरीब था कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन राहुल ने शहर के एक बड़े दफ्तर के बाहर एक बहुत ऊंची सीढ़ी देखी। उसने चौकीदार से पूछा, ये सीढ़ी कहाँ जाती है? चौकीदार ने मुस्कुराया और बोला, बेटा ये सीढ़ी ऊपर वाली मंजिल तक जाती है, लेकिन ज़िंदगी में एक सीढ़ी और होती है जो मेहनत से बनती है। उस पर चढ़ने वाला इंसान बहुत ऊपर पहुंचता है। राहुल ने उसी दिन ठान लिया कि वह अपनी मेहनत की सीढ़ी खुद बनाएगा। दिन में पढ़ाई, शाम को चाय की दुकान पर काम, और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते गरीब का बेटा अफसर बनेगा। राहुल बहुत मुस्कुराकर कहता, एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मंजिल दूर नहीं है। सालों की मेहनत के बाद वह राहुल प्रशासनिक अधिकारी बन गया प्रशासनिक अधिकारी बन गया। जिस दफ्तर के बाहर वह कभी सीढ़ी को देखकर सपने देखा करता था, आज उसी दफ्तर की सबसे ऊंची सीढ़ी कुर्सी पर बैठा था। कुछ दिन बाद उसने उसी सीढ़ी चौकीदार को ढूंढ निकाला। राहुल ने उसके पैर छुए और कहा, आपने मुझे उस दिन सिर्फ सीढ़ी नहीं दिखाई थी, मेरे मंजिल की दिशा दिखाई दी थी।
1: बिल्कुल सही।
2: चौकीदार की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, बेटा मैं तो बस रास्ता बता सकता था, सीढ़ी तो तुमने अपनी मेहनत से बनाई।
1: जी बिल्कुल।
2: सीख, जिंदगी में सफलता किसी लिफ्ट से नहीं मिलती, हर इंसान को अपनी मेहनत की सीढ़ी खुद बनानी पड़ती है। हर छोटा कदम एक नई सीढ़ी है, और हर सीढ़ी आपको अपनी मंजिल के थोड़े करीब ले जाती है।
1: वेरी गुड, बहुत सुंदर कहानी थी, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव कहानी थी, और मतलब इतनी नैतिक शिक्षा से भरी हुई थी। बच्चों हमेशा मेहनत करते रहिए, आप लोग सक्सेस पाएंगे और लाइफ में कुछ बन जाएंगे।
0: जी दीदी।
1: तो चलिए चलते हैं तन्मय की ओर। तन्मय आज फिर कहानी लेकर क्या है? मुझे मालूम है, मैं पूछूंगी नहीं कि तन्मय आज आप क्या सुनाने वाले हैं, और मुझे मालूम है कि तन्मय भी कहानी सुनाने वाले हैं, तो जल्दी से सुना दीजिए।
3: इला नाम की एक बहुत गरीब लड़की थी। वह जब भी बच्चों को स्कूल से आता जाता देखती तो उसका भी मन करता कि वह भी स्कूल पढ़ने जाए। एक दिन वह उदास बैठी थी कि अचानक एक परी आई और इला से पूछने लगी, तुम क्यों उदास हो? इला ने उसे बताया, मेरा भी मन करता है स्कूल जाने का, मगर क्या करूं, गरीबी की वजह से कौन मेरी स्कूल की फीस देगा। परी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवाऊंगी। एक दिन परी ने उसका नाम पास के एक स्कूल में लिखवा दिया। अब इला रोज स्कूल जाने लगी, वह बहुत खुश रहने लगी। बीच बीच में वह परी आती तो उसका हाल चाल पूछती। एक दिन वह परी जब इला से मिलने आई तो उसने झुंझला कर कहा, अरे भाई मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों चली आती हो बार बार? इला के इस बर्ताव से पूरी परी दुखी होकर बोली, क्या तुम भूल गई, जब तुम दुखी थी तब मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया था, तुम्हारी इच्छा पूरी की थी, आज तुम मुझको ही दुत्कार रही हो, यही संस्कार मिले हैं तुम्हें। इस पर इला चिढ़कर बोली, कौन सा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर,
1: अरे
3: तुम नहीं तो कोई और मुझे स्कूल में भिजवा देता। उसे ऐसा कहते समय इला गुस्से में बुरी तरह कांप रही थी। एक दिन परी मन को बहुत ठेस लगी और वह हमेशा के लिए इला के साथ छोड़कर चली गई। एक महीना बीत गया। दूसरे महीने इला की टीचर ने उससे कहा, अगर तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अब भला कौन इला की फीस देता? उसका नाम स्कूल से काट दिया गया। इला बहुत रोई और परी को याद करने लगी, मगर परी नहीं आई। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर दुखी मन से बैठी थी। पुजारी ने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। पुजारी ने उससे कहा, बेटी तुमने अपने साथ एहसान करने वालों को भुला दिया, अब रोने से क्या हासिल, बस इतना याद रखना कि अपने साथ एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलना।
1: ये बिल्कुल यही मॉरल है कहानी का,
3: पछतावा ही हाथ आता है।
1: तो देखिए भाई, कहानी का मॉरल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कभी कोई आपकी छोटी सी भी मदद करता है तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, उसका ये एहसान होता है और इसको हमेशा याद रखना चाहिए, और कभी ना कभी अगर वक्त पड़े तो उसका ये एहसान चुकाने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत अच्छी कहानी थी, तो एक बार छोटी सी तालियां हो जाए। तो भाई बारी आ गई है हमारे सत्यम तिवारी जी की, और आज सत्यम जी आप क्या लेकर के आए हैं, कौन सी जानकारी आप दर्शकों को हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं?
0: जी दीदी बता रहा हूँ। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हम सभी के साप्ताहिक कार्यक्रम हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, और आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे विषय पर जो हर वर्ष कल के दिन यानी 20 जुलाई को मनाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व शतरंज दिवस के बारे में।
1: ओ, तो मेरा भी फेवरेट गेम है।
0: जी दीदी, इस दिन का उद्देश्य शतरंज के खेल को बढ़ावा देना और लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करना है। शतरंज दुनिया के सबसे पुराने और बुद्धिमानी से खेले जाने वाले खेलों में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 1500 वर्ष पहले भारत के चतुरंग नाम के खेल से हुई थी। समय के साथ यह खेल दुनिया के कई देशों में पहुंचा और आज यह सबसे लोकप्रिय खेलों में गिना जाता है। शतरंज में दो खिलाड़ी होते हैं, दोनों के पास 16-16 मोहरे होते हैं। इनमें राजा, रानी, हाथी, ऊंट, घोड़े और प्यादे शामिल होते हैं। इस खेल में जीत उसी की होती है जो अपनी चाल सोच समझकर चलता है और सामने वाले के राजा को मात दे देता है। दोस्तों, शतरंज केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह हमें धैर्य, एकाग्रता, सही समय पर निर्णय लेना और भविष्य की योजना बनाना सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि इसे दिमाग का खेल भी कहा जाता है। आज कई स्कूलों में बच्चों को शतरंज खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि इससे उनकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। भारत ने शतरंज की दुनिया में कई महान खिलाड़ी दिए, जैसे विश्वनाथन आनंद भारत के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने, उन्होंने कई बार विश्व खिताब जीता। आज डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एग्रीगेरी, विविध गुजराती और वैशाली रमेश बाबू जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना हुई थी। आइए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपनी सोच को मजबूत करेंगे और नई पीढ़ी को शतरंज जैसे ज्ञानवर्धक खेल खेलने के लिए प्रेरित करेंगे।
1: बिल्कुल भाई, ये तो बहुत, हमें तो ये गेम बहुत पसंद है कि एक तो इसमें जब टाइम हम पास करते हैं उस पे टाइम स्पेंड करते हैं तो हमको हमारा माइंड जो है इतनी तेजी से काम करने लगता है।
0: जी दीदी,
1: कि कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं लगती है।
0: इसीलिए तो अभी कहा कि समस्या सुलझाने वाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ढाई घर चलने वाला घोड़ा होता है, सीधी चाल चलने वाला हाथी होता है, राजा होते हैं, रानी होते हैं और बहुत सारे पैदल भी होते हैं। तो एक तरीके का ये युद्ध का मैदान होता है। तो इसमें जो है राजनीति भी करनी पड़ती है और सोच समझकर चालें चलनी पड़ती हैं।
0: जी दीदी,
1: तो चलिए भाई, अब हमारे ठंडी हवा का झोंका यानी कि समर जी हमारे साथ हैं और आज देखते हैं समर जी कौन सी जानकारी लेके आए हैं। और ये बहुत ही पेशेंस से बैठे रहते हैं, जब लास्ट में सारे ये बच्चे जो है अपना परफॉर्मेंस दे देते हैं उसके बाद हमारे समर जी का नंबर आता है, लेकिन इतना पेशेंस बना के रखते हैं, कभी नहीं शिकायत करते हैं कि दीदी मेरा नंबर कब आएगा। तो चलिए, आपका नंबर आ गया है और आज आप बताइए कि कौन सी जानकारी आप हमारे प्यारे लिसनर्स और प्यारे प्यारे जो आपके दोस्त बाहर बैठे हैं उनको देना चाहते हैं।
4: एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूं कहूं एक अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूं कहूं एक अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की।
1: ओ,
4: सोनम वांगचुक जो है कहते हैं
1: इस समय तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे छाई हुई है।
4: और दुखद बात ये है कि इतने बड़े एजुकेटर, इनोवेटर, साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट को हमारी सोशल मीडिया सिर्फ ये कह के नकार रही है कि दिस इज़ अ चाइनीज एजेंट, ये कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं, कुछ भी हो, लेकिन अंततः वो लड़ तो हमारे लिए ही रहे हैं ना, वो लड़ तो उन्हीं 12 छात्रों के लिए रहे हैं जिन्होंने नीट यूजी की परीक्षा लीक से आत्महत्या कर ली, वो लड़ तो उसी भारत के लिए रहे हैं जो भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो भारत जिस भारत के पास सबसे ज़्यादा यूथ है उन्हीं यूथ के लिए लड़ रहे हैं, और वही यूथ एक छोटी सी बात का र्यूमर बना के कहते हैं कि ये चाइनीज एजेंट है, ये कुछ नहीं जानता इंडिया के बारे में। और सोचिए कि जब तक वो इस फील्ड में नहीं उतरे थे जो है आंदोलन के फील्ड में, तब तक उन्हें बहुत अच्छी निगाहों से देखा जाता था। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल बहुत भगवान की तरह पूजना चाहिए, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर तो हमको सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो नीट की बात कर रहे हैं, वो छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। और एक इसी तरह एक बहुत बड़े साइंटिस्ट IIT कानपुर के प्रोफेसर थे GD अग्रवाल, तो उन्होंने भी 2018 में अनशन किया कि गंगा साफ होनी चाहिए, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, अंततः उन्होंने प्राण त्याग दिए अपने पानी से, वो भूख अनशन थी उनकी, हंगर स्ट्राइक, उसमें वो पानी और शहद पी के जीवित रहते थे, और अंततः जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको लगा कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तो उन्होंने पानी और शहद भी त्याग दिया, और अंततः उनकी मृत्यु हो गई दशहरे के दिन सन 2018 में। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा एक रत्न भारत ने खो दिया, और अगर हमने सोनम वांगचुक की मांगों को नहीं सुना तो फिर भारत कितना बड़ा रत्न खो देगा। वैसे तो अभी न्यूज़ आ रही कि उठा लिया गया सोनम वांगचुक को वहाँ से जंतर मंतर से, फिर भी एक गांधी जी जब प्रोटेस्ट करते थे, भूख हड़ताल करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज भी उनसे आके बात करते थे, एक बार आश्वासन देते थे कि क्या है, भले ही वो उस बात को ना मानते हों, अंततः वो अपनी गलती तो मानते थे। मैं नहीं कहता कि एक आदमी के इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी गलती तो माननी चाहिए शिक्षा मंत्रालय को अपनी कि मेरी गलती हुई, अब हम पूर्ण ध्यान रखेंगे इसका। तो इसीलिए सोनम वांगचुक बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए।
1: देखिए, ये सोचना चाहिए कि यही बच्चे तो हमारे देश का भविष्य हैं।
4: और
1: अगर कोई लड़ रहा है उनके लिए तो उसकी कम से कम बात तो सुननी चाहिए।
4: हाँ, जंतर मंतर पे स्ट्राइक कर रहे हैं सोनम,
1: भले आपको आपकी नीतियों के वो खिलाफ है या कुछ भी है, वो तो बाद में आपको देखना चाहिए, लेकिन पहले जो हम कहना चाहते हैं प्रोटेस्ट के लिए अगर कोई बैठा हुआ है तो कम से कम उसका सुने तो।
4: हाँ।
1: उसकी क्या भावनाएं हैं, कैसे विचार हैं, क्या कहना चाहता है
4: और
1: क्यों कहना चाहता है।
4: हाँ, सोनम वांगचुक इतने बड़े इनोवेटर हैं कि उन्होंने सेकमोल की स्थापना की है, सेकमोल यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको फेल होना पड़ता है, वहाँ के एग्ज़ाम में आपको फेल होना पड़ता है, और 3 Idiots जो मूवी है उसका एक मेन किरदार रेंचो उन्हीं से इंस्पायर्ड है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, वो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के पास आउट हैं, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, जैसे आइस स्तूपा, जब लद्दाख में सर्दियों के टाइम में बहुत सारा पानी आ जाता है, और जब उनको ज़रूरत नहीं होती बहुत सारे पानी की तो लद्दाख में बहुत सारा पानी बर्फ के रूप में आ जाता है, और जब वसंत में पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी गायब हो जाता है, पिघल के बह चुका होता है नदियों में, तो इसीलिए उन्होंने आइस स्तूपा बनाए, जो एक कोन जैसा शेप है, जो पहाड़ छोटे छोटे होते हैं, उन्होंने पाइप के हेल्प से पानी को ऊपर तक पहुंचा के खुले जो एनवायरनमेंट है उसमें फवारे की तरह छोड़ा, और बहुत ज़्यादा ठंड होती क्योंकि लद्दाख में, तो इसलिए वो पानी तुरंत जम गया। कोन जैसा शेप ले लिया। अब सवाल यह है कि कोन जैसा शेप ही क्यों पानी प्रिजर्व करने के लिए, अब कोन इसलिए क्योंकि कोन का सरफेस एरिया कम होता है और सूरज की गर्मी से
1: जल्दी पिघल
4: कम पिग थोड़ा दिल देर में पिघलेगा, और जब गर्मी आती है वसंत आती है तो धीरे धीरे वो पिघलेगा धीरे धीरे और पानी मिला करेगा। इसी तरह उन्होंने -20 और -30 डिग्री में सर्वाइव करने के लिए सोलर टेंट्स बनाए, जो सोलर की गर्मी से उसको गर्म रखते हैं पूरे टेंट को, और बहुत सारे छोटे बड़े आविष्कार किए, और इंडिया ही नहीं जापान जैसे कंट्रीज उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखती हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े इनोवेटर हैं, तो अगर वो हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है सुनना चाहिए उनकी बातों को।
1: बात कोई भी हो उसकी सुनना चाहिए, बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे देश का यूथ कुछ कहना चाहता है तो तो कम से कम एक बार उनकी बात को सुनना चाहिए, भले वो बाद में आप उसको नकार दीजिए या कुछ भी, जो भी आपकी पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग करिए, लेकिन पहले बातों को तो सुनना चाहिए।
4: मैं ये नहीं कहता कि एक आदमी इस्तीफा देगा तो सब बदल जाएगा, लेकिन फिर भी माफ़ी और बात तो सभ्य समाज की एक निशानी है।
1: फिर बोलने का अधिकार सबको मिला है हमारे संविधान से। तो चलिए बस इसी के साथ हम चलते हैं अपने अपने घरों की ओर, क्योंकि हमारी मम्मीज हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। और आज तो बरसात का मौसम है, अच्छी अच्छी डिशेज भी घर में बनी हुई है, तो क्यों हम देर करें, हम निकलते हैं अपने घरों की ओर। ये मंच देते हैं ओपन माइक के लिए, आप सुनते रहिए, आप बने रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ और सुनते रहिए ज्ञान स्त्री
0: 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और जी आज का मौसम बड़ा खूबसूरत है। जी हाँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है, फुहार का मौसम है और इस मौसम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ मनु आप सभी के साथ। और अभी हमारे साथ जिनको आपने सुना, जो हम सबका बहुत ध्यान रखती हैं, वो हमारी वाली फेवरेट वाली दीदी भी हमारे साथ उपस्थित है, जिनका नाम है
1: गीता दीदी।
0: जी गीता दीदी, ये हालांकि होती बच्चों के साथ है लेकिन आज हम बच्चों के साथ हैं। और आपको और भी बताएं कि आज के इस कार्यक्रम में चूंकि बारिश हो रही है और बहुत लोग नहीं आ पाए, कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं जो बहुत प्यारे प्यारे हैं। और अगर नहीं आ पा रहे हैं आप तो घर से ही आपका दूरभाष क्रमांक वही है 63-93-31-64-29, आप हमको फ़ोन करके भी अपना कार्यक्रम सुना सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक बहुत हमारी प्यारी श्रोता हैं, बहुत नियमित श्रोता हैं, सविता जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं।
2: नमस्ते सभी को।
0: जी कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ। मैं बारिश हो रही थी बोल के मैं बाहर आ गई, घूमते स्टूडियो आ गई। बारिश का दिन में बोलते कि बारिश का मौसम हो तो मन का भी मौसम अच्छा हो जाता, तो मेरे लिए सबसे अच्छा जगह आज ही सर सुबह का टाइम पूछ रहा था कि गोंडा में सबसे अच्छा जगह कौन सा है। मैं बोली ज्ञानस्थली रेडियो चैनल, मैं इसलिए आ गई
0: बिल्कुल
2: से मिलने के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और दोस्तों आपको बता दें कि आज हमारे बीच में जो एक सबसे छोटा बच्चा है जिसका नाम है मनु।
0: हमारी बात कर रही है। जी
1: तो आज वो बहुत अच्छे अच्छे बरसात के सॉन्ग सुनाने वाला ये छोटा
2: और भीग के भी आए हैं।
0: हाँ, भीग
1: के भी आए हैं। बालों से पानी की बूंदे एकदम टप टप करके टपक रही हैं।
0: जी हाँ
1: भाई, इतना क्यों भीग गए? अभी जाएंगे घर ना तो मम्मी जो है, मम्मी तो कम।
0: हाँ वो तो ज्यादा नहीं, वो कहेंगी ठीक है, मतलब बस उनका दृष्टि रहता है कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बस यहीं तक ही रहिए।
1: मैं तो आगे भी गाऊंगी ना।
0: यह गाने को आगे गा सकता है लेकिन बस तीन तक सीमित है, तीन पंक्तियों
1: तक। पता तो चले वहाँ पे।
0: हाँ कि मतलब
1: उनके पीछे क्या क्या हो रहा है,
0: क्या क्या हो रहा है। तो गीता दीदी आपने बरसात का एंजॉय कैसे लिया?
1: अरे हम तो सुबह से, और कल से, ये सुबह से की बात नहीं, कल से ही हमें, मुझे तो बहुत मतलब बेहद पसंद वाली ये जो मौसम है। हाँ। मैं तो छत पे चढ़ जाती हूँ और उस बहाने से कि पानी भर गया है, पानी निकालने जाना है, सब हाँ। चिल्लाते रहते हैं कि फिसल जाओगी तो काई लगी हुई है, तो मुझे कुछ नहीं, मैं सीधे ऊपर जाती हूँ और वहाँ नाली में और कायदे से कपड़े लगा देती हूँ। हाँ? ताकि पानी बाहर ना जाए, वो भर जाता है, उसके बाद मैं छम छपा बहुत मजा आता है।
0: वो जल परी बन जाती हूँ उस समय एकदम से।
1: बिल्कुल मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है कि यही सब बचपन में करते थे और किसके साथ करे, तो मैं अकेले ही इंजॉय करती हूँ।
0: क्या बात।
1: वैसे आज जो बिल्कुल बच्चों ने तो कमाल कर दिया, इतनी बारिश में भी आए हैं यहाँ पर, और हाँ। मुझे मतलब बेहद खुशी हो रही है। हमारे साथ प्रतीक और सत्यम बैठे हुए हैं।
0: अच्छा, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं।
1: कितने छोटे बच्चे हैं,
0: बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई। तो प्रतीक और सत्यम जी आप दोनों का एक साथ स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद।
0: हाँ जी, तो इनसे शुरुआत करते हैं, शुरुआत छोटों से करनी चाहिए। हमारे साथ और भी भाई सृष्टि हैं, इनसे भी छोटी और
1: दृष्टि
0: हैं। जी हाँ, सृष्टि दृष्टि दोनों लोग उपस्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने छोटे से बच्चों के साथ। तो भाई आप लोग आज क्या बताने वाले हैं, क्या गाने वाले हैं?
3: आज हम शंकर महादेवन जी का एक गीत है, ब्रीथलेस।
0: हाँ
1: ब्रीथलेस।
0: हाँ जी, वाह क्या बात है। तो आज वो गाने वाले हैं आप?
3: जी सर।
0: क्या बात,
1: एक आज सांस ले लेना मेरी तरफ से।
3: अरे दीदी,
0: अरे दीदी, अरे दीदी, नहीं उनका नाम गीता दीदी है, आपने तो नाम
1: क्यों? वो शॉर्ट फॉर्म है ना दीदी।
0: अच्छा,
1: अब गीता कौन बोले इतना लंबा?
0: अरे
3: लंबा तो नहीं है दीदी।
1: चलिए
0: चलिए ठीक है, चलते हैं भाई शंकर महादेवन के ब्रीथलेस की तरफ। अपने दोनों नाम अपने अपने बता दीजिए आप लोग। आपका नाम है?
1: सत्यम जी हैं हमारे साथ।
3: मेरा नाम प्रतीक तिवारी है। मेरा नाम सत्यम तिवारी है।
0: जी हाँ, तो प्रतीक और सत्यम जी की तरफ से प्रस्तुत है ब्रीथलेस।
3: कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों के रुतों और रंगों की बरखाए खुशबू की आंधी है महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं बहकी हुई सी अब सारी हवाएं खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं बदली हुई सी अब सारी अदाएं जागी उमंगे धड़क रहा है दिल सांसों में तूफान होठों पे नगमे आंखों में सपने सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं जब कोई आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसे उसे पाया था प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे भौरे के पीछे को ओस में धुला हुआ फूल खिलाए जैसे बादल में एक चांद छुपाए और झांक रहा है जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है लहरों लहरों बात करे को जैसे मोती पर से जैसे कहीं चांद की पायल गूंजे जैसे कहीं शीशे के झाम गिरे और छन से टूटे जैसे कोई छिपके सितारे बजाए जैसे कोई चांद रात में गाए जैसे कोई हॉल से पास बुलाए कैसी मीठी बातें थी वो कैसी मुलाकातें थी वो जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आर जमानी है कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर यहाँ बस कहीं पर उसने बताया मुझे और समझाया मुझे हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था गुल जो खिले हैं ऐसे ही खिलना था जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं कानों में मेरे जैसे शहद से गुल लगे ख्वाबों के बन जैसे आंखों में गुल लगे ख्वाबों की दुनिया में कितनी हंसी और कैसी रंगी थी ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था जा भी चुका है और दिल में रहा है अब तन्हा तन्हा न तो कोई अरमान ना कोई तमन्ना है न तो कोई सपना है अब जो मेरे दिल और अब जो मेरी रात है उनमें सिर्फ आंसू है उनमें सिर्फ दर्द की रंजे की बात है और फरियाद है मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद है मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद है मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद है
0: क्या बात है भाई बच्चों वास्तव में मतलब इतनी तेज स्पीड में गाना हाँ मतलब इसका अभ्यास किया है क्या आप लोगों ने कई बार
4: जी सर हम लोगों ने इसको बहुत बार गाया है तो इसकी प्रैक्टिस हो गई
2: सुना भी है बहुत बार गाया
0: अच्छा मतलब
1: ये आज की जनरेशन है
0: हाँ मतलब
1: कहते हैं जेन जी
0: इस उम्र में हम लोग जो है वो
1: क्या भाई इस उम्र में तो हम लोग क्या ही करते थे बहुत ज्यादा तरक्की हुई तो गुल्ली डंडा खेल लिया हाँ, गोली कंचे खेल लिए
0: खेल लिए बिस्कुट
1: गाने की तरफ तो बिल्कुल ध्यान था ही नहीं कि ये ऐसी भी चीजें होती है
0: अच्छा तो इस गाने के लिए किसने प्रेरित किया आपको कि अपने मन से आया कि
4: अपने मन से हम लोगों ने किया कि ये ब्रीथलेस है हम लोग भी इसको ट्राई करेंगे
0: क्या बात है मतलब ब्रीथलेस गाना और जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे श्रोता देखते हैं कौन है हमारे साथ हेलो हेलो हेलो एक मिनट सर हेलो
5: हाँ जी सर नमस्कार
0: जी नमस्कार अच्छा हो क्या बात है दुनिया के सबसे गहरे सागर अर्थात प्रशांत महासागर जी
5: जी जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर
0: कैसे हैं आप
5: बस बढ़िया है आप कैसे हैं
0: बढ़िया है बहुत अच्छा हूँ मैं बताइए मौसम कैसा है आपके यहाँ
5: मौसम तो बड़ा सुहाना है आज का
0: मतलब बारिश हो रही है या नहीं
5: हाँ हल्की हल्की मध्यम मध्यम
0: तो इस मौसम में सबसे अच्छा मन करता है कि पकौड़ी हो साथ में चाय हो
5: हाँ हाँ सबकी अपनी अपनी चॉइसें हैं
0: अच्छा आपकी क्या है
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं बस ऐसे ही होना कोई नाश्ता अच्छा होना चाहिए साथ में
0: साथ में अगर चाय के स्थान पर काफी हो तो मजा हो जाता है
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आज इस बारिश के मौसम में आपसे क्या उम्मीद करें हम
5: अभी आपका प्रोग्राम सुन रहे थे बच्चों ने बड़ा अच्छा जो है हाँ? गाना गाया
0: क्या बात है भाई देखिए आपकी तारीफ कर चुके हैं
5: आपस का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और उनका कॉम्बिनेशन हमें बहुत पसंद आया
0: क्या बात है
1: ये फायर ब्रांड बच्चे हैं
0: हाँ मतलब इन बच्चों ने प्रैक्टिस भी की और ब्रेथलेस गाया और गजब का गाया
5: गजब का गाया बिल्कुल इसमें नो डाउट
0: मतलब अभ्यास भी है इसमें लेकिन वास्तव में इतना अभ्यास करने के बावजूद हम तो सपने में सोच नहीं सकते कि इस तरह गा पाएंगे
5: नहीं नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा गाया उन्होंने
0: और आप स्वयं भी बहुत अच्छा गाते हैं
5: जी हाँ बस गुनगुनाते हैं अच्छा तो दूसरे वालों को लगना चाहिए
0: बिल्कुल सही बात है तो फिलहाल बारिश का मौसम है तो कुछ बारिश वाला हो जाए
5: जी बिल्कुल हो जाएगा
0: जी
5: तो बारिश के वैसे तो कई सारे नगमे हैं और बारिश जिसमें हमारे दो जो है गाने हमारे बहुत हमारे करीब हैं एक तो उदित नारायण जी का गाया हुआ और एक किशोर कुमार जी का गाया हुआ।
0: क्या बात है,
5: तो थोड़ा थोड़ा दोनों सुना देते हैं।
0: जी बिल्कुल सुना देते हैं।

जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें, अरमान

0: सर ये किशोर कुमार,
1: क्या बात है भाई, वाह, जैसे तालियां बजाई आपके लिए, बहुत ही शानदार गीत आपने दिया।
2: बहुत प्यारी आवाज है भाई प्रशांत जी की, बहुत तो प्यारी आवाज है,
1: बहुत गहरे सागर है भाई ये, बहुत प्यारा गाते हैं।
2: इसीलिए आप कह रहे थे कि ये सागर में गहराई बहुत है।
1: हाँ, इस सागर में, ये प्रशांत महासागर है, उनसे गहरा कोई सागर ही नहीं हुआ, ये महासागर है
2: बिल्कुल
1: भाई जी। तो हम किशोर जी को सुन चुके हैं, तो अब चलते हैं साक्षात उदित नारायण को सुनने।
0: जी हाँ सर, उदित नारायण जी का एक गाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है
1: जी,
0: ये हमराज मूवी का गाना है। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी।

0: जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह। इस मौसम के हिसाब से ये गाना तो एकदम समझिए सोने पर सुहागा है।
0: जी जी, बहुत ही अच्छा गाना है।
1: हाँ, और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी कहाँ है?
0: बिटिया रानी भी यहीं पे हैं।
1: जी, तो भाई बिटिया रानी को बहुत दिन हो गया हमने नहीं सुना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इनकी बेटी बहुत अच्छा गाती है भाई। और नाम जानती हैं आप?
2: बिल्कुल, अरे कैसे जानेंगे आप बताएंगे तब।
1: यहाँ पर जो एसपी है उनकी वाइफ का नाम क्या है?
2: ओहो, तन्वी।
1: जी बिल्कुल, यही नाम उनका है। हेलो
3: हेलो
1: जी बिटिया, नमस्ते।
3: नमस्ते,
1: कैसी हो बेटे?
3: अच्छे हैं।
1: बहुत दिन हो गया आपके, आपकी आवाज नहीं सुनी हमसे।
3: जी,
1: तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब ना बुधवार को ना शनिवार को?
3: मतलब पापा बिजी रहते हैं तो बस वही।
1: अच्छा, मतलब पापा बिजी रहते हैं तो पापा से कहिए कि बुधवार को 15 मिनट के लिए फ्री हो जाया करें।
3: जी।
1: तो आज हम आपसे क्या सुनने वाले हैं?
3: आज हम आपको सुना देते हैं तुम ही आना, एक सॉन्ग है।
1: आहा, बहुत सही गई याद है, क्या बात है।
3: तो बस थोड़ा सा सुना देंगे।
1: जी जी बिल्कुल।

0: थैंक यू सर.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर है. लाइक फादर लाइक डॉटर हो गया यहाँ पर.
2: बहुत बहुत सुंदर,
1: जैसे इनके पिता वैसी उनकी बिटिया.
2: देखिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे गोंडा में.
1: हाँ, बहुत प्रतिभाएं हैं और ये भी 9th क्लास की बेटी है.
2: बहुत सुंदर भाई, बहुत बहुत
1: बहुत प्यारा गाती हो आप. बहुत अच्छा लगा हमको भाई,
2: प्यारी है कि हम तो खो ही गए कुछ समय.
1: अब हम बुधवार को आपकी प्रतीक्षा करेंगे.
0: जी बिल्कुल
1: जी. अच्छा प्रणाम.
2: तो चलिए औरों की भी सुध ले.
1: जी अब भाई भाई साथ प्रशांत जी रहे, उनके साथ उनकी बहुत प्यारी सी बेटी रही. और अब चलते हैं भाई हम अपने सविता जी की तरफ. तो आज सविता जी आप क्या लाई हैं हमारे लिए खास?
3: खास मैं लाई कुछ नहीं, मैं लेने आई हूँ खुशी.
1: अच्छा, खुशी लेने आई हैं.
3: इतना सारा देख के, इतने प्यारे प्यारे बच्चे लोगों को देख के मुझे बहुत सारा खुशी में लेके जाती हूँ घर पे.
1: क्या बात है, मतलब यादें जो इंसान को होती हैं वो कभी कभी सताती हैं, कभी कभी याद दिलाती हैं.
3: जी,
2: और सरता जी को देख के बस मुझे एक ही बात याद आती, अमी तुमा के भालोबाशी.
3: अमी अपना के भालोबाशी. अमी अपना के भालोबाशी, अमी सबाई के भालोबाशी. गोंडर मानुष खूब भालो.
1: हाँ, क्या बात है.
3: गोंडर का इंसान
2: बिल्कुल बहुत अच्छे है.
1: तो आज आपका विषय क्या रहेगा?
3: आज मेरा विषय है कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ. आज से 7 साल पहले मैं डॉक्टर ने बोला था कि आपको डिप्रेशन है.
1: हाँ.
3: तो डिप्रेशन में रहने से इंसान को क्या क्या होता है वही बोलना चाहती हूँ.
1: जी,
3: डिप्रेशन में रहने पे कुछ काम करने को मन नहीं लगता, ना ही कुछ सुनने का, ना ही किसी से बात करने का.
1: हाँ.
3: कुछ भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो मेरा मात्र मैंने तो 2 ही महीना मैंने दवाई चला था. 2 महीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई गोंडा. गोंडा आने के बाद मैं दवाई से मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है. मैं चाहती थी कि ऐसे ही अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहती हूँ. तो धीरे धीरे जब से मैंने 2 साल से जुड़ी हुई इसे FM चैनल से, मैंने बहुत सारा अपना
2: तनाव कम हो गया.
3: तनाव कम हुआ है, बहुत सारा जीवन में भी बदलाव आई है. बहुत सारा बदलाव आई है. और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आज अदनान सर कुछ काम की वजह से बाहर है. नहीं तो मैं अदनान सर को सुन सुन के उनसे साथ बातें करते करते मैंने बहुत कुछ डिप्रेशन खत्म मतलब
2: हो गया.
3: हो ही गया,
2: आपको देख के लग रहा है
3: हो ही गया है. और यहाँ पे आती हूँ तो और भी मुझे अच्छा लगता है, इतने सारे बच्चों के साथ में. वैसे मेरे को लिसनर लोग जो लोग मुझे सुनता है जानता है अच्छी तरह से, वो लोग तो मुझे बोलता है आप बिल्कुल बच्ची के जैसे. मैं यहाँ पे और भी बच्चे लोगों के साथ मिलकर और भी मैं बच्ची बन जाती हूँ.
1: वास्तव में
3: शैतानी करती हूँ.
1: क्या बात है, नहीं थोड़ी बहुत शैतानी आप कर लिया
3: कीजिए.
1: देखिए हम लोग थोड़ी बहुत शैतानी कर लेते हैं.
2: हमारे मनु जी से शैतानी अगर आपको सीखनी है तो हमारे मनु जी से.
3: वो तो मैं देख ही रही हूँ, बाल भिगा के आए, पूरा कपड़ा भिगा के आए, पानी में छपक छपक करके.
2: छोटा बच्चा है आज मंच पे
3: और आप सबसे छोटी बच्ची आज.
1: ये हुआ सोने पे सुहागा, नैले पे दहला. क्या बात है. तो मतलब डिप्रेशन से अपने आप को निकलने का तरीका ये है कि अगर आपने अपने आप को कहीं व्यस्त कर रखा है,
3: व्यस्त करिए. जैसे आप जो सो आपको अच्छा लगे कुछ सुना करिए मन लगा के, जो आपको सीखना चाहता है आप सीख सकते हैं. किसी अपने आप को व्यस्त रखना जरूरी है. अपने आप को व्यस्त रहने से ही आप डिप्रेशन आपको धीरे धीरे खत्म होगा.
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर आप व्यस्त रखते हैं
3: अपने आप को, कहीं ना कहीं व्यस्त रखिए. जो आपको अच्छा लगे, आपको चाहे गाना गाने का मन हो, चाहे खाना बनाने का मन हो, चाहे कोई काम में अच्छा लगे वो कर सकते हैं.
2: अच्छा लगे हाँ, करते रहना चाहिए.
3: बाहर भी जा सके, बहुत कुछ है. ऐसा नहीं कि डिप्रेशन आपको हराने, डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है तो आप अपने मन को सुधारिए. अपने मन को कहीं काम पे लगाइए.
2: हाँ,
3: काम पे लगाए और खुश रहें. सबसे मेन बात है कि खुश रहने का कोशिश करिए.
1: क्या बात है, मतलब प्रसन्नता का कोई मोल नहीं है.
3: जी,
1: क्या बात है. तो खुश रहने के लिए हम तो खुश होने के लिए सामने आईना देख लेते हैं.

0: दिन है 31 जुलाई 2026। आपके पास के थिएटर में ओरिजिनल फिल्म आवारापन 2 आने से पहले रिलीज की जा रही है। जहां आवारापन 2 सुनने में आ रहा है कि 14 अगस्त को रिलीज की जाएगी, वहीं पर आवारापन यानी कि आपकी क्लासिक आवारापन जो उस वक्त फ्लॉप चली गई थी, उसको इतनी ज़्यादा प्यार नहीं मिला था, लेकिन एक वक्त के बाद जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जो एकदम हिट फिल्म साबित हुई जा करके, वो वापस से रिलीज़ की जा रही है। 2007 की कल्ट क्लासिक आवारापन ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर 31 जुलाई 2026 को। और वैसे 31 जुलाई को एक और भी फिल्म आ रही है, आपको मैंने याद दिलाया था पिछली बार अगर आपको याद हो तो, और अगर नहीं याद है तो वापस याद दिला देते हैं कि इसी के साथ आपको ओ माय डॉग भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, वही फिल्म जिसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे कुत्ते हैं, ऑलमोस्ट 250 कुत्तों का इस्तेमाल किया गया है उस फिल्म की शूटिंग के लिए। एक इमोशनल हार्ट टचिंग फिल्म जिसकी शुरुआत होने वाली है अमिताभ बच्चन के एक पुराने गाने से, वो भी 31 जुलाई को नियर बाय थिएटर्स में रिलीज की जाने वाली है। डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने ओ माई गॉड जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। जबरदस्त फिल्में हैं और आपको देखना जरूर पसंद आएगा। तो फिलहाल आप बताइए, आप किसको देखने जा रहे हैं, आवारापन को या फिर ओ माई डॉग को? अच्छी फिल्में बहुत कम थिएटर्स में आती हैं और कई लोग तलाश में रहते हैं कि भैया अगली फिल्म कौन सी आ रही है, क्या इसको देखने जाने वाला है, क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? तो हाँ, आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप एक एनिमल लवर जिनको जानवरों को देखकर फिल्मों से कुछ ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, तो ये आपके लिए और भी कमाल की बात है। एंड चैट बॉक्स में इट्स कुमार जी से हमने पूछा था कि आपको ये नाम का आइडिया कहाँ से आया है, तो आइडिया आया था आपको जब पहली बार सुने थे तो आप अमर अकबर एंथनी सॉन्ग प्ले की थी, आपका नाम नहीं पता था तो सॉन्ग में एक शब्द आता था अनहोनी और वहीं से आपने मेरा नाम उठा लिया आरजे अनहोनी। क्या बात है, क्रिएटिविटी को 100 out of 100 जाना चाहिए आपके लिए। एंड अनोखी जी लिख रही हैं कि ओके अनोखी जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, एंजॉय करते रहिए इंडिया टॉप 20 और आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 17 की तरफ। अभी आपने सुना एक बढ़िया सा रोमांटिक बारिश वाला गाना, वैसे हालांकि इसमें बारिश थी नहीं बट हमने करा दी, और अब आप एंजॉय करने जा रहे हैं सॉन्ग नंबर 17, एक सैड सॉन्ग और नाम है ज़रूरत। किसकी ज़रूरत? एक फिल्म की, मुस्तफ़ा की आवाज़ में बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग 2014 में रिलीज़ ये फिल्म थी और इसके अंदर श्रद्धा कपूर और ऑफकोर्स दूसरे एक्टर कौन है उनका नाम आप चैट बॉक्स में बताइए, इतनी कमाल की एक्टिंग की है कि भाई लोगों को बहुत पसंद आई। ऊपर से इसमें विलन लोगों को ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि विलन के किरदार में वो आए थे जो हमेशा से लोगों को हंसाते आए हैं, और जब भी देखा आपने कि एक कॉमेडियन विलन का अवतार लेता है यानी कि एक निगेटिव रोल लेता है तो लोगों को डरा बहुत अच्छे से जाता है। सुनते रहिए सॉन्ग नंबर 17, मिलते इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गारासरी 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: मुस्तफा की आवाज़ में आपने एंजॉय किया एक विलन से ज़रूरत, और ज़रूरत के साथ ही हम आपको बता दें कि आपके लिए अगला गाना हम लेकर आए हैं तेज गिल की आवाज़ में, और ये वो गाना है जो आपका दिमाग जानता है, आपकी रूह जानती है, और आप इस गाने को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, भले ही आप इस गाने को सुनते ना हैं, क्योंकि आजकल हम ट्रेंड में इस कदर हो चुके हैं कि पुराने गाने जो हमारे आसपास रहते हैं या हमारी प्लेलिस्ट में कभी हमारे पसंदीदा हुआ करते थे, उस ब्लूटूथ ईरा में जब हमारे पास कोई ऐसे सॉन्ग्स नहीं थे, हम यूट्यूब नहीं चला रहे थे, स्पॉटिफाई नहीं चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम इन गानों को बहुत मिस करते थे, इन्जॉय करते थे, और स्पेशली इस गाने की शुरुआत ही बारिश के साथ होती है। तो ऑफकोर्स मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है पंजाबी बीट्स है, जहाँ आजकल पंजाबी सॉन्ग्स में आपको कार, दुपट्टे, रंग, बंदूकें, इनके बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन एक वक्त था जब पंजाबी सॉन्ग्स फुल लव पर होते थे, यानी कि मोहब्बत पर होते थे, गानों में मोहब्बत थी, बातों में इश्क था, चाहत थी और इबादत थी। तो आइए उसी में से एक गाना सुनते हैं, आपके लिए पेश करते हैं सॉन्ग नंबर 16, नाम है रूह तेज गिल की आवाज़ में आप इंजॉय करने जा रहे हैं एक पंजाबी गाना आपके इस बेहतरीन से सुंदर से मौसम में। गोंडा में तो फिलहाल का जो मौसम है वो कुछ इस तरह से ही है कि बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, और मैं अपनी भाषा में कहूँ तो थोड़ा थोड़ा झला पड़ रहा है। आपके शहर का मौसम कैसा है चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंजॉय करते रहिए 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन पर। हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं, तो लिख रहे हैं नमस्कार मैम, नमस्कार टू यू, यू वेलकम टू यू मैम, थैंक यू सो मच, और आपका भी स्वागत करते हैं इंडिया टॉप 20 में। ताजवर खान हमारे साथ जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून टू यू। आइए चलते हैं हमारे अगले सॉन्ग की तरफ और एंजॉय करते हैं रूह, और आप एंजॉय करें तेरे बिना जीना सजा हो गया है जानू। स्टे ट्यून्ड,
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 16।

0: हां जी सोनी ये, और आपने इस बेहतरीन से नगमे को सुना, और मुझे लगता है ना इससे खूबसूरत गाना अभी तक मेरी प्लेलिस्ट में फिलहाल कोई ना बजा होगा, क्योंकि ये गाना आपकी रूह से निकला है और तेज गिल की भी रूह आप में समा चुकी है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। पंजाबी सॉन्ग्स की बात अलग होती है, स्पेशली बारिश में। मुझे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और ऑफकोर्स आज भी पसंद है, लेकिन लेकिन लेकिन पंजाबी सॉन्ग्स में जो मैं गाने सुनती हूँ वो थोड़े से पुराने होते हैं, यानी कि थोड़े से पहले वक्त के होते हैं, आज के ट्रेंडिंग सॉन्ग्स नहीं होते, लेकिन बहुत बेहतरीन होते हैं। और हमारे साथ हमारी एक पुरानी लिसनर जुड़ गई हैं, जिनके वाइब से भी हम पहचान गए कि वो कौन है। आपका स्वागत करते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद सच में आपसे मुलाकात हो रही है। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, और आपने मुझे मिस किया, मैंने भी आपको मिस किया। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और इस गाने के उस पार आएंगे हम लेकर के बॉलीवुड की अगली न्यूज। साथ ही आज आप अपना फेवरेट सैड सॉन्ग प्लस बारिश का स्पेशल वाला गाना चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, क्योंकि आज मेरी प्लेलिस्ट ओपन है आपके लिए, और आप बताने जा रहे हैं कि आपका पसंदीदा गाना चैट बॉक्स में कौन सा होने वाला है। देखते हैं भाई आज किसका लकी ड्रॉ निकलता है और किसके गाने प्ले हो जाते हैं आज हमारी ओपन वाली प्लेलिस्ट में। सुनते रहिए इन द टॉप 20 स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 15.

0: अच्छा भैया, कभी आपने सोचा है कि किसी फीमेल की
1: हाय
0: अभी अभी
1: हाय,
0: डिलीवरी हुई हो और इसके बाद वो तुरंत डांस करने चली जाए? ऐसा कभी हुआ है या आपने कभी सोचा है? नहीं ना। बट एक ऐसी ही डांसर थी महाराष्ट्र में, बहुत बेहतरीन डांसर थी, बहुत उम्दा उनका डांस था। और मैं आपको बता दूं, वो 9th मंथ की प्रेग्नेंट थी। उन्होंने अपने डांस परफॉर्मेंस के बीच में एक बच्चे की डिलीवरी भी दी। प्लस जब लोगों ने उनसे कहा कि नहीं अभी मत डांस करना, अगर तुम अभी डांस करोगी तो तुम मर जाओगी, तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं डांस करूंगी तो मर जाऊंगी। और उन पर एक फिल्म भी बन रही है जिसमें आपको श्रद्धा कपूर नजर आ रही हैं। जी हाँ, लेकिन उस फिल्म को पोस्टपोन करने की बारी आ चुकी है। सुनने में आ रहा है कि ईथा जो फिल्म है उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यश की फिल्म टॉक्सिक से वो क्लैश कर रहा है। एक साथ दो जबरदस्त फिल्मों को रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फर्क आता है। जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसा कलेक्शन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिफरेंसेस की वजह से जो फिल्में क्लैश कर रही होती हैं, टाइमिंग क्लैश कर रहा होता है, कलेक्शन, ऑडियंस और न जाने कितनी ही चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए सुनने में आ रहा है कि श्रद्धा कपूर की वो महाराष्ट्रियन डीवा पर फिल्माई गई, यानी कि महाराष्ट्रियन एक खूबसूरत डांसर पर फिल्माया गया जो फिल्म है, उसमें थोड़ा सा पोस्टपोन करने की बात हो रही है। अगर रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सच है तो आपको बहुत देर में देखने को मिलेगी, यानी कि पहले टॉक्सिक रिलीज होगी और उसके बाद कहीं जाके आपका इंतजार खत्म होगा और आप श्रद्धा कपूर को बड़े पर्दे पर वापस से देख पाएंगे। एंड ओके, तो हमारे पास जो अगली गाना आया था, यानी कि हमारे चैट बॉक्स में जो अपना अगला पसंदीदा गाना बताया था वो हमारे लिसनर ने बताया था। एंड हम आपको बता दें कि आपका ये गाना पहले से ही मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। पता नहीं क्यों, लेकिन आपका मेरा दिल से दिल तक का रिश्ता है और मैं आपके गाने पहले ही लगा बैठती हूँ। कमल नयन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। कमल जी, कैसे हैं आप? आप भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और डांस कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनोखी जी ने काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन मति मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद लगातार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ भाई, इतना थैंक यू नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे थैंक यू लिखने के लिए कि हमारी आँखें डब डब डब डब हो गई। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है हमारे घर में। ओके, तो आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। हो मतलब आपके गाने में आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे को तुरंत डिलीवर करने के बाद किसी ने डांस किया, हैट्स ऑफ भाई, उस वुमेन को मेरी तरफ से सल्यूट है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं पायल देव की आवाज में ये वाला गाना, जिसकी फरमाइश हमारे एक लिसनर ने भी की है। हालांकि ये फरमाइशों का शो नहीं है, लेकिन आज मेरी प्लेलिस्ट आपके लिए ओपन हमने जरूर कर दी है, जिसमें आप अपने पसंदीदा गाने, अपने बारिश के स्पेशल वाले सॉन्ग्स और अपने सैड सॉन्ग्स हमें भेज सकते हैं आपके अपने वाले चैट बॉक्स में। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के अगेन एक हाई बीट, एक हाई एनर्जेटिक सॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं एक रोमांटिक गाना। Stay tuned.
2: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 14.

0: तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। इस गाने को सुनने के बाद आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और हमारे साथ कुछ और भी लिसनर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखा है वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच और आपका स्वागत करते हैं हम। हाय मैम, हाय, कैसे हैं आप? इन द टॉप 20 में आपका इस्तकबाल करते हैं। एंड RCM बबलू पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें सुनते हैं भटपी से, लिख रहे हैं बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, थैंक यू सो मच और आपका भी स्वागत करते हैं। ये गाना तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, सॉन्ग डेडिकेट किया गया है मुझे। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना मैं डेडिकेट करती हूँ अपने लिसनर्स को, जिनसे मैं कहना चाहती हूँ बस इतना सा कि सॉन्ग नंबर 13 में आप सुन लीजिए कि मुझे आपसे क्या कहना है।
1: रेडियो 99.6 FM presents इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: और मुझे बस यही कहना है आपसे कि थोड़ी देर और ठहर जा, क्योंकि अभी थोड़ी देर, अभी और भी वक्त है हमारे पास आपके साथ बिताने के लिए, इसीलिए बस थोड़ी देर और ठहर जा। आपकी चॉइस तो वेरी नाइस मैम, ये तो बहुत कुछ कह रहा है, इसमें एहसास ज्यादा है। थैंक यू सो मच। और बारिश को बोल दो मैम रुक जाए, दो दिन से रुक नहीं रही है इधर गुजरात में, क्या बात है भैया। तो बारिश में भीगिए, नाचिए, घूमिए और पकौड़े खाइए, मतलब ज्यादा पकौड़े मत खाइएगा, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं। और ये लाइन लिखी है महेंद्र जी ने राजस्थान से, वैसे मैं बोल दे रही हूँ कि तू थोड़ी देर और ठहर जा, या फिर कहें तो रुक जा। और गुड सॉन्ग मैम, थैंक यू सो मच, गुड सॉन्ग मैम, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला सॉन्ग बारिश हो और ये गाना ना बजे, यानी कि बारिश हो और रहना है तेरे दिल में, इस एल्बम का कोई गाना ना बजे, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, रस्म रिवाज यही कहते हैं कि अगला गाना आपके लिए पेश करते हैं, सॉन्ग नंबर 12 सच कह रहा है दीवाना। स्टूडियो सुनते रहिए आप अपनी अपनी आर्जुनती के साथ, आपका अपना शो इंटर टॉप 20, आपकी अपने एफएम रेडियो 91.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। और मैंने कितनी बार आपके अपने बोल दिया, जरा काउंट करके जरूर बताइएगा।
1: रेडियो 91.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 12.

0: हां जी, और लाला लाला करते हुए हम भी वापस आ गए और आप एंजॉय कर रहे थे सच कह रहा है दीवाना रहना है तेरे दिल में। इस गाने के खूबसूरत बोल लिखे थे समीर भाई साहब ने, यानी कि समीर जी ने, और हरीश जयराज का संगीत था, के की आवाज़ थी, और इस गाने को आपने महसूस किया और हमारे चैट बॉक्स में इस गाने को लेकर बहुत मोहब्बत आ रही है, सबने बहुत पसंद किया है, आई लाइक दिस सॉन्ग लिखा जा रहा है और मुझे भी लिखा जा रहा है, लव यू मैम, लव यू टू डियर, कैसे हैं आप, और ये हमारी अनोखी जी हमें लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए इस गाने की बहुत तारीफ हो चुकी है और हमारे आरसीएम जी से मैं कहना चाहूँगी कि भैया आप अब मेरे बारिश के गाने मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी आज की प्लेलिस्ट जो ओपन है वो बारिश के लिए ही है, बारिश स्पेशल सॉन्ग चल रहे हैं, सैड सॉन्ग भेज सकते हैं लेकिन वो होने चाहिए आपके बारिश से जुड़े हुए। और अगला गाना जो हमारे पास आया था वो धर्मेश जी का था। फिलहाल धर्मेश जी, आपका ये गाना हमने प्लेलिस्ट में पहले से ही सेट कर रखा था, क्योंकि बिना इस गाने के बारिश की प्लेलिस्ट हमेशा अधूरी लगती है मुझे। और आइए एंजॉय कीजिए अनजाना फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में रिमझिम गिरे सावन, एंजॉय करते रहिए द टॉप 20। आप सुन रहे हैं अपनी आरजूती के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर, स्टे ट्यून्ड, सॉन्ग नंबर 11 आपके लिए पेश करते हैं हम।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 11।

0: और कैसा लगा आपको ये बैक टू बैक एक ऐसा डुओ सुनने के बाद? पहला वो जिसने आवाज की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बना रखा था, वो जिनकी आवाज जब भी किसी को सुनाई पड़ी है या तो उसका दिल झूम उठा है या फिर आंखों में आंसू आ गए हैं। भैया ये वो इंसान हैं जिन्होंने जब गाने बनाए हैं, जब गाने गुनगुनाए हैं, तो उनकी गानों में आपको मोहब्बत से लेकर दर्द तक सब नजर आया है, दोस्ती से लेकर रिश्तेदारी तक सब कुछ दिखा है। जिन्होंने टफ से टफ गाने को भी गाया है और जिन्होंने गाना गाना भी सिखाया है, जिनकी आवाज में इतना दर्द है कि भैया जब उनके गाने बजते हैं किसी की विदाई में तो कोई रोए बिना रह नहीं पाता और उसकी विदाई बिना उनकी आवाज के हो नहीं पाती। और वहीं पर आते हैं वो जिनको माना जाता है उनका चेला प्लस उनका दोस्त, और हम उन्हें कहते हैं किशोर दा, यानी कि किशोर कुमार। किशोर कुमार इतनी बढ़िया आवाज के मालिक है, प्लस उनके पास जो आवाज़ का हुनर है उसको तो प्रेस करने के लिए ऑल टाइम जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी उनकी ऑडियंस है, प्लस जितने भी सिंगर मौजूद हैं, हर कोई उनको कहीं ना कहीं प्रेस करता है, अप्रिशिएट करता है। आपने भी देखा होगा किशोर कुमार सिर्फ एक सिंगर नहीं है, एक कमाल के एक्टर हैं, एक कमाल के डायरेक्टर हैं। इवन वो फिल्में फ्लॉप होने के लिए बनाते हैं और वो फिल्में भी हिट हो जाती हैं, उनके उम्मीद से ज़्यादा कमाई भी कर लेती है। किशोर दा, जिनको मन्ना डे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे, मोहम्मद रफ़ी के साथ उनका कंपटीशन भी चलता था, वो गुरु चेला भी थे, दोस्त भी थे और बहुत अच्छे से गुनगुनाते भी थे। किशोर दा वो सिंगर थे जो लता जी से थोड़ा सा डरते थे, कि लता जी भैया गानों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा करती थी और उन्हें लगता था कि गानों के साथ अगर लता जी के साथ हमने कुछ गड़बड़ की तो लता जी कान पकड़ के डांट देंगे कि ऐसे नहीं गाया जाता है, इसलिए बस थोड़ा सा घबराते थे। बट जितना मज़ा इस जोड़ी ने किया था इतना मज़ा आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। हर गाने के पीछे अपनी कहानी मैं आपको अक्सर अपने इंस्टाग्राम पेज पर बताया करती हूँ, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो उन्हीं के सॉन्ग से है जो आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। भैया आपने वो गाना सुना होगा, सुनो कहो सुना है, ये जो गाना है इसमें किशोर दा लता जी की आवाज़ है और इस गाने को किशोर दा ने इतना फनी स्टाइल में गाया है। यूँ तो आपने देखा होगा कि सिंगर स्टूडियो में खड़े होकर गाना गाते हैं और किशोर दा लेट कर भी गाना गा लेते हैं, चलते फिरते गाना गा लेते हैं। अगर किसी के लिए स्पेसिफिक आवाज़ देनी है तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी देखते हैं, पूरी ज़िंदगी को परखते हैं कि उसका उठना बैठना कैसा है, चलना फिरना कैसा है, उसकी क्षेत्रीय बोली कैसी है। और ऐसा उन्होंने डैनी के साथ भी किया था जब वो आए थे और उनके लिए एक रोमांटिक गाना गाना था। बट यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दूसरे सॉन्ग की, जो लता जी की साथ उन्हें फिल्माया जाने था, मतलब गुनगुनाना था। और उस वक्त जब ये लिरिक्स सामने आई तब किशोर दा और लता जी आपस में बैठ के चिटचैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ऑफकोर्स स्टूडियो के अंदर। और वहीं पर किशोर दा ने कहा, लता जी जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। उन्होंने कहा क्या इमेजिन करना है? उन्होंने कहा भैया कुछ ऐसा इमेजिन करो कि आप और मैं अलग अलग वॉशरूम में बैठे हैं और कह रहे हैं सुनो, और मैं आप मुझे जवाब दे रही हूँ हाँ सुनाओ, तो आप कह रही हो कहो, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब इस गाने की जो लिरिक्स हैं, जरा अब इमेजिन करो कि कैसा फील आएगा। अगर आपने ये गाना सुना होगा ना तो अब आप इसको एक अलग नज़रिए से ज़रूर सुनिएगा और आपको इतनी हंसी आने वाली, एक रोमांटिक गाना, आपको एक कॉमेडी सॉन्ग लगेगा। लता जी और पूरा क्रू वहाँ पे जितने भी स्टूडियो में मेम्बर्स बैठे थे हंस हंस के लोटपोट हो चुके थे, और ये तरीका था किशोर दा का एक अच्छे खासे सीरियस मूड को भी लाइट कर देते थे। लेकिन पैसों के नाम पर बड़े कंजूस इंसान थे। जी हाँ, हम आपको बता दें किशोर दा इकलौते वो सिंगर हैं जिनको अगर पैसे नहीं मिले तो बीच में ही गाना छोड़ के फरार हो जाते थे और उसके पीछे डायरेक्टर भागता था कि रुको भैया पैसा दे रहा हूं मत जाओ। बट किशोर दा कहां रुकने वाले, इसीलिए पहले पैसे के पेमेंट करोगे उसके बाद हम गाना रिकॉर्ड करेंगे, और इसीलिए वो इनकम टैक्स से भी बचना चाहते थे, हालांकि वो बचे नहीं, बात अलग है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और हमारा अगला गाना है हाफ गर्लफ्रेंड से आप सुनने जा रहे हैं बारिश सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल इसका यही है। आप सुन रहे इंडिया टॉप 20 अपनी आरजीवती के साथ, सॉन्ग नंबर 9 आपके लिए पेश करते हैं आपकी इंडिया टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट में। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9।

इस खूबसूरत नगमे के बाद मेरे पास एक काफी दुखद खबर आई है। एम्स में पढ़ने वाली एक छात्रा नाम वैष्णवी आज हमारे बीच नहीं है, और उनकी तरफ से उन्हें डेडिकेट करते हुए हमारे एक लिसनर जिनका नाम है सौरभ मिश्रा, उन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है। रेडियो ज्ञान असली की तरफ से वैष्णवी जी को श्रद्धांजलि, एंड आइए आपको डेडिकेट करते हैं ये गाना जो आपने फरमाइश की है। सुनते रहिए आपका अपना इंटर टॉप 20। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बीच में नहीं है। आप जहां भी हैं, उम्मीद करेंगे आप सुकून से और खुश रहेंगी। हमारे साथ हमारे कॉल लिस्नर जुड़ गए हैं, सौरभ मिश्रा, आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप? आपका भी इस्तकबाल करते हैं इंडिया टॉप 20 में। एंड थैंक्स मैम मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं शुभ संध्या आरजे मैम। शुभ संध्या आपको भी, हालांकि अभी तो फिलहाल दोपहर भी हो रही है, धीरे धीरे शाम आएगी। इसके अलावा विभू मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने अपना दुख जताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और इट्स कुमार जी लिख रहे हैं, छूट जाती है हर वो चीज़ जिसके लिए एक समय पर हम गुमान करते हैं। बहुत अच्छी बात। एंड ऑफ कोर्स आइए प्ले करते हैं आपके लिए आपका सॉन्ग नंबर 7, थोड़ा सा पुराना लेकिन आपके दिल को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कराएगा, एक लड़की भीगी भागी सी। सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 7.
2: Hello and welcome to Gyanasthali 89.6 FM, Gonda Sheher Ki Dhadkan. Main hoon RJ Tanu. Aaj ek baar phir hoon aap sab ke saath. Aur yun hi aati rahungi, le chalne aap sab ko. मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें

0: कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, रोती रातों में जागी सी।
1: और ये उसी फिल्म का गाना है जिसको इनकम टैक्स से बचने के लिए बनाया गया था, ये सोचकर कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ये फिल्म हिट हो गई। लक हो तो ऐसा। किशोर कुमार की आवाज़ में आपने इस गाने को एंजॉय किया। गाने के अंदर मधुबाला भी आपको नजर आई थी, अगर आपने देखा होगा इसका वीडियो फॉर्म। तो इसी के साथ आइए चलते हैं आपको लेकर के हमारे सॉन्ग नंबर 6 की तरफ, और हम आपको सुनाएंगे अरिजीत सिंह की आवाज़ में वो गाना जिसे आप बड़ी मोहब्बत से देखते हैं। बहुत इमोशनल एंडिंग है इस फिल्म की, और ऑफ कोर्स इस इमोशनल एंडिंग का इमोशनल गाना आप एंजॉय करने जा रहे हैं, हमारी अधूरी कहानी। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि सॉन्ग नंबर 4 आपका इंतजार कर रहा है। सॉन्ग नंबर 4 एंड सॉन्ग नंबर 3 पेश करते हैं बैक टू बैक, और लगातार वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन इंतजार कीजिए क्योंकि इसके बाद भी हमारी मुलाकात आपसे होगी, जरूर होगी। बट मिलते हैं इन दोनों गानों के उस पर, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आपकी आशीर्वादी मौजूद है आप सभी के साथ आपके प्ले स्टोरियो में।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India's Top 20 Songs. Song number 4.

0: वन जी, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर टू की तरफ। सॉन्ग नंबर टू जो आपके लिए पेश करते हैं, आपका पसंदीदा गाना मोहब्बत बरसा देना दो। अनोखी शर्मा हमारे साथ लिख रही हैं, वाओ नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। तबेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी लस्तर भी जुड़ी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाठक सर हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्रॉम NGM, आपका स्वागत करते हैं सर इंटर टॉप 20 में। मैम सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे आखिरी के दो गानों की तरफ, और इन गानों के बाद हमारी मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले शो में जो कि है हमारा क्लिनिक यानसली। तो बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज की प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा आपके अपने चैट बॉक्स में।
1: रेडियो 99.6 FM presents इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 2।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा, और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
5: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
4: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाए कि आप हैं कौन।
5: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
4: जी,
5: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीबी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है, और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
5: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
4: जी,
5: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन न लगना।
4: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख न लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
5: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
4: जी,
5: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ, और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ, और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
4: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
5: जी आजी दीदी,
4: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
5: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
4: जी।
5: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
4: जी,
5: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
4: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
5: जी दीदी
4: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
5: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
4: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
4: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
6: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
4: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
6: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
4: अच्छा।
6: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
4: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
6: बहुत सारी,
4: जैसे?
6: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ
4: जी।
6: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं। कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
4: और बाकी?
6: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
4: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
6: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल। यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
4: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए।
6: देखिए आकांक्षा जी,
4: जी
6: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
4: जी
6: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है, देर मत करो। आरजे दीदी
4: जी,
6: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर एनबीएसयू दिखाना चाहिए, ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
4: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा एनबीएसयू से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
6: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, केएमसी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
4: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है।
6: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
4: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
6: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
4: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
6: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
4: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आए हो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है अब आपके अपने कार्यक्रम क्लिनिक ज्ञानसली का, आपका सेहत वाला कार्यक्रम जिसको हम लेकर आते हैं हर संडे यानी हर इतवार, जिसमें बात करते हैं आपके सेहत की, सेहत सही लाइफ के बैनर के तले स्मार्ट एनजी और रेडियो ज्ञानसली के खूबसूरत पहल। और मैं हूं आपकी अपनी आरजे उन्नति। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट और आपके हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी, जो हर इतवार यानी कि हर संडे जुड़ते हैं हमसे बात करने के लिए सेहत की और आपकी क्यूरियोसिटी, आपके सवाल और आपकी प्रॉब्लम्स का देते हैं जवाब।
1: जी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स का जवाब देने के लिए और वो क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए हम हर बार की तरह फिर मौजूद हैं। अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, हमें कॉल भी कर सकते हैं या चैट बॉक्स में हमें मैसेज करके आप अपने सवालों से जुड़े हुए समाधान पूछ सकते हैं।
0: जी, हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। आई रिपीट, 6393316429। इस पर डायरेक्ट आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM के नाम से एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद मिलती है। तो सर, कैसे हैं आप?
1: जी, हम बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आशा करते हैं कि आप भी अच्छी होंगी।
0: जी हाँ, मैं भी अच्छी हूँ और बारिश हो रहा है और इसलिए थोड़ा सा परेशान भी हैं।
1: वैसे तो बारिश में परेशान नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी चलिए जानते हैं कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, बारिश का होना या फिर कुछ और?
0: एक्चुअली दोनों।
1: अच्छा, दोनों मतलब?
0: बारिश होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बारिश के बाद जो पानी भर जाता है और उससे जो शुरू होती है बीमारियाँ, वो ख़राब चीज़ है।
1: मतलब आपकी समस्या की जड़ बारिश नहीं है, जो हमारा सीवेज सिस्टम है, हमारी नगर पालिका है, वो आपका जो समस्या की जड़ है।
0: अब ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से मैं गुजर कर आती हूँ, बारिश होने पर पानी भर जाता है और वो पानी महीनों तक रहता है। और एक भरा हुआ पानी, जहाँ पर पानी इकट्ठा है और एक अच्छा खासा वातावरण मिल रहा है मच्छरों को, तो क्यों ना मच्छर पनपेंगे।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं बारिश आती है अपने साथ कुछ मतलब अच्छी चीज़ें भी लाती है और कुछ कमियों के वजह से कुछ बुरी चीज़ें भी लाती है। बारिश के समय में पानी भरता है, जल का जमाव होता है, उसमें तरह तरह के मच्छर पनपते हैं और भी दूसरे ऐसे बीमारियां फैलाने वाले भी उसमें जीव जंतु पनपते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे समस्याएँ होती हैं। बिल्कुल होती हैं, और मुझे लगता है कि उनके निदान पर भी कोई ना कोई चर्चा ज़रूर करनी चाहिए हमें कभी।
0: जी हाँ, पर पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बारिश के मौसम में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं?
1: अब देखिए, बारिश के मौसम में जो यूजुअली हमको देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, वो कफ, कोल्ड, फ्लू, इन सारी सिम्टम्स के साथ आती हैं। इसके अलावा जो मच्छरों के द्वारा मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ेज़ हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, और ये सारी चीज़ें भी मतलब बढ़ जाती हैं आम दिनों की अपेक्षा ऐसे सीज़न में। इसके अलावा स्किन से संबंधित भी बीमारियां तमाम तरह को देखने को मिलती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया या और भी दूसरे तरह की स्किन रैशेज वगैरह, ये आपको कॉमनली बारिश के मौसम में दूसरे सीज़न के अपेक्षाकृत ज़्यादा आती हैं केसेस।
0: तो भैया, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जो आपका मॉनसून का सीज़न है, जिसको आप एंजॉय करते हैं और स्पेशली बॉलीवुड में दिखाते हैं कि बारिश होते ही हीरोइनें बाहर आ जाती हैं, डांस करने लग जाती हैं, ऊपर से डायलॉग भी मारती हैं बादलों को कि भैया यहाँ क्यों गरज रहे हो, वहाँ जाके गरज, उसको पता चले हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं।
1: जी,
0: इस मौसम में मुझे लगता है इंतज़ार जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो बीमारियाँ करती हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान करते हैं।
1: बिल्कुल, उन्हें भी इस मौसम का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहता है और इस मौसम को पा करके वो भी अपना प्रकोप जो है वो फैलाते ही हैं।
0: अच्छा, मैंने कई लोगों से सुना है, जो लोग कहते हैं, कल ही मेरी बात हो रही थी और मैंने बस सवाल किया था कि आप दही नहीं खाते हो क्या, एंड ही वाज लाइक, नहीं यार, दही कौन खाता है, मॉनसून में तो बिल्कुल भी दही नहीं खाना चाहिए, और हमें ऐसा किसी ने बताया था। और मेरा जवाब था कि भैया, आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, अगर वो डाइजेस्ट कर रहा है तो आप खाओ, नहीं कर रहा है तो मत खाओ। लेकिन ये एक मिथ है या ये फैक्ट है कि बारिश के वक्त में दही नहीं ही खाना चाहिए?
1: देखिए, बारिश के समय पे दही ना खाने का जो मतलब कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए कि इसका क्या है, तो वैसे भी जो दही वगैरह जैसी चीज़ें हैं, ये ठंडे मौसम में, ठंडे वातावरण में यूजुअली अवॉइड करने को बोला जाता है, क्योंकि ऐसे मौसम में कंजेशन और ऐसी जो समस्याएं होती हैं रेस्पिरेटरी की, ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ जाती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको ऑलरेडी मतलब जो एसिनोफिलिया है, थोड़ा भी बारिश वगैरह में सर्दी ज़ुकाम तुरंत हो जाता है, या जो दूसरे अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ये एडवाइजरी हो सकती है कि बारिश के मौसम में, मानसून के सीज़न में दही अवॉइड करें। बट एक जो हेल्दी इंडिजीनस है उसके लिए तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है और वो उन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं,
0: है ना। और मुझे भी यही लगता है कि अगर आप किताबों से ज़्यादा अपने शरीर की सुनना शुरू करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, किताबों में किसी एक किताब में सारा डेटा, सारी जानकारी को डाल देना ये पॉसिबल नहीं होता है, तो या फिर आप उनके किसी उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट से राय लें ताकि वो आपको इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो भी समझाने में कुछ हेल्प कर सके।
0: और यही बहस करते करते हमने भी यही कहा था उनसे कि देखिए, हर एक डिपार्टमेंट का इंसान, हर एक डिपार्टमेंट का डॉक्टर आपसे अलग तरीके से ही बात करेगा।
1: जी,
0: जहाँ एक डाइजेशन का एक्सपर्ट आपसे कहेगा कि थोड़ा सा घी लेने से आपका डाइजेशन स्मूथ होता है, वहीं एक हार्ट अटैक के एक्सपर्ट यही कहेंगे कि आप मत लो, अदरवाइज आपका हार्ट अटैक चांसेस और बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, और जैसे देखने वाली बात ये होती है कि जैसे हार्ट का डॉक्टर अगर ये एडवाइस कर रहा है तो अभी क्या है कि उतना सा घी उसके डाइजेशन को 100% एकदम फिट तो नहीं कर सकता, थोड़ा सा स्मूथ हो सकता है, थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे लेना स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हाई करना और ऐसी समस्याएं आगे चल के जनरेट करना, ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: बिल्कुल, एक लिमिट में लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिमिट से बाहर दवा भी जहर का।
1: बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंडीशन पर डिपेंड करती हैं और उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एडवाइस जो है, स्पेशलाइज्ड एडवाइस दी जाती है।
0: अच्छा सर, क्योंकि आज हम मॉनसून की स्पेशल चीज़ें लेकर आए हैं, सिर्फ मॉनसून में होने वाली बीमारियाँ, कुछ मॉनसून मिथ्स को कवर करेंगे, तो उसमें मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि बारिश हो रही है और बाहर मैं जब आ रही थी झला पड़ रहा था, मतलब वो छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी, उस दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी बारिश आती है लोग सीधे अपने सर को कवर कर लेते हैं कि हेड को कवर कर लो, बाकी चीज़ों से तो कोई मतलब है नहीं, बाकी भीग जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर कवर कर लेंगे तो जुखाम रुक जाएगा। बट मुझे लगता है जो जुखाम है वो कहीं ना कहीं आपकी नाक और आपके हाथों की वजह से ज्यादा हो रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आप बताएंगे कि सर को कवर करने का ये जो ट्रेंड है ये बॉलीवुड से आया था या ये सच में कोई फैक्ट है?
1: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बॉलीवुड से जोड़ के जरूर देखती हैं चीजों को, काफी अच्छा लगता है ये। देखिए, सर को कवर करना एक ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
0: जी,
1: ह्यूमन साइकोलॉजी इन द सेंस, आप देखेंगे कि कभी भी कोई सामने आती हुई चीज़ है तो इससे इंसान अपना फेस कवर करता है, अपने फेस के आगे, चेहरे के आगे हाथ लगाता है, कहीं भी स्लिप कर रहा है तो अपने हेड को बचाने की कोशिश करता है, सर को बचाने की कोशिश करता है। और इसके पीछे का जो बायोलॉजिकल रीज़न है वो ये है कि हमारे हेड के अंदर जो हमारा ब्रेन होता है और जो दूसरे ऑर्गन्स जैसे आँख हो गया, नाक हो गई, साइनस हो गई, ये सारी चीज़ें, ये काफ़ी नाजुक होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं, और इन पर एक छोटी चोट भी, एक छोटा इम्पैक्ट भी काफ़ी गहरा प्रभाव डाल सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पैर है, आपके थाइज हैं, जांघें हैं, इनमें अगर एक कील 2-3 इंच की गहराई तक घुस जाए तो उससे तत्काल इंसान की मृत्यु नहीं होती है, बट अगर हेड के आसपास में 2-3 इंच की कीली अगर घुस जाए, इतनी गहरी कोई इंजरी हो जाए, तो मौत के चांसेस जो हैं वो लगभग 80-90% तक बढ़ जाते हैं।
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सर को बचाना चाहिए। और इसके पीछे एक दूसरा तर्क ये है कि जैसे जब बारिश होती है तो सर पे जो पानी गिरता है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है हमको, जैसे जो लोग एलर्जिक हैं, जिनको छींक, सर्दी जुखाम जल्दी आता है, उनका यदि सर भीग जाए तो उनको इंस्टेंटली सर्दी जुखाम हो जाता है, छींक वगैरह आने लग जाती है। इसके अलावा पानी ज़्यादा देर तक स्टे करता है बालों में, और चूंकि वहाँ पर टिश्यूज़ ना होने के कारण, जो सेल्स हैं, कोशिकाएं बाहरी परत पे ना होने के कारण, मसल्स ना होने के कारण, वहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हो पाता है। जैसे आपके बॉडी पे अगर पानी गिरता है तो फिर आपकी बॉडी वो टेम्परेचर, थोड़ी देर में बॉडी ठंडी हो जाएगी, फिर बॉडी वो टेम्परेचर वापस से हासिल कर लेगी जो हमारा बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए।
0: जी।
1: इसके साथ ही साथ अगर वहाँ पे उसके बाद भी बॉडी को ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है तो बॉडी में कंपन पैदा होता है, शरीर कांपना स्टार्ट करता है, शिवरिंग जिसे कहते हैं, और उससे जो मसल्स होती हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो गर्मी पैदा करती है। मतलब जो हमारा शरीर कांपता है ये किसी चीज़ का लक्षण नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है इसको कंपन करके और बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव करने का कोशिश करता है हमारा शरीर। तो वहाँ पे मसल्स होने की वजह से, टिश्यूज़ होने की वजह से, सेल्स होने की वजह से टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बट ब्रेन और हेड का टेम्परेचर मेंटेन करने का एक ही मात्र उपाय है और वो है जो ब्लड के थ्रू वहाँ पे हमारी गर्मी पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजी है कि सर नाजुक होता है, इसको ठंडे गर्म से भी प्रभाव पड़ता है, और जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब हार्ट के पेशेंट हैं या मतलब जिनके नसों में ब्लॉकेज वगैरह का है, उनको नहाते वक्त भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्ट सर पर पानी डालने से उनको नुकसान हो सकता है। तो ये जो हमारा सर होता है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी सेंसिटिव होता है, इंजरी के अकॉर्डिंग भी सेंसिटिव होता है, किसी तरह का इम्पैक्ट लगने से भी काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि पहले इंसान सर बचाने का कोशिश करता है।
0: ओके, तो इतनी ज़्यादा डीप बातें हैं और मुझे लगता रहा कि लोग बॉलीवुड को देख देख के अपना सर बचा रहे हैं।
1: जी नहीं, ये एक मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये इसको करने के लिए इंसान को कहीं से सीखना नहीं पड़ता।
0: हाँ, सबसे पहले अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी तुम्हारा हाथ तुरंत पहुंच जाएगा, बाकी कुछ पहुंचे या ना पहुंचे। मतलब लोग अपने बैग को भी सर पे रख लेते हैं, किताबें भीगती हैं, भीगने दो।
1: हाँ, अब उनको अपना सर और अपनी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है बैग और किताबों से।
0: जी हाँ, वैसे मॉनसून के टाइम पर यानी कि बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं और इस चीज़ से हर कोई परेशान है, स्पेशली जो घर का टाल होता है जिसको हम तौलिया कहते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है।
1: जी।
0: आप मुझे बता सकते हैं कि मॉनसून के टाइम पर जो हमारी टावल होती है यानी मैं तौलिया होती है, ये हमारी बीमारियों को कैसे प्रमोट कर रही है?
1: एक बार आपका जब प्रश्न आपने शुरू किया तो मुझको ऐसा लगा कि कहीं आप मुझसे ये तो नहीं पूछने वाली हैं कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते, इसका कोई उपाय बताइए, तो मैं इसका क्या ही उपाय बताऊंगा आपको।
0: नहीं, इसका मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा शो हेल्थ का है और मुझे लगता है गीले कपड़े या फिर जो तौलिया हम इस्तेमाल करते हैं ये गीली रहती हैं और कहीं भी रहती हैं और हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं बिना वॉश किए, ठीक से धूप नहीं निकल रही, सूख नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी बीमारी को प्रमोट कर रही होंगी।
1: बिल्कुल, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं जो हमारी टॉवल होती है जिसको तरह तरह के रूप से प्रोनंसिएट करते हैं लोग, तो जो तौलिया होती है इसको साधारण दिनों में भी इस्तेमाल करने के बाद धूप ज़रूर दिखानी चाहिए।
0: जी,
1: क्योंकि टॉवल जो है ये हम यूज़ करते हैं, इसमें पानी लगी रहती है, इसमें नमी मॉइस्चर रहता है जो कि मॉनसून के सीजन्स में, बारिश के सीज़न में और बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो महीनों में, गर्मी के महीनों में अगर आप कोई कपड़ा घर के अंदर भी डाल देते हैं तो वो मतलब टेम्परेचर से, गर्मी से वो सूख जाता है, बट

0: के अलावा जो फंगल स्पोर्स होते हैं, मतलब फफूंद की जो जड़ें होती हैं, वो भी उसमें काफ़ी हद तक, मतलब बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती हैं, वहाँ पे स्टे कर सकती हैं और आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो ज़रूर जो हमारा टॉवेल वगैरह है, इसकी हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखा करें। इसको किसी डिसइन्फेक्टेंट लिक्विड जैसे डेटॉल, सेवलॉन एट्सेट्रा वगैरह से भी एटलीस्ट हफ्ते में एक आध बार ज़रूर धो लिया करें, और धूप ज़रूर दिखाया करें रेगुलर बेसिस पे।
1: जी, चलिए अब बात कर लेते हैं, मानसून में एक बीमारी है जिसको लोग टाइफाइड कहते हैं,
0: जी
1: बढ़ जाती है
0: जी
1: और कहीं ना कहीं ये बढ़ती है पानी की वजह से।
0: जी
1: मानसून में टाइफाइड इतना क्यों बढ़ता है और अगर इसको रोकना है या इससे बचना है तो कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए?
0: देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि मानसून के समय में टाइफॉइड के भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब चूंकि ये एक वाटर बॉर्न डिसीज़ है, पानी से जन्मी बीमारी है, पानी से स्प्रेड होती है, तो क्या होता है, बहुत से जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है कि आज भी भारत में, मतलब मुझे लगता है जो 10-20% या 30% लोग जो है वो मिनरल वाटर या फिल्टर्ड वाटर ये सारी चीज़ों को पीते हैं। बाकी के जगहों पे मैंने देखा है कि वो वाटर सप्लाई द्वारा आए हुए पानी पर, या फिर जो ग्राउंड लेवल वाटर है, ज़मीन का पानी है,
1: नल
0: उस
1: से
0: पे,
1: निकालते
0: नल
1: हैं।
0: से निकला हुआ पानी है, उस पे डिपेंडेबल है। तो वो कहीं ना कहीं जब बारिश का मौसम होता है, पानी का बहाव होता है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पानी, जो जमा हुआ पानी है वो पहुंचता है, जैसे तालाबों में पानी भर के ऊपर हो जाता है, फिर वो पानी बह करके दूसरी जगहों पे जाता है, ये कहीं ना कहीं उस बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी के स्प्रेड को बढ़ा देता है, इन सभी के आवागमन को बढ़ा देता है, और वो कहीं ना कहीं फिर नुकसान करता है, लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और फ्रीक्वेंट टाइफाइड के केसेस भी देखने को मिलते हैं।
1: ओके, तो पानी का इस्तेमाल इस वक्त कैसे करना चाहिए? उबाल के पीना है, आरओ का पीना है, और आरओ को कितने टाइम के बाद चेक करवाना चाहिए, उसकी सर्विस ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी सर्विस करवानी चाहिए? क्योंकि आरओ लोग लगवा तो लेते हैं, फिर 6-6 1-1 साल जब तक वो बिल्कुल ही बंद नहीं हो जाता,
0: जी
1: उसकी सर्विसिंग नहीं करवाई जाती है।
0: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो साधारणतः आरओ यूज़ किए जाते हैं घरों में, यूजुअली जो कॉमन सभी के घरों में देखने को मिलते हैं, उसमें जो एक सेपरेट कैंडल लगी रहती है, उस कैंडल को तो हर 2-3 महीने पर चेंज कर देना चाहिए। अगर उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो ठीक है, वरना वो खुद भी अगर आप ट्राई करेंगे तो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है और आप यूट्यूब से देख करके वो सीख सकते हैं। तो वो कैंडल तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करनी चाहिए, क्योंकि वो जो मैक्सिमम टीडीएस होता है उसको वहीं पर वो होल्ड ऑन कर देता है। और मैक्सिमम टीडीएस होल्ड ऑन मतलब, इसको मैं सरल भाषा में यदि बताऊं, तो पानी के अंदर घुली हुई जो अशुद्धियां रहती हैं, जो दूसरे भारी मिनरल्स रहते हैं, उनको, उनका लगभग 60-70% हिस्सा तो वहीं पर वो रोक लेता है वो फिल्टर।
1: जी
0: अब इसको अगर समझने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको उदाहरण दूं, तो कभी भी आपने जब फिल्टर को साफ होते देखा होगा, तो जब वो उस कैंडल को खोलते हैं, मतलब इतना बड़ा सा गोल वाइट कलर का रहता है, जिसको खोलने पर एक गोल कलर की जाली लगी रहती है उसके अंदर, वो जब वो साफ करते हैं, उसके जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, तब आप देखिए उसमें से बहुत एकदम मटमैला कलर का पानी, और काफ़ी देर तक वो निकलता रहता है,
1: जी
0: कॉन्टिन्यूस वो पानी निकलता ही रहता है, वो पानी डालते रहते हैं और निकलता रहता है। तो वो सारा मटमैला पानी जो होता है, वो आपके घर में आने वाले पानी के अंदर घुली हुई अशुद्धियाँ हैं, जिसको आप टीडीएस कंट्रोल बोलते हैं, कि हमारे फिल्टर में टीडीएस कंट्रोल इतना होना चाहिए, 300 के ऊपर नहीं हो और 50 के नीचे नहीं हो, 30 के नीचे नहीं हो, ऐसा लोग जो बताते हैं। तो इसको तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक कर लेना चाहिए, प्लस आपका जो आरओ है उसको हर 6 महीने पे एक बार आपको दिखाना ज़रूर चाहिए उसके एक्सपर्ट्स को, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि कुछ आरओ में मतलब मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन होती है, जैसे ऑस्मोसिस होता है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है, इसके अलावा उसमें यूवी लाइट ट्रीटमेंट भी होता है। यूवी लाइट ट्रीटमेंट से जो पानी के अंदर की कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस जो उसमें रिमेन रह जाते हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट से उन बैक्टीरिया वायरसेस को मार दिया जाता है। तो ये सभी फंक्शन आपके ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता है कि आप उसको हर 6 महीने पे एक बार उसके एक्सपर्ट को ज़रूर दिखा लें।
1: ओके तो ये पॉइंट है यहाँ पर मेन, यानी कि आपका आरओ 6 महीने में ज़रूर चेंज करवाएं, उसका टेस्ट भी बदल जाता है आई थिंक एक वक्त के बाद।
0: जी बिल्कुल, कुछ समय तक काम करने के बाद जब उसके मेम्ब्रेन्स और फिल्टर्स धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं तो वो पानी को उतनी अच्छी तरीके से नहीं छान पाता है, उसकी परमिएबिलिटी कम हो जाती है।

0: आती है, और इसके वजह से पानी का टेस्ट में भी थोड़ा डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उस चीज़ की जो आई थिंक जिसके घर में है वो परेशान होगा।
0: जी
1: फंगल इन्फेक्शन यानी कि हैं हम अपने स्किन पे होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं फैलते हैं,
0: जी
1: ये आपने भी नोटिस किया होगा।
0: जी
1: लिसनर से बोल रही थी मैं।
0: अच्छा, मुझे लगा कि आप मुझसे कह रहे हैं।
1: नहीं, आपका तो ऐसा है कि आप उसी फील्ड से हैं तो आपको ये तो पता है कि वो स्प्रेड होते हैं।
0: जी
1: अब मैं अपने लिसनर से सवाल करती हूँ कि भैया आपने भी नोटिस किया ही है कहीं ना कहीं कि जो फंगल इन्फेक्शन है, जो स्किन इन्फेक्शन है जिसके हम आम भाषा में दाद कहते हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से फैल रहे हैं। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि अगर घर में किसी को ये इन्फेक्शन हो चुका है मॉनसून के सीज़न में तो उसके बचाव कैसे करें ताकि बाकी लोगों तक ये ना स्प्रेड हो।
0: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जिस भी इंसान को ये इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन है, ये हो रखा है, उसको ये चाहिए कि वो अपनी कुछ पर्सनल हाइजीन की चीज़ें सेपरेट रखे और सबसे अलग रखे, जैसे कि तौलिया हो गया और भी दूसरे कुछ जो पर्सनल कपड़े होते हैं, जो इनर गारमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें दूसरे कपड़ों से अलग रखें, और उनकी जब सफाई भी हो तो वो दूसरे कपड़ों से अलग हो। इसके अलावा उन्हें इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, जिस ट्रीटमेंट के चलते उनका फंगल इन्फेक्शन कम हो सके। कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड पाउडर्स एंटीफंगल्स होते हैं, उनका छिड़काव भी करते रहना चाहिए आपको अपने फंगल वाले एरिया पे भी, जो आप ऐसे आपके पर्सनल इनर वेयर्स, अंडर गारमेंट्स हैं, उन पर भी आपको इसका छिड़काव करना चाहिए ताकि इससे दूसरे को ना स्प्रेड हो। और बाकी मतलब कांटेक्ट से बचना चाहिए, साबुन वगैरह हो गया, और भी जो भी पर्सनल यूज़ की चीज़ें होती हों घर में, उनको आप अपना सेपरेट करें और बाकी लोग उससे थोड़ा बच के रहें, बस यही बचाव हो सकता है।
1: मतलब उनके पर्सनल कपड़े नहीं लेने हैं, इवन साबुन भी इस्तेमाल नहीं करना जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, साबुन वो इस्तेमाल नहीं करना है जो वो इस्तेमाल करते हैं।
1: अच्छा सर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो मॉनसून के सीज़न में वो वापस भी आ जाता है,
0: जी
1: ऐसा क्यों होता है?
0: देखिए, जो मॉनसून का सीज़न होता है उसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी नॉर्मल सीज़न से बढ़ जाती है। जो फंगल ग्रोथ का मतलब जो ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर होता है वो यही होता है, क्योंकि आप देखिए बारिश के बाद ही जो ज़मीन पे उगने वाले जो फंगस हैं, जैसे जिनको वो मशरूम और भी दो मशरूम के टाइप के दूसरे होते
1: जो
0: हैं,
1: मशरूम की तरह दिखते हैं और कहीं भी मतलब स्पेशली लकड़ियों के आसपास निकल आते हैं, राइट?
0: जी जी बिल्कुल, तो वो आपने देखा होगा कि वो बारिश के मौसम में, और बारिश एक दो बार तीन बार बारिश हो जाने के बाद, जब मतलब वो थोड़ा पानी का भराव और ह्यूमिडिटी ऐसा माहौल रहता है, उसमें ये मतलब इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और वही फेनोमेना हमारे बॉडी पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे बॉडी पे आउटर स्किन पे नमी ज़्यादा रहती है, नमी के वजह से वो ग्रोथ तेज़ करते हैं, नमी होने के वजह से जो हमारी स्किन है वो थोड़ी फूल जाती है, मतलब और एक इजी एटमॉस्फेयर बना देती है उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये सारे कारण हैं कि बारिश के मौसम में फंगल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं पुराने भी उभर आते हैं।
1: तो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने की जो मेडिसिन है वो कितने दिनों की होती है?
0: देखिए, जो एंटी फंगल थेरेपी होती है ये डिपेंड करती है कंडीशन पे और कुछ स्पेसिफिक प्रकार की बीमारियों पे। अब जैसे जो टाइनिया कॉर्पोरिस और टाइनिया क्यूरिस, ये सारे डिफरेंट तरह के फंगल इन्फेक्शंस के नेम हैं, और यूजुअली आप ये मान के चलिए कि एक बेसिक 1 हफ्ते से 14 दिनों से लेकर के और 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक के भी कोर्सेज होते हैं, जो कि अलग अलग कंडीशन में या डिफरेंट कंडीशन में वैरी करते हैं।
1: तो भैया ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। आई रहे थे एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, लेकिन उस ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो लवली सिंह जी हैं वो कुछ सवाल कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके सर की रूसी ख़त्म नहीं हो रही है, इसका कुछ उपाय बता दीजिए।
0: जी ज़रूर बताएंगे लवली सिंह जी को। बहुत बार बहुत से पेशेंट्स को एडवाइस किया है कि अगर लगातार रूसी बनी रहती है, वो रूसी नहीं ख़त्म हो रही है, तो इसके लिए आपको एंटी फंगल सोप का इस्तेमाल करना चाहिए हफ्ते में 2 से 3 बार। फिलहाल अगर आप लंबे समय से इससे परेशान हैं तो हफ्ते में 3 बार जो एंटीफंगल शैम्पू होता है उसका आप यूज़ करें। अगर शैम्पू को जानना चाहते हैं आप, तो मार्केट में ओवर द काउंटर ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ले सकते हैं, जैसे कि कीटो स्टार और कीटो फ्लाई करके ऐसे शैम्पू आते हैं, उनको आप ले करके हफ्ते में दो बार लगाना स्टार्ट करें। बालों में अपने अकॉर्डिंग जो कोई आपके बालों को सूट करता हो, एक अच्छा ऑयल चूज़ करके वो ऑयल भी आपको लगाना चाहिए।
1: अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी
0: जी,
1: क्या किसी डेफिशिएंसी की वजह से भी बालों में रूसी हो सकती है?
0: बिल्कुल हो सकती है, ऐसे बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं, जैसे आयरन की कमी के वजह से हमारे बॉडी में और भी सेलेनियम, कॉपर, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं इनका भी अपना रोल होता है, और इनकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, मतलब हमारे स्किन पे रैशेज आना, स्किन ड्राई होना, और ये समस्याएं होती हैं जो कि कॉमनली सभी जानते हैं। और ये डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे बालों के जो स्कैल्प होते हैं, स्कैल्प भी उजड़ने लगते हैं, वो ड्राई होने लगते हैं, और वो जो रूसी होती है वो अल्टीमेटली हमारे स्कैल्प की डेड स्किन ही तो होती है
1: जी।
0: तो बिल्कुल ऐसी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से, स्पेशली कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी से ये बालों में रूसी हो सकती है।
1: मतलब अगर जिसे डैंड्रफ है वो फंगल इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, अगर फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो कोशिश करें कि आप अपनी डेफिशिएंसी पर ध्यान दें, देखें आप क्या चीज़ें खा रहे हो, क्या चीज़ें नहीं खा रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और कई बार क्या होता है कि चूंकि जो बालों का झड़ना होता है ये प्रोसेस कहीं ना कहीं जुड़ा होता है हमारी माइक्रोवेसल से, जो हमारे स्कैल्प की और ये जो सर का तालू होता है इस तक ब्लड की सप्लाई पहुंचाने वाली जो बारीक नसें होती हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं, उनमें फ्लो कम होने लगता है, और उसकी वजह से वहाँ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और फिर वो हेयर फॉल का कारण बनती हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होता है कि वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके वजह से वहाँ की स्किन हाइड्रेट नहीं रह रही है, वहाँ की स्किन में प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है, और फिर वो जो है उसमें स्कैल्पिंग हो रही है, मतलब वो लेयर उसकी धीरे धीरे वो लूज़ करता रहता है टाइमली, तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है।
1: ऑल राइट, तो भैया लेते हैं ब्रेक, एक प्यारा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, उसके बाद बात करते हैं मॉनसून से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे जाननी है और आपको बतानी भी है, तो बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं क्लिनिक ज्ञान असली, अपनी आशुति और मेरे को होस्ट यानी कि आपकी हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी के साथ।
2: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में, और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा, पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
3: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
2: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
3: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
2: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
3: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
2: जी,
3: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
2: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
3: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
2: जी
3: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
2: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
3: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है।
2: जी,
3: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
2: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
3: आकांक्षा जी, यह बहुत गंभीर खतरा है।
2: जी,
3: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं।
2: जी,
3: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है, जो सबसे बड़ा नुकसान है।
2: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा, वो एक सड़न का रूप ले लेता है। उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे, तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
3: जी जरूर।
2: जी, अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
3: आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया।
2: जी,
3: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं। आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं।
2: जी,
3: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।
2: जी,
3: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता।
2: जी,
3: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
2: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
3: आकांक्षा जी, उनकी भूमिका सबसे अहम है।
2: जी,
3: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं।
2: जी,
3: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
2: मैम, अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
3: देखिए खानसा जी,
2: जी,
3: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा,
2: जी,
3: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं।
2: जी,
3: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम, एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है। इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
3: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका।
2: जी,
3: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
2: बिल्कुल,
3: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
2: बिल्कुल,
3: याद रखिए, बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
2: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
3: जी आकांक्षा जी।
2: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
3: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
2: जी,
3: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
3: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
2: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
3: देखिए आकांक्षा जी,
2: जी
3: मेरा संदेश बहुत साफ है।
2: जी,
3: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
2: जी,
3: और सबसे जरूरी इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
3: जी धन्यवाद मैम।
2: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
4: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि
1: हाँ जी। तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो क्लिनिक ज्ञानस्थली में, और हम तो ऑफ एयर में जाकर भी बीमारियों पर ही चर्चा करते हैं।
0: बिल्कुल, ये जो एक घंटे का माहौल होता है 4 से लेकर के 5 बजे तक का, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मतलब एक सीरियस टाइप का, जिसमें तमाम बीमारियों पे बातें हो रही हैं, तमाम रिसर्चेस के बारे में बातें हो रही हैं। और ये एक घंटे का जो माहौल होता है आपके इस फेवरेट वाले शो और इस चैनल का, जो कि आपके बीच हम लेकर के आते हैं, तो ये माहौल एक घंटे का बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है।
1: जी हाँ, तो फिलहाल हमने जो पीछे बात की उसमें भी आपकी सेहत की ही बात चल रही थी, और हमने एक बात और जानी है कि भैया बीच बीच में दवा कभी नहीं रोकनी चाहिए, नहीं तो आपकी दवा फिर काम नहीं करती है।
0: बिल्कुल, अगर स्पेशली आप मतलब किसी गंभीर बीमारी जैसे बीपी या शुगर जैसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, और शुगर की बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो आपकी दवाइयां बीच में स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप उनको बीच में स्किप कर देते हैं तो प्रॉबेबली ये हो सकता है कि नेक्स्ट जब दोबारा हम वो दवाइयाँ आपको स्टार्ट करें तो वो दवाइयाँ आप पर रेजिस्टेंट हो चुकी हों।
1: चलिए दवाइयों की नौबत हम नहीं लेकर आएंगे, और मुझे लगता है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है तो आप ना बीमार पड़ते हैं, फिर चाहे मानसून आ जाए, चाहे सर्दी आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, बिल्कुल मेरी तरह फिट रहते हैं ऑल द टाइम।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये चूंकि है ही एक प्रतिरक्षा तंत्र, जो डिफेंस वाला सिस्टम है, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, तो बिल्कुल ये आपकी रक्षा करता है। और मुझे लगता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको कुछ ठोस प्रयास भी करने चाहिए।
1: बिल्कुल, और वही प्रयास मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मॉनसून के सीजन में वो 3 स्टेप क्या ले जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके।
0: जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो ये करनी है कि आपको अपना खान पान बदलना है। खान पान बदलने का मतलब ये हुआ कि जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, साइट्रस फ्रूट्स आते हैं, विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स आते हैं, संतरा और मौसमी, ऐसे जो भी दूसरे फल होते हैं, इन फलों का सेवन करना चाहिए। इनके साथ ही साथ हरी सब्जियां और मतलब प्रोटीन की भरपूर मात्रा आपके बॉडी को डिलीवर होनी चाहिए। तो ज़रूरी है कि आप हरी सब्जियां, सूखे फल और जो मीठे फल होते हैं, इनका भी आप भरपूर सेवन करें।
1: अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन और इन सब चीज़ों के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है कि चलो प्रोटीन के बारे में लोगों ने अवेयरनेस फैलाई है
0: जी,
1: बट अवेयरनेस को ज़्यादा ही हो चुकी है, और अब लोग प्रोटीन की बात करते हैं कि आप 100 ग्राम लीजिए, 144 ग्राम लीजिए, और इस तरह की वो टारगेट्स कंप्लीट करने में लग जाते हैं
0: जी।
1: और जहां तक मुझे लगता है, जहां मैंने स्टडीज़ की हैं, कि हमारे बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है पर किलोग्राम, यानी कि आपका वेट कितना है और आपका प्रोटीन इनटेक कितना है, ये डिपेंड करता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से प्रोटीन लीजिए, मसल्स बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप 100 या फिर 110 जो भी आपके ग्राम में लेना है वो लीजिए, बट एक हेल्दी इंसान को जिसको सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखना है, खुद को स्ट्रांग रखना है, अपना काम करते रहना है, एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, उसे अपने बॉडी में एक्चुअल जितना वेट है उतना ही प्रोटीन चाहिए। आप इस फैक्ट को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे ताकि हमारे लिसनर्स कहीं कंफ्यूज ना हो कि हम 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कैसे करेंगे।
0: सबसे पहले तो मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ, और हमारे जो जेंजीज हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनको एक बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप जो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो भी आप लोगों का कैलकुलेशन है, प्लीज़ इसको हेल्दी इंडिविजुअल्स पे ही अप्लाई करा करिए, जो पेशेंट्स हैं उन पे प्लीज़ अप्लाई मत किया करिए
1: जी,
0: क्योंकि आपका जो प्रोटीन इंटेक है ये आपके बॉडी वेट पे, आपकी एज पे, आपके मोटिव पे, आपके बीएमआर पे, आपके और भी मतलब ऐसे कई फैक्टर्स हैं, आपके लीवर और किडनी की कंडीशन पे, आपके बॉडी में अवेलेबल फीटो प्रोटीन के उस पे, आपकी बॉडी कितना डाइजेस्ट कर पा रही है। जैसे अभी कुछ केसेस होते हैं जिसमें फीटो प्रोटीन वगैरह बढ़ जाते हैं और रीढ़ के हड्डी में लोअर बैक पेन मतलब कमर वगैरह में दर्द रहता है, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको बोलता है कि प्रोटीन कम लेना है। तो ये जो आपका जो भी कैलकुलेशन है 50 ग्राम 100 ग्राम या 144 जितना भी है, ये आप लोग प्लीज़ हेल्दी इंडिविजुअल्स और यंगस्टर्स के लिए ही अप्लाई किया करें। पेशेंट्स के लिए ये पैरामीटर्स कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। पेशेंट्स के लिए पर जो पर किलोग्राम रिक्वायर्ड डोज है वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट्स के साथ डिफरेंट तरह की फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशंस जुड़ी होती हैं, उसके शरीर में तमाम तरह की डिफर्मिटीज़ होती हैं या किसी अंग का काम कम करना होता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ये सारे पैमाने बदल जाते हैं। तो ये उन पर तो बिल्कुल आप अप्लाई ना किया करें
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का। तो हमारे साथ जाने से पहले आपको बता दें कि अनोखी शर्मा हमारे साथ जुड़ी थी, जो लिख रही हैं गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू। आप सबको आज का शो पसंद आया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, और सही जानकारी आपको मिली है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आपका अपना शो क्लिनिक ज्ञानस्थली। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन। रखिए अपना ख्याल, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमार

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ए दुलारी, ए दुलारी, ही ना काओ? अरे आओ तो बताई तुमका, आज बहुत खुश लागे तू काओ हवा है?
4: अरे ऐसा
3: आज लोटन चाचा हार वार तो नहीं बनवाई देगी? हाँ?
4: लोटन चाचा हार पहने यार।
3: अरे ये तो बड़ा नीक बात है,
4: हम बताए रहा है,
3: ये बड़ा नीक बात है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ,
4: एक ठो जंजीरिया रहा है।
3: हाँ?
4: मोटे कुन की महतारी की वाह निकाल के हमका नहीं दिन।
3: हाँ?
4: अपना पहन लेन। और सुनो,
3: हाँ?
4: बड़ा चोर आए हैं गाँव में अपने,
3: अब
4: वह तो बतावे के लिए कहे ना, हम लोग पहने रहे थे ना ये।
3: हाँ,
4: जेवर एवर जंजीर वंजीर,
3: देखो कनवा में भलावा पहरे हैं, कबो कबो झुमकवा पहन ले थे।
4: तो वह कहे ना वे चोरवा बहुत आई गए, छिनाए ले जाते, छिनैती कर ली थे।
3: हाँ, हाँ,
4: तब सुन लियो, तब वही का कहा जाते कैमरा,
3: कई हाँ कैमरा होते
4: फोटुकुआ। हाँ, कौनो मेहरारू की चैन लेके भागा चोरवा।
3: अरे मुरी मोरी, तब
4: अब गौवा वाले हमका बड़ा मने समझे थे ना, बड़वार हुई हम लोग।
3: हाँ, हाँ।
4: तो हमरे घरे आई गए।
3: अच्छा,
4: हाँ,
3: फिर का
4: वही बैठे रहे।
3: हाँ, चनवा तो, पहन कर,
4: चनवा पहन के और बटनिया खोल के ऐसे। हाँ। सीना मताने बैठे रहे।
3: हाँ, हाँ, चैन तो, पहरे हैं।
4: तब पुलिस वाला आवा डांटे से निका।
3: हाँ,
4: तो कहे इसकी काहे हो ये जंजीरिया दिखावे के लिए यहाँ बैठे हो?
3: हाँ? हाँ, और का?
4: हाँ? हाँ? अब बैठ मालूम नहीं तो गाँव हम का होता है,
3: फिर
4: बताए इसकी तोरे गांव की महरारी की छिनैती हुई गई है।
3: अब देख लो।
4: हाँ,
3: कसके तू है प्रधानी महम्मा लोग का लड़ावे खाए बहनी,
4: बताओ। और ये अस्करत है।
3: हाँ,
4: तो ये दो रुआ बैठ गए, चनवा खोल कर
3: खोल गए,
4: दिखावा दिखावा और का।
3: अरे लोटन चाचा भी का बनाई है बहनी।
4: तो पुलिस या डांटिस हम होते तो पुलिस या डटते।
3: हाँ, डटबे
4: कर हम रहा, हम रही बन आई दर पे
3: ले, जब अपना नहीं रहे तो पुलिस वा। हाँ, तो पुलिस वा नहीं
4: रहे दर पे, तो पुलिस वा इनका डांट के चलाएगा।
3: नहीं, पुलिस वा तो तू ही डरा के बहनी।
4: हम नहीं डराए थे पुलिस वा का, हम डांट ही देते
3: ले
4: के, तो हार आते कहे जरी जाए रही
3: बगदिगा, सब बगदिगा
4: बगदिगा।
3: हाँ,
4: तो यह बताए हैं।
3: हाँ,
4: कि चलो भाई पुलिस ठीक है कहा था।
3: हाँ,
4: तो हम लोग ना पहना बब है,
3: ना पहरबे बनियो गौवा भरन चलते
4: जाए थे हम लोग, कहूँ खेते कहूँ खलिहाने कहूँ बगिया जाए थे।
3: हाँ,
4: और कौनो दिन झरपट्टिस तो समझो सब,
3: सब चला जाए। अब बनी हम लोग डुग्गी पीट दिन जाए।
4: हाँ,
3: हाँ, कि कोई अपने गटही में
4: ना कनवा पहने कौनो, हाँ, कौनो दिखावा कौनो जरूरत नहीं,
3: कछु नहीं, नहीं छोर ले बहनी, नकियो कान कट जाई और समन मो जाई।
4: तब और का भाई, अब नकी अब झुलनी पहने रहती सब है।
3: हाँ, हाँ,
4: अब नकी अब एक ठो अंगरुई मारी
3: मारी बस,
4: भलर भलर खून बहाई है और
3: समनवा गवा और नकुलवा कट जाई सुबह ने खा हो जाई।
4: तो मना करे खाए कि नहीं है, यहाँ से बुलाई तरह है कि आ जाओ, सबका जौन है अबेवर कर दी।
3: अबेवर, हाँ, सबका अबेवर करे परी बहनी।
4: हाँ, कितना पहनो बहनी,
3: ना पहरो पूरे कहो बहनी, पूरे कहो हथवा में मोट मोट है, तू तो पहरे हो चटपटाओ।
4: अब हम उतार के धई दी,
3: अतना मोट मोट तू पहरे हो तो हथवा कोई काट ले।
4: हाँ, यह हम लागत है कोनो दिन काट ली तो निहत्ते हुई जाए।
3: हाँ, और सामान जाए तो जाबे करी,
4: जाइबे करी,
3: अबे का निकाल के तू
4: निकाल के। अब हम वो सुना गा है कि बैंकिया माँ वो का कहा जाते लाकर होत है, लाकर
3: लोकर, लोकर कहा जाते
4: लोकर नहीं, लाकर लाकर लाकर कहा था
5: लाकर
4: लाकर माँ जाए के अपन जोन सुनवा हो गहनवा हो उका धई लेते हैं वही लोग
5: वही लोग चुराई ले तब
4: नहीं चुराई है नहीं चुराई है नहीं
5: बैंक में चुराई है अच्छा हम तो कब्बो लोकर में नहीं धरे
4: हम ना इधर हैं लेकिन सुना जात है कि लाकर बड़ा बड़ा होत है उमा जाकर अपन जो है सुनवा दे दे
5: बहनी हम तो अपने अंगनवा मैया माटी खन
4: तो हम यहाँ कहित रहन लोटन से कहित रहा है बहनी
5: हाँ
4: चैनवा हमें दे दे उतार के
5: हाँ
4: तो कहा थे हमारी मातारी निशानी हो
5: हाँ कहा थे कसके दे दे
4: वाह है हम कहा का लाकर मत दे
5: कहू दिमाग लगाए तो
4: हर महतारी निशानी बनी रही का लाकर में धराई दो
5: और गाँव मन कोई चुराई ना
4: ना कोई चुराई
5: अंदर अंदर तो बैंकवा वाले ना चुराई
4: ना ही कौनो ना चुराई सरकार मारी सरकार बहुत घुमाए घुमाए मारी उनके
5: अच्छा तो वही लोकरवा में हम लोग अपन थे दी
4: हाँ
5: हम तो मटिया नीचे गाड़े धरे हैं
4: तो वहाँ कही थे चलो बैंकिया चली बतिया कई आई चल के
5: हाँ पूरे कहू बनी बहुत तुमका जानकारी
4: अरे वही देखो वही आए रही है जानकी बहनी आई रही आज देखो
6: नमस्ते चाची
5: नमस्ते बहनी नमस्ते हम ना आई चिन्हन बहनी
4: ये तो हर बिटिया हो इतिहास बिटिया हो
6: नहीं बिटिया नहीं बहनिया हो
4: इनकी बहनिया हो का ना बहनी तुहार
6: संध्या
4: संध्या आई है भाई
5: तो बेग वग लिया हूँ पढ़े आई हूँ बहनी
6: नहीं एडमिशन करा
5: अच्छा ये समय एडमिशन
4: अच्छा। कहाँ बहनी कहाँ कराई हो
6: डिग्री कॉलेज में
4: अच्छा कौन से डगरी कॉलेज कौन से होते
6: डिग्री कॉलेज नारी ज्ञान स्त्री
4: अच्छा नारी रचना जहाँ रचना शिवानी
5: तो बड़ा नीक कॉलेज है बहुत बढ़िया
4: नीक करे बहनी चली गई हुआ बहुत बहुत नीक कॉलेज हो
5: तो वो बहुत नीक कॉलेज हुए और वहाँ एडमिशन ली हुआ तो बहुत नीक बात है और कोई तुरा जान पहचान चिन्ह परिचय हुए
4: बहुत करा दी बिटियन के लिए बहुत नीक कॉलेज हो
6: ठीक है बताइए चाची
5: हाँ बिटियन के जो है एडमिशन वो महान होता है हाँ? तो ये काम ही करे कि और कोई मिल जाए
6: अच्छा होता
5: बहुत
4: तो बहुत बढ़िया होता है
5: अब इनका रोजे भेजे परी कलेजवा आस मेर है कि हुआ रोजे पढ़ैया होता है
4: रोजे पढ़े जाए अच्छा
6: ठीक
5: हाँ। बनी डिरेस आई हो डिरेस
4: हाँ डिरेस चलते
5: हाँ वो बताए दिन जाए बताए दिन जाए
4: वहाँ डिरेस चलत हुई बताइए कौन सी डिरेस हुई
5: हाँ।
4: है ना वैसे वो पहनत तो है ललकी ललकी वो
5: ललकी ललकी
4: चक्का होता है
5: हाँ। कुर्ता रहते जब आईबो तीन चार बाजी तब जान लेबो हुआ के बिटी हुए हमें सबका बहुत मानत मोहा
4: हाँ,
5: घर आवती ही।
4: अरे गनवा अनवा हम सब ले उनका सुनीत है सुनाई दे सिखाई
5: सिखाई दे थे चौपाल में
6: आवत ही सिखाई दे चाची हमारे बहनियों
4: हाँ सिखाई दे कौन कहे ना सिखाई
5: बिल्कुल सिखाई दे तो घर के बिटिया हो
4: और का
5: जानकी कह के बिटिया हो हम ना आई चीन
4: अरे
5: हम नाई
4: तो नाई जानत तू तो कोई नहीं जाना तू हमें नाई चिन्हत हो
5: तू है चिन्ही दे
4: हाँ दिमाग चला गया है
5: ना ही दिमाग हमारा लौटिया ए बहनी कह के बिटिया हो
4: कश्यप नाई रहते हैं कौ कुनवा पर
5: हाँ हाँ हाँ
6: उन्हीं के बिटिया
4: हो
5: अच्छा
4: मूंगफलिया लगावत रहा याद है
5: याद आवा
4: हम लोग जाते रहे तो
5: नमस्ते करते रहे
4: और तुरंत जो अतना
5: मूंगफलिया
4: नहीं तो बिटिया हो
5: अच्छा अच्छा अब यहाँ कहाँ भाई बहनी
6: यही दुखरानन मंदिर लगा भाई
5: अच्छा गोड़ा माँ
4: हाँ गोड़ा माँ और दुखरा नाथ मंदिर बड़का मंदिर हो
5: बहुत बड़ा मंदिर
4: है भोलेनाथ बाबा का मंदिर हो
5: अरे वो बहनी हो का बड़ा मान है
4: हाँ तो बहुत नीक जगह यहाँ करीन तोरे बप्पा
5: और का बहनी
6: हाँ चाची बढ़िया की
5: और कई लड़के और क्या है तोरे
6: हमारे दूठो लड़की है चाची
5: दूठो बिटी बने
6: हाँ बिटी वही
4: कौनो बात नहीं कौनो बात नहीं
5: लक्ष्मी होती बहनी लक्ष्मी
4: बिटिया तो बहुत बढ़िया है भाई देखो वह अगर बिटिवा ना हो
5: हाँ,
4: तो जैसे तोहार जैसे तोहार दशा वैसे हमार दशा
5: बिल्कुल बिल्कुल पूरा कहा
4: हाँ, बिटिया हो तो अबे होते
5: ही जान लियो बहनी जानकी बहनी जेकर घर में बिटिवा नाई है ते तरसत ही रोवत ही कि हे भगवान एक बिटिवा दिहा होते हो
4: देखो बिटिवा
6: होता है कि लड़के का बर्थे मांगत है चाची कि लड़के हो जाए
5: मूरख है वह कुछ जान नहीं पावत है लड़के हो जाए तो हर को कौन उमरियो है
4: और का
5: एक लड़के हो जाए हमारे सब
4: जाइनिक से को गौ
5: हमारे सब आशीर्वाद देते हैं कि अब की तोरे लड़का हो जाई
4: बहनी के बाद ना होए हम ही कही थे
5: दो बेटियां एक छोटा लड़का
6: चाची तीन बच्चे
5: बहुत बच्चे हैं इतना तीन और एक चिंता ना करो बिटिया घर के लक्ष्मी होती उनसे बरकत होती जान लो बहनी
4: मानते हो कि ना जानकी
6: मानित कहना है
4: हां भी बिटिया है
6: बिटियन का पढ़ाई थे
4: हां अरे बहुत नहीं कर
5: कौन है कौन है कक्षा में
6: सेकंड में ही एक
4: कक्षा कक्षा का होता है
5: हां
4: कक्षा का है के हो तू
5: तब का कही क्लास
4: क्लास बोला जाता है
5: ये बनी काटी सेकंड में ही सेकंड का होता है
4: सेकंड नहीं कही नहीं
6: सेकंड
4: सेकंड
6: अच्छा दुई दुई जिसको दुई कहा जाता है
5: हां अच्छा दुई मां पढ़ा
6: पढ़ती है
5: एक तो दुई मां ही आवे एक
6: और एक कौन थे मैं एल के जी में
5: ये कौन पीजी में कौन कहती लीजी पीजी का
4: पीजी दाई होत है कोनो क्लास होई है ना बहनी
6: क्लास सब मगेन ना न मो लिखाए तो केनी केजी में होई
4: ए हां नहीं जानत है का जानी हम लोग हाँ, सब हां
5: ये हम केजी वेजी बहनी हम लोग नहीं जानते हां
4: जानी केजी फेजी हाँ, सेजी
5: ये कितना क्लास चली गवा
4: बहुत चल गवा है
5: है ना
4: 18 19 20 क्लास चल गवा है
5: हां बिटिया पढ़त पढ़त परेशान हो जाए
4: बुढ़ाई जाती
5: है जा ब्याह के मा जात है बहनी
4: ब्याह में बहुत दिक्कत हो जात है
5: हां वो तो ना पढ़ा लिखा 18 पास हो जाए तो 18 से ऊपर लड़का है
6: बहुत दिक्कत रहे तब का 1 2 3 4 5 यही मेरी क्लास
5: हां हम हूं सब ऐसे पढ़े हैं
4: ऐसे तो देखो
5: ये कमा गए
4: ये दो तक पढ़ी हैं
5: हां
4: हम 10वां पढ़े हैं
5: हां हां पूरे गए हुए पूरे गए
6: हम 5 तक पढ़े
4: 10वां हम पढ़े हैं
5: हां
4: हां और ये दो क्लास तक पढ़ी हैं
5: और बहनी अपना कितना पढ़े हो
6: 5वां पढ़े हैं चाची
4: हां चलो ठीक
5: है 5 पढ़े हमसे तीन ही ज्यादा पढ़े ही
4: कौनो बेजा नहीं पढ़ी हो बहुत पढ़ी हो
5: हां अब अपने बिटियन का पढ़ाओ और बहनिया का पढ़ाओ तू यही बहुत अच्छी बात है जान लो बहुत नीक काम करत हो
4: ये बहनी बहुत मेहनती होए
5: मेहनती है
4: बहुत मेहनत करत है
5: हां
4: हां मेहनत से घबरात नहीं
5: बहुत नीक
4: पलवार बहुत बड़ा
5: पलवार बड़ा है
4: बहुत बड़ा पलवार हो
5: हां
4: सब पलवार का लेके चलत है
5: अच्छा ये पलवार के सब लेके चलत
4: सब पलवार
5: पूरा जानकी बहुत नीक बात है
4: देवर होए जेठ जिठानी सब है सबका लेके चलत है
5: बहुत नीक काम
4: आजकल बिटियो होती है बहनी
5: हां
4: तुरंत कहती है कि हमको अलग कर दीजिए
5: पूरा कहूं बहनी
4: बतिया को अलग कर दीजिए
5: जैसे अपने सबके नाई है अपने ने मत देख लो
4: और का चाहते तो यह है पर नाई करी था हम
5: अभी जान लो जान की बहनी कि बियाहवा कीन अपने लड़कावा के बियाहवा कीन और चाहे न हो चाहे हम होई और वह जे मलकिन ही मलकिन बनी ही भाई ते ऊपर छत कोठरी है चढ़ी जाए तो नीचे ना है
4: ना उतरी है
5: पूरा घर के टहल हम करी पूरा घर के टहल
4: खैका बनाए के धई दे
6: चाची तो हम बड़ी रहन तो परिवार तो समेटक पड़ी
5: बहुत नीक की हो बहनी बहुत नीक काम की हो
4: खैकवा बनाए दो बढ़िया बढ़िया उनके
5: हमरा तो बड़ी हैं तो कहां करती
4: कोई नहीं करती यार
5: बनाए बनाए दे तो एक पर्स खाई लेती हां
6: देवे ना करो
5: अरे बहनी
4: उनका बस मेर मेर का खैकवा चाहिए
5: बहनी जान लियो नहाए धोए के आई जो कह दी कि दुल्हन उतरिया ऊपर से तनी चाह बनाए दो दुल्हन बाहर हो गई कनवा उनके बंदा
4: नहीं सुनती
5: सुनता ही नहीं वो बाहर हो जाती
4: अच्छा बड़ा गर्मस करे है
5: गर्मस है हो ये तो अपन चलाए नहीं हो
4: चलत है लेकिन बाहर वो जाओ तो पसीना से तल तल तल
5: बहनी यही समैया आज देखो आज पांडे विराम
4: विराम हुई के
5: बुखार का जानू का करिनही
4: का होईगा
5: बहनी तू जब घर में बाहर जात हो तो उतना गर्मस कहां है घर आउते तू ठंडवा चलाए बैठ गयो
4: हां या है
5: पंखावा नहीं चलाई ठंडवा चला ली
4: बस या है तो सर्दी गर्मी हुई जात है
5: अब काल राती कहां कहे लगे हम तो हमर
6: ठंडवा का होए चाची
5: ठंडवा बहनी या इनके लाग तो है ये देखो ये का कहा
6: एसी कहा जाते है
5: आय
6: एसी
4: हम सब है चौना ठंडवा कही थई का
5: हम सब है का यहां कही बहनी हम अतना नहीं पढ़े हैं हम तो दुइये पढ़े हैं ये तो
4: इसी कहो अभी इसी
5: इसी इसी बहनी इसी
4: इसी कहा जाता
6: है एसी कहा जाता है
4: एसी अच्छा एसी कहा जाता है
5: ए
4: हम लोग तो ठंडवाए जानी थे
5: हां
4: फ्रिजिया कबो कहबे ना कहे वो
5: कहे ठंडवाए कहिया मसीनिया ठंडे ठंडे ही तो वहां ठंडवा चला के बैठ गए बनी इसीया
4: हां
5: अब उनके लाग जाड़ और संजक उनके चढ़ा बुखार
4: हम
5: दिया है लाग टूटे माना तो कहिस की मारी दूई छोरी
4: मारे तो नहीं,
5: मारे नहीं बहनी, अब यह पाप ले बे। यही मारे कही थे कि जब हम जाई कमरों तो कही कि पंखवा का है बंद क्या हो कहे, अब देखो कमरवा बिल्कुल जोड़ जोड़ हो जाए।
4: हाँ।
5: तो ले जोड़ जोड़ लो कमरवा,
4: अब अपने जुड़ाए गए,
5: अब परा रहो मुंह बनाए।
4: हाँ।
5: काव करी तब बताओ जिसने लागत है
4: ना ही कहे नहीं लागत है, अब दर दवाई कराओ,
5: दर दवाई कराई और बुकुर बुकुर करा थे लेके आओ काढ़ा बनाई दियो, तब चली काढ़ा बनाओ
4: और का,
5: अब एक कम काम रहा कि खाना बनाए लो और चाय बनाओ, 24
4: घंटा की नौकरी हुई गई।
5: हाँ, अब बहनी गर्म पानी दो दिन भर पिए, काढ़ा बनाए बनाए दो, कमवा बढ़ा कि नहीं बढ़ा,
6: बढ़िया चाची,
5: तब नरकै मचाए देते इनके सब।
4: तो देखो ये गर्मी देख करके हमका एक गनुआ याद आवत है, छुप पर हम लोग गावा नहीं करित रहा है,
5: गर्मिया के कौन तनी गनगुना
4: गनुआ रहा है, तो बहुत हम लोग चिल्लाए चिल्लाए गावा करे थे बगीवा माँ।
5: हे ढोलिया तो हर फिर तू
4: ढोलिया ना मिली, अब बस हम जब जाइबे गोड़ा तब बे आई ढोलिया,
5: अब रिस लगवाए दी तू हमरे,
4: अब का कही बताओ
5: बताओ,
4: मर्दन के आगे चलत है
5: बहनी जान की, इनके इतना बड़का ढोल इनके धरा है लेकिन इनके ढोल बटाइये रहा थे, जब देखो तब क्यों ना क्यों के लौटन भैया एक जने हैं उनका, क्यों ना कौन काम बनाई है,
4: बहुत व्यवहार हो गांव भर से व्यवहार, कोई मूड़न कोई छेदन बस आए गए,
6: कह दिए हम ना देवे अब हम जरूर
4: ना, नहीं तो हम बस... तो मना कर दे थे, हम ना ही रही थे तो चुप्पे उठाए कुछ दई दी। हाँ
5: है तो कौन को मुनाते गाँव तो नहीं।
4: हाँ तो हसीओ तो ना याद आवत है,
5: ना याद
4: तो हम बताए थे कब ले आई हो कब ले जाई हो
5: सजन
4: बताए जाना और
5: फोटुआ खिंचा आवत तोरे आध है पूरा।
4: हाँ हमका आध है
5: पूरा
4: पूरा आध है, कहे ना अतना गाय ना चिल्लाए
5: हम तो बहनी बिसर गए, हम बिसर गए
4: तो चलो गाय लिया जाए एक बारी, गर्मिया जो ना बहुत दम मारे है।
5: हाँ
4: तो एक गाय ली
5: चलो,
4: अब देखो जानकी आई है संध्या है यहो लोग पुरवाए ले हो बहनी। हाँ। सीख लियो अच्छा
5: पुरुवाई ने, पुरुवाई।
4: सीख लियो तू का तो ससुरे जाए है ना तो ढंग से सीखो
5: और का।
4: हाँ हमारे चौपाल में तो यह होते जन बिटी वक्त ससुरे जाए होते तो चौपाल में आवे लगे थे कि चाची लोगों से गाना सीख
5: ले, सीख ले बहनी तब जाए जाए हमसे ढोल सीख लिया थी। हाँ। ढोल सिखाई दी बजावे सिखाई गावे सिखाई,
4: अब वहाँ गाना जो घर में चला था हम लोग वहाँ जानी तो वहाँ सिखाई दी थी कि बहनी सीख लियो।
5: हाँ चलो शुरू करो

0: याद आएगा बहनी गनवा हमरे
1: या गाया करी था ना
0: अमवा छोट रहे हाँ, हाँ, बैठ के पढ़वा पहिया
1: अमवा चूसा करी और यह है गाना गाई
0: यह है गावा जात
1: और कतना डांट पड़त रही गानक बदे हो ये कहे डांटा कहे जात रहा है
0: कहाँ जानी कहे अब हम सब छोट छोट रहे तब बलम सजन के गनवा गाई तो अम्मा अम्मा हमारे बहुत टोके चाचा हमारे बहुत टोकत रहे
1: कही का अल्लाह बल्ल गावत ही
0: अब और कोनो गाना तुहे ना ही गावे रही गवा हमरे तो दादा जे रहे बाबा हमरे कहा कि भगवान के गाओ ई बलम बलम
1: जे सुनी वह तो सीखी अम्मा लोग यहाँ गावे
0: हमरे घर सबके यही गावा जाए
1: गावे ढोल बजाए बजाए तो हम लोग सीख ली
0: और का
1: हाँ तो जानकी ये बताओ तोरे घर में का काम होत है बहनी बताओ
2: हमरे घर में दुकान होत
1: है दुकान होत है अरे ये तो बहुत बढ़िया है तब तो तुका कोई चीज की कमी ना है दुकानिया से ले लियो झट से हाँ
2: नहीं यार कोनो चीज हाँ दुकानिया से तो ले ले जाते
1: और का ये बढ़िया है कि जैसे हम लोग परेशान हुई जावा जाते है ना अब ना ही है नो ना ही है तो बैठी है के का भेजी सिवा तो जानते हो तू
2: हाँ
1: वो जल्दी सुनी ना अब बैठे हैं तब जाओ खुदा लेके आओ नोन तब डारो तब तरकारी बनाओ दलिया बनाओ
2: तो हमारे तो कनिया भेज दिया करो
1: अब तो हाँ तनी दूर पर जात है ना
2: अब वो कहाँ दूर पर है
1: अरे तनिक वो कहा था कि हमका जो है स्कूटी खरीद के दे
2: स्कूटी
1: स्कूटी हाँ कहा था कि अम्मा हो हमका स्कूटी खरीद दो और जब चीज मंगाई हो वो चीज लाई दे अब बहनी हमरे लगे इतना पैसा ना ही फाट पड़ा है कि हम उनका स्कूटी खरीदी यहाँ से मना करी तो भैया हमरे लगे ना ही स्कूटी भर के पैसा लड़के हैं आजकल के साइकिलिया है वो देखो मुंह बाय खड़ी है वो का ना ही चलावत है
2: आजकल स्कूटी अभी मोटरसाइकिल
1: हम कहे थे कि तेरे बप्पा की साइकिलिया खड़ी को कहे नहीं सुधरवाए लो चलाओ का कौन आजकल तुका बताई दे हम जानकी कि बड़का बड़का डॉक्टर होए और वही कहा था साइकिलिया चलाओ
2: साइकिल कोई नहीं चलाओ
1: साइकिलिया कोई चलाते ना ही कहा था कि साइकिलिया चलाइयो तो तुहार जो शरीरिया है एकदम ठीक रही लेकिन आजकल के लड़का स्कूटी दो स्कूटी खरीद
2: हम लोग तो साइकिलिया चलावत रहे हाँ।
1: ना वो जिद्दियान है कि हम स्कूटिया लेके तब
0: जाओ चटपटा
1: अरे शिवमुआ
0: अच्छा कहा था स्कूटी
1: हाँ कहा था स्कूटी खरीद दो हमें
0: हाँ
1: हम कही था कि हमने लगे कहाँ आता ना पैसा है
0: तो ये सुनो बहनी ये जानकी आई इनका कुछ खवाए पियाए दो तनी बिरेक खा लो
1: हाँ तो खवाए दे खवाए दे
0: हाँ, चाह पानी पियाए दो एक तो बिरेक खा ली
1: तो आज फिर से हम जाने का बनाए हैं
0: कहा
1: बरखा होता ना ही है लेकिन हम बरखा वाला बंजन बनाए बनाए खावा
0: तो खाबो तो बरखवा हो जाए हो जैसे खाबो बंजनवा
1: फिर से हम जो है
0: हाँ।
1: फारा बनाए
0: फारा
1: हाँ
0: तो चलो फारा हमें सभी मिल के खावा जाए हाँ। और बिरेक ले ली ठीक तो चलो बिरेक ले थे
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई थीम बेस्ड क्लासरूम ऑडियो वीडियो विजुअल्स कंप्यूटर स्मार्ट क्लास वाहन की सुविधा CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है एडमिशन ओपन पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर पटेल नगर गोंडा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123 मॉडर्न पब्लिक स्कूल निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: बड़ा नीक बनाए रहे हो, बड़ा नीक फरवा लाग हो। जानकी नीक लाग?
5: हाँ नीक लाग
4: जाए। चटनिया तो बहुत खट्टी रह।
6: संध्या तो अबे धरे बैठी हैं।
4: हाँ खाए नहीं, नहीं
6: खाए बहनी। ठीक नहीं लागत है का बहनी?
5: नहीं अच्छा लागत।
6: ये लोग मालूम का ईजा पीजा बर्गर।
4: हाँ, बर्गर
6: तो बोले नहीं बर्गर।
4: हाँ
6: मुँह से निकला था और का मोमोज।
4: हाँ मोमोजवा।
6: हाँ
4: सभी गोल गप्पा। ये गोल गप्पा का होता है वो
5: पनिया जन्म भर।
4: अच्छा बतासवा गोल गप्पा का।
6: हाँ पनिया भर के,
4: पनिया भर के
6: खा लो
4: खा लो। हाँ ये गुल बहनी तनी थोर खावा करो, बहुत नुकसान करत है। जानकी बहनी बहुत हंसत थी।
6: अपनी बहनिया जाना थी ना क्या यह सब खा थी।
4: हाँ तब पूरा कहा तो बहनी कुल लाई खा चाहिए।
6: अब देखो या ये स्कूल जाई ना तो एक ऊपर नजर रखे, हुआ बहुत मोमोज खावा जात है।
5: हाँ पैसवा कहाँ पे है?
4: हाँ पैसवा जब रही तो इनकी सखी खवाए दे हैं। वो
5: कई सखी
4: इनके सखी जब बन जाए
5: रोज खवाई है, एक दिन खवाए दे हैं, दो दिन
6: ना बहनी खाए ना। अच्छा हम कही थे तो हमार बात मानो।
4: हाय बहनी बहुत नुकसान करा
6: थी। दवा जो होत है उम्मा सड़ी गली सब्जियां डाल
4: दी थे। भर खराब कर दी। हाँ। भर
5: लीव
6: उमा खराब हो जाए। सब्जियां बंद कर देते।
4: हाँ बंद कर देते। मन बनी किरवा रहा थे बहन का महीन का
6: खाया जाता है। बंधवा जो नावत है बंधवा में किरवा रहा था।
4: हाँ बंधवा में
6: सब सड़ी गली सब्जियां वह बंद करके बस उसका
4: उसे देते हो। फिर हाँ। बहनी खाओ चटनिया से
6: सब खाए जाओ।
4: और चटनिया तो जैसे लाल लाल हमें तो जैसे जहर देखा।
6: हाँ बस
4: ये चटनिया ना हो जहर है, वो चाट ले तो मरीन जा। ऐसे जब हम निगरी थे देखी थे कि समोसा खूब समोसा बनाए धरे तो हमें
6: चटनिया ना ही राकेट होते हो राकेट।
4: और सुनाओ
5: अरारोट से
4: और जो समोसा हमें काव दिखा था हमें बुझा थे समोसा की बम धरा है। ई समोसवा ना हुई बम धरा पेटवा हम जाई बस भड़ा भड़ दगे लगी।
6: देखो हम लोग का खाई थे, हम लोग का खान पान अबे बहुत नीक हो। मन करा तो तनिक पकौड़ी बना लिया, घर का बेसन, घर का चना, घर का दाल, सब कुछ घर ही का
4: तेल।
6: हाँ घर के तेल
5: तो घर ही के हम लोग खाए।
6: हाँ तो अब देखो ये बाहर खाती है बिटिया लोग का पता नहीं कहाँ से कौन तेल आवत है जरा भूंजा वह हम बनाए बनाए खवाए दे रहे
5: संधे खाए।
4: नहीं बहनी अब ना खायो
5: ना खाइबे अब
4: खाबो तो तुहार पेटवा बग दे रही। तू बैठ रहा बो सिवाने कलजवा ना आई फेबो वो लोटा धरे बैठ रहा बो। और जो कलजवा
6: वो शर्मा
5: लोटा धरेगा
4: कॉलेज जब आई बो तब तू है अपन तबियतवा ठीक राखे परी बहिरे के कछु ना खाए।
6: ए बहनी जानकी
4: लोटा बहनी जही सिवाने
6: इनका जो है कलेजा कलेजवा भेज रही है।
4: हाँ
6: तो इनका दो तीन ठो पराठा चार ठो पराठा भेज दियो और तरकारी बना दियो।
5: ठीक
6: वहाँ ही खाई है
4: बहनी, तोरे लगे रहा थी?
5: हाँ हमरे लगे रहा थी।
4: अच्छा ये तो बड़ा नीक करे बहनी, पढ़ लिख ले।
6: हाँ पढ़ाई दी
4: ताकि नीक के दुला उला मिले, ससुराल ससुराल बढ़िया मिल जाए।
5: नहीं पढ़ ली बिटिया तब शादी बाद में करो।
4: नहीं तो पहले पढ़ाई लो, नौकरी कहूँ लग जाए तब कहूँ ब्याह हुआ करे।
5: नहीं बिटिया तेज ही हम।
4: हाँ नहीं तो ठीक है, बहुत नीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेज हो चाहिए आज के जमाना जोन है,
6: जमाना जोन है तेजी का हो।
4: तेज न रही है तो जान लेने फिर मार खा जाई है।
6: मार खा जाई है और का। अब बहनी जान की तुका आवत है कौनो गनवा नुआ?
5: आवत है लेकिन भुलान हो
4: क्या बहनी? ये सब ये तो हमारे सबसे बूढ़ हो गई
6: का खाती जब भुलाए जाती
4: हो। बताओ इनके कौन उम्र अभी जान की क्या रहे? और कहा थी की इनके नहुआ हमारे बड़की बहनी के नहुआ है बहनी।
6: आई रहा है एक बार।
4: हाँ जे हुआ पंजाबों में रहा थी। हाँ। उनके नहुआ यहाँ तो है, तो इनके नहुआ लेत हमारे ढेर लागत है, वह हमसे बहुत बड़ी है, तो बार बार नहुआ लेक परत है।
6: जान की दीदी?
4: हाँ वह हमारे दीदी होए, तो अब ये इनसे हम बड़ी हन, तभी दीदी इनका कही ना। आ तू हम जानू कह दे।
6: जानू सोना बाबू
5: हीर
6: ये सब चला है
4: तो इनका हम जानू कह दिए।
6: ऐसे मोबलिया मुंगरी हमारे।

0: ये देखो जरा जमाने की माया।
1: और देखो बहनी पनिया तो कम बरसत है और गर्मस की हाँ है,
0: गर्मस बहुत है भाई,
1: बहुत गर्मस।
0: बीमारी घर हो, जैसे तू कहा तू कि पाड़े जी बीमार पड़ा है, बस यहाँ बीमारी घर हो भाई।
1: एक थोड़ी गनवा हमारे चिताए गवा,
0: तो सुनाई दो, जानकी आई है, सीख ले है, मिटेवा सीख ले।
1: हाँ सीख लो बहनी, गायो हमारे साथ पुरवायो,
0: गावा करो बहनी, मुंह खोल खोल के गावा करो। हम लोग देखो कितना चिल्लाई था,
1: उनका गनवा सीख जाबो, ससुरे जाबो तो ससुईया बहुत खुश हो जायी की पतोईया हमारे गावे बजावे कुल जानत थी कि नहीं हो जट पटा।
0: सही सही पूरे
1: तो शुरू कर दे गनवा, एक
0: गाय दो गाय दो।

0: वाह भाई वाह,
1: बहुत बढ़िया रहा चाची।
2: बहुत पुरान है बहनी, गर्मस बहुत की हाँ
0: अच्छा
2: है।
0: ये देखो कि पुरान गनवा ही नीक लागत
2: हाँ,
0: है।
2: तो पुरान के गाना में तनी बहनी तो सुने समझे लायक राहत रहा। अब आजकल के गनवा तो ना कहो
1: फिल्मी चला
2: हाँ।
0: पता नहीं हम तो वहाँ देखा करी था सुना करी था, हमने कनवा में जाता है ना ही अंदर
2: और का
0: जो नया नवा नवा चला है
2: हाँ।
0: हमरे कनवा में सुनाते नहीं वो गाना।
2: अब देखो सावन लागे वाला है
0: हाँ।
2: और सावन लागी पनिया बरसते नहीं है, अब सावन लगा जाते तब धान के रोपाई।
0: कौन मेर सावन हो
2: ये कौन मेर बहनी, सब कुल बदला जाते कुल मौसम बदला जाते
1: हाँ। धान बैठे वाला समय
0: ये देखो हम बताए हम पूछा रहा है हमार भैया बतावत रहे कि का है बताई, हम नाम हम तो याद नहीं कर पाए था इतना, लेकिन भैया हमार बताई नहीं। सुनी हो कि ना सुनी हो?
2: सुन भाई काहे ना हो,
0: पानी काहे नहीं बरसत है
2: काहे क?
0: देखो एक समुन्दर होता है ना, जब बहुत पानी होता है समुन्दर होता है
2: हाँ,
0: बड़ा
2: हाँ,
0: बड़ा
2: हाँ।
0: सात समुन्दर है
2: हाँ। ये गनवा है नहीं सात समुन्दर तोरे पीछे पीछे आए गए।
0: सुन लो बताई थे हम
2: हाँ।
0: तो समुन्दर में बहुत बड़का बड़का मतलब पानी उछला करत है
2: हाँ,
0: है
2: हाँ।
0: तो ये काहे होते हुए कहीं कि अल नीनो कौनो होत है, होत है अल नीनो बताए भैया मार कि दीदी तू समझ ना पाइयो पर समझ लियो तू का
2: आई आल आल
0: आल नीनो बताइन
2: आल
0: कहीं ने आल नीनो की वजह से
2: हाँ।
0: भैया बतावत रहे कि पनिया गरम हुई जात है समुद्र का
2: अच्छा
0: हाँ। और वो पानी जब गरम हुई जात है तो बादर बनत है
2: हाँ।
0: बादर कहूँ बरसत है और कहूँ बरसत है ना, यह है बताना।

0: इतना समझ पाए हैं कि अलिनीनो का उन्होंने बला होत है। वह एक वजह से देखो हमारे गोड़म नाई बरसत है।
1: हाँ।
0: अब लखनऊ में बरसत है, कहूँ का कहते राजस्थान में बरसत है, मुंबई में बरसत है,
1: जहाँ बरसत है तहाँ डूबा
0: है। यहाँ कहा था कि दीदी जहाँ बरसी वहाँ बरसत है,
1: बरसत रही,
0: जहाँ ना बरसी
1: हाँ डुबाए जाए,
0: सूखा पड़ जाए।
1: तो बनी वो देखते रहे नूज नूज,
0: हाँ नूज
1: में तो नूजो हम देखें कि बनाई रोवत रहे उनके बहनी दुकानी है बूढ़ी गए।
0: हाँ
1: हाँ मनाई है कुल रोवत
0: तो
1: रहे।
0: का खाई है सब है।
1: हाँ कुल कहते रहे कि हमारे एक तो मिला कहते रहा कि हम अभी काल 3 लाख के लाइन है सामान धरे।
0: अरे मोरी माई
1: अब बताओ सब उनके बिगड़गा सब बगड़
0: तो वहाँ ऊपर वाले दयो हैं भाई। हाँ, का कहा
1: का कहे मनाइयो के जो करम जस है
0: बस भाई का लाए 3 लाख के बगड़गा
1: कुछ सामान लाए ना उनके उनके रहा बनी वो अरे अरे बनी
0: खाए पाए का
1: खाए वाला नहीं खाते। हाँ। जो लाइटिया के कमावा होते का इलेक्ट्रिक
0: इलेक्ट्रिक
1: हाँ है कुल सामान लाए रहे। हाँ वो है समनवा कुल बजावे वाला बाजा वाजा साउंडवा माइकिया
0: सब खराब हुई
1: सब उनके खराब होगा महंग महंग रहा
0: बताओ बिचारे
1: पानी हम सब।
0: हाँ।
1: बूढ़ीगा सब खराब हो गए
0: का कहा जाए
1: का कहे जो उनका मर्जी दयु के
0: वह दयु बरसता नहीं है बरसत है तो अथाह बरसत है।
1: हाँ
0: के सब नाश एकदम पीट देते
1: हे छट बताओ।
0: हाँ
1: हमारे एक बतिया याद आवा
0: का हुईगा
1: हर सलिया तू जो है अपने खेतवा में झलुआ डालत रहू बहिनी
0: लाग नही सोनवा और तू का झुलवा पहले चाहिए
2: 30 तारीख का लागी सावन
0: हम
1: यही महीना के आखिरी तारीख
0: तो सब हम तैयारी करी है।
1: हाँ
0: मुझा मुझा उजा सब हम कहा काट लाओ और रस्सी बर डालो
2: मुझा से कहाँ बरा जाए उसे बुआ
0: नहीं मूजा से बर हमरे लगा है ना सब बहुत मूजा लगा है मूजा के रस्सी बरी है।
1: हाँ, रस्सी जो रस्सिया बर के वही के लटकाए
0: दे
1: पटरवा डाल दे
0: पटरवा रखा है बहुत बड़ा बड़ा।
1: हाँ, वहाँ डाल के हम बहनी पेंग मारब
0: तो तू पेंग मरियो हम बैठब
1: नहीं तू पेंग
0: तू बैठे हम पेंग मारब
1: हम बैठब ना हम पेंग मारब तू बैठो
0: नहीं तू बैठो हम
1: नहीं तू बैठो हम पेंग मारब।
0: अरे तू ना मार पाई
1: मार पाई तू बैठबो एक बजे तू बैठबो हम पेंग मारब
2: दोनों लोग बैठे हम संध्या पेंग मारब
1: नहीं तू दोनों जनी बैठे हो हम चटपटो पेंग मारब
2: पेंग मारे
1: हम मैं पेंग मारे ये बनी बहुत दिन होएगा नाई झूल
0: नहीं कहे
1: सलिया पिछले सलिया हम कहाँ रहन चली गए
0: ना तो घूमे चली गई रहो
1: घूमे चली गए
0: तो बहुत बढ़िया मेला लगाया रहा हम सबे मिलके तमाम सब एक जगह इकट्ठा भाई सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के एकदम। हाँ, हाँ गुड़िया वाले दिन हमारी बगीवो हमारी बगीवो मेला लगाए दिन
1: वहाँ
0: झूला लगा रहा है
1: काम किया भाई
0: भाई सब आए कहे चाची हम झूला आपका झूला तब सब हुए खाना आएगा हुए सब पिकनिक हुई गई पिकनिक
1: होएगा।
0: हाँ तो बढ़िया बढ़िया सब पहन पहन के आए थे बहुत नीक लागत रहा है फुटुआ दिखाई भक्तु का।
1: हाँ
0: हाँ मुआ खींचिस रहा है।
1: हाँ,
0: तो वो के मोबलियम है
1: तो अब फिर कह लियो हम तो अब आप
0: हाँ, तो करा जाए भाई।
1: हाँ
0: एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना जाए हरेर का हरेर की साड़ी है तो अरे लगे कि नहीं
1: हाय है बिल्कुल चमचम वाली।
0: हाँ तो खरीदे रहा हो ना।
1: हाँ हम हरेर की तो ली है ना
0: तो हमरे लगे है इस बार हम खरीदा हरेर की
1: तो
0: साड़ी।
1: एक तो झलुआ वाला गाय दी गौ नैया
0: गाय दो गाय दो
1: तैयारी
0: कई लो दिन
1: गाँव बहनी जानू
0: जानू।
1: हाँ बहनी अब कैसे इनके नवा ले ली हमारे बड़की बहनी के नाम हो तो तुहार हम नवा पूरा ना ले तुहार जानू हो बहनी हम जानू है तुम्हें कहा कि नहीं चटपटाओ।
0: हाँ बिल्कुल
1: का करें हमारे तो बहनी मजबूरी है हम पूरा नवा कैसे ले ली तो
0: बहन का नाम ना ले है
1: हमारे बड़की बहन
0: तो जानू कही है
1: हाँ तो अब हम तुम्हें जानू
0: तो हम कहा जानू।
1: हाँ कहा जानू इनके नाम जानू ने इनके नाव पर ही चलो बहनी पुरवा ली हो जानू

0: देखो सावन ना आवा, हम ऐसे गायन है जानू कि सावन आई जाए
1: आई जाए सही बात,
0: पानिया बरस जाए।
1: हमें तो लागत जैसे देखो बदरा जो है छाए रहे,
0: रतियम बरसा है चटपटो, तू ना जानू थोड़े
2: बरसा बरसा
0: पानी भर बुदियान है,
1: बुदियान है इसे छिट्टी विट्टी मार दिन भगवान
0: तो बरसी है ऐसा नाई है।
2: बस संध्या महीने के धान बैठे
1: बहनी हमरे कहाँ बैठावे धान, हमरो तो नहीं बैठा,
0: हमरो नहीं बैठे बहनी,
1: खेतवा भरे तब तो बैठा जाए ना धान।
0: और का
2: अब तेल डीजल महंगा
1: बहुत महंगा है, कहाँ से
0: नहीं कहाँ, यही से तो महंगाई है। देखो जब तब बढ़ी जात है, अब पानी बरस
1: अब देखो डीजल और पेट्रोल का तो टूटा पड़ा है,
0: तब
1: और अदबियों का मिलत नहीं है, मनई नहीं मिलत है,
0: अब मनई बहनी नहीं मिलत है,
1: कमवा करे नहीं चाहत है,
0: अब पैसा दे रुपया दे तो नहीं मिला,
1: और कहिए कि रोजगार नहीं हमरे लगे,
0: जे मने ये काम करत रहे पहले ते अब सुगवार हो गए
1: भाई, अरे भाई खाए खाए मोटाए गए।
2: हां हुआ मां बिहारी आए गए हैं बिहार से।
0: अच्छा था
2: तो वही लोग बैठावे के खियाकप लिया
1: था, तो बहनी जे के ना होई खाए के एकदम कुछो ना होई,
2: एक टाइम खाना ले हैं
1: वही करी, और जे मोटासा है काहे करी
0: वही ना करी बहनी, अब जान लो
1: हां मोटासा मने काहे करी भाई,
0: का कहा जाए
1: चला जाए बहनी, बहुत टाइम होता
2: है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल से आए गए हुई है।
0: अच्छा बहनी तोरो लड़के वे कुल आई गई बिटी वे आई गई हुई है, तो नाश्ता वास्ता बनाई दे तू बहनी,
2: बना ली थे चाची।
0: अच्छा तो कुल बनाए बनाए तब बस्ता वस्ता लेके कुल जात हुई है,
1: अरे इनके बहुत काम बहनी के भाई, लड़कों का तैयार करो, नहवाओ धुआओ खाना बनाओ रखा, टिफिनियों में रखा
0: है, अरे हमारे लोग भी करत रहे,
1: छोट छोट काम बहुत हुई जात
0: बहुत हुई जात है बहुत,
1: अब कहे को तो घर में कोनो काम है नहीं,
0: और नहीं जानी हूँ एक रोजिया हम चली गई ना हुआ नखलऊ,
1: अरे हमारे पोतो ही एक सुन लो,
0: हमारा सुन लो पोतो ही एक बतिया बताई,
1: हाँ तब बताई दो,
0: नखलऊ नखलऊ हम चली गए तब सारा टहलिया हम करत रहे,
1: हाँ
0: तब जब उनका करे पड़ा मलकिन का संझक परी रहा है।
1: अच्छा
0: अड़पी रात है, गो अड़पी रात है, हम कहन की आयन, हम कहन की पाड़े नहीं गए रहा, हम ही गए ना, हम पूछन की इनके गोड़ काहे पिरात है, आई उतर के कहा थी मम्मी जी कैसे आप सारा दिन काम करती है,
1: हाँ पता लगा,
0: हाँ कितना काम होता
1: अब, है हाँ, पता लग
0: हम कहना जान पायू कितना काम होता है,
1: और देखो हमारे यहाँ का कहती है, कहती है कि ये करती ही क्या है,
0: अरे मोरी मैया
1: एक, हाँ मतलब हमका बता दें ये करते का है, तनिक रोटी पानी बनेगा बस, सारा दिन परपंच करती कहूँ, इनके द्वारे बैठी कहूँ, उनके द्वारे बैठी
0: बनी, हमें लोग परपंच नहीं करी थे
1: बताओ, हम कहा अब इनसे कौन मुहाचाई करे है, मन तो आ रहा है कि फोरी दे
0: मुहर दे मुह पूरा कहा तो पूरा, हम लेकिन अब वह
1: है कि घर में शांति चाहिए ना, हमारे
0: घर रहा हूँ का कहा जाते हो का ए जिन कूटा जाते हो का कहा जाते
1: हो मुसरा
0: पहरुआ
1: मुसर
0: पहरुआ रहे पहरुआ, हमारे मना किसी पहरुआ इनके मुँह दई मारी,
1: कहा थी करती कहा है,
0: हाँ
1: रोटियां हम बनाई
0: तरकारिया हम करी बर्तनवा तू धो
1: माजी धो, जौन आए गए मनाई उनका हम हाँ, देखी भाली
0: तब करत का अपना वही का करत थी,
1: कहा थी कुछ करते नहीं खाली परपंच करत है, कहू यार चली गई कहू और चली गई,
0: अरे अब काव कही बहनी
1: ये जमाना तो आएगा जान की जान ले तू,
0: बहुत खराब जमाना आएगा बहनी, अब पतो ही इनका तो कुछ
1: बोले लायक नहीं, सीख दे भर का नाई है यार,
0: अरे एक दिन हम नाई जानु एक दिन हम समझावे लागन कि देखो दूल्हा सवेरे उठ जाओ, कहती आपन ही ज्ञान अपने लगे धरे रहो, ऐसे कही समय
1: भवानी परे,
0: अब दिए खिलाओ हम कहीं ज्ञानवान नहीं सीखा, तू तोहरे अगवा हुई है तू है मार गिराए दे है यहाँ,
1: तो वो तो जाने हुई करी वही हुई पे करी,
0: हमारे साथ कर तो तू है पिछवा तो मिल पाई
1: करी, जस करियो तस पाई हो,
0: तस पाई हो भैया,
2: सास बढ़िया पाई गई
0: बस
1: बस, यहाँ
0: वाली मिली होती गरिया उती,
1: हम लोग सोच मनाई
0: बस,
1: और सोच मनाई फायदा दुनिया उठा,
0: दुनिया उठावत पूरा कहूँ चटपटो पूरा कहूँ,
1: तो चलो चला जाए
0: हाँ, जाए कि इनकी बिटिया
1: आई गई हुई है,
0: हाँ चलो बहनी सबका राम राम कर,
1: राम राम बहनी राम राम, आयो फिर
0: हाँ, संध्या बहनी राम राम, जानकी बहनी राम राम,
1: आज बड़ा ठीक लगा कि जानकी बहनी आई हमरे, संध्या आई है भाई बताए न स्कूले पढ़े जाए तो हमें बड़ी खुशी होता
0: है, बिटियन का बहनी
1: जो हम नहीं कर पाए वही बिटिया करते हैं, बड़ा नीक लागत
0: बहुत नीक लागत है,
1: खूब पढ़ो बहनी हमारा आशीर्वाद है,
0: हाँ बहनी हमारो
1: तब चलो चली थे। और बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप लोग चैट बॉक्स में आके ये बताया करिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपके छोटे से
0: कमेंट से
1: हमें बहुत बल मिलता है,
0: बहुत बल मिलता है। और
1: आप सुन रहे हैं 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
1: अरे सुना?
4: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: बात है और गुणा मैसेज मसाला की शुरुआत करते हैं मोहब्बत के इस सफर से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत। और मिलेंगे संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ। नमस्कार। शुभ संध्या। एक बार पुनः आप सभी का खैर मकदम। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गन असली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और आज कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। हमारे साथ भाई ताबिश जी जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग मैम, अफसोस की आज सर है। और भाई गुड इवनिंग, बिना किसी नाम के सिर्फ कोई लोगो है भाई। नवीन राजपूत जी हैं। जी हाँ, शुभ संध्या आपको। और राधे राधे जी, बिल्कुल राधे राधे आपको भी। और अनोखी शर्मा जी हैं। गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। एनर्जी वाले गाने बजाएं, मुझे नींद आ जाती है इस गाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये ज़रूर बता दें कि एनर्जी वाला गाना कौन सा होता है ताकि हम जान पाएं। और जी, या फिर सिंगर को चाय दो। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका सही है, सिंगर को चाय दिया जाता है। संडे है तो जी बिल्कुल यही हूँ। धर्मेंद्र मोहन जी हैं। मनुष्य गुड इवनिंग। माय सॉन्ग प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। क्या बात है, आप जो मेरे मीत न होते हो, ठुपे मेरे गीत न होते। क्या बात है, तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है एक दिल है। जी हाँ, मैं साथ नवीन राजपूत जी हैं। और सविता दुबे जी हैं। शुभ संध्या से सविता जी, आप कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। आज ओपन माइक में आपका आना बहुत शानदार लगा। और सबलू सावंत जी हैं। शुभ संध्या जी। मनु जी आपको भी शुभ संध्या। और हमारे साथ दर्ज जुड़ चुके हैं अनिल जी। चरण स्पर्श दादा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे जी। तो वास्तव में जो मौसम है आज का, ये मौसम भी कुछ कहता है और कुछ तो सावन भी कहता है। कुछ तो कई लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना और ये सिलसिला चलता रहेगा जी। फिलहाल ओल्ड इज गोल्ड के इस प्यारे सेगमेंट में और आइए, अब आपको ले चलते हैं थोड़ा सा एक रिश्ता फिल्म का एक गीत जी। बिल्कुल। और आप अपने यहाँ का भाई, अगर आप गोंडा के हैं तो कोई बात नहीं, गोंडा के बाहर के हैं तो ज़रा हाल चाल बताइए। मौसम विभाग क्या कह रहा है आपके यहाँ? कैसी शाम है आपकी? मतलब हल्की फुल्की बारिश हो रही है या फिर मौसम खुशनुमा सा है या गर्मी का एहसास हो रहा है, लगता है ह्यूमिडिटी बहुत है? तो ज़रा अपने अपने क्षेत्र का भाई हाल चाल भी कुछ बताइए आप लोग। और आइए, आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस प्यारे से नगमे के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गन स्लेट 9.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए। जी हाँ, और वास्तव में ये नगमा हमारी ओर से पेश है आप सभी की मोहब्बत के नाम।

जी हाँ, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन। हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं भाई सविता शास्त्री जी, क्षण स्पर्श करते हैं आपको। और भाई सविता दुबे ने बता दिया है, मैं भी ठीक हूँ सर जी। क्या बात है, गोंडा के बाहर के हैं सर, और बारिश हो रही है, बड़ी बदली छाई हुई है। क्या बात है, बदली छाई, जब याद की बदली छाती है। और क्या बात है भाई, देखिए एक कवि, एक जो कलाकार होता है वो अपने ही अंदाज में उत्तर देते हैं कि गोरखपुर में रिमझिम घिरे सावन हो रहा है। जी हाँ, और यहाँ से भी हम अभी रिमझिम घिरे सावन आपको सुनाएंगे जी। एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र मोहन जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या बात है भाई, बहुत सारे दिल, तराजू, तरबूज, सब लोग। सावन जी हैं सांता क्रूज मुंबई से। कितना अधूरा लगता है जब बादल हो पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हो पर ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर साथ ना हो। क्या बात है, बस तो मैं अजीब सा लगता है। और बारिश की बूंदों को छातों से रोका न करो, बेचारी बहुत दूर से तुमसे मिलने आती है। क्या बात है भाई, भाई आपने अपना कोई नाम ही नहीं लिखा है तो आपको किस नाम से पुकारूं। तो शुक्रिया आपका, स्वीकार कर लेता हूं। ये बारिश भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, फर्क सिर्फ इतना है तुम मन को भिगा देते हो, वो पूरे तन को भिगा देती है। क्या बात है। और सब लोग लिखते हैं, मेरे ख्यालों में वही, सपनों में वही, लेकिन उसकी यादों में हम थे ही नहीं, हम जागते रहे, दुनिया सोती रही, एक बारिश ही थी जो हमारे साथ सोती रही। जी हाँ, और इसके पश्चात मैं तो ये कहता हूँ कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देखकर पहचान न ले। जी हाँ, तो बारिश होती है, अगर भीगने का इतना ही शौक है तो बारिश में देखो ना मेरी आंखों में। बारिश का तो हर एक के लिए होती, लेकिन ये आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए बरसती हैं। क्या बात है भाई, आज वाह क्या बात है। और बरसात के ऊपर सब्बू सावन जी बहुत शानदार रचनाएँ लिख रहे हैं, लेकिन देखिए अब तो वक्त का पहिया ऐसा घूमा, पहले वाली बात कहाँ। वक्त का पहिया ऐसा घूमा, पहले वाली बात कहाँ, कागज के हो नाव तैरती ऐसी अब बरसात कहाँ। अब जो लगता है जो बच्चे थे वो बड़े हो गए अब, और छोटे तो अब दिखाई नहीं पड़ते। वक्त का पहिया ऐसा घूमा, पहले वाली बात कहाँ, कागज के हो नाव तैरते ऐसी अब बरसात कहाँ। साथ वक्त के है, साथ वक्त के रंग है बदला, बदल गया माहौल यहाँ, शहरों का आवरण लिए है अब तो गांव देहात यहाँ। फंसा दिया है राजनीति ने जाति धर्म के चक्कर में, मिलकर हर त्योहार मनाए ऐसे अब ख्यालात कहाँ। हर कोई मसरूफ यहाँ है, व्यस्त है, हर कोई मसरूफ यहाँ है अपने अपने उलझन में, 64 खाने बिछे हुए हैं वो शय और वो मात कहाँ। जैसे झुंड कोई तारों का गिर कर अटका पेड़ों पर, जैसे झुंड कोई तारों का गिर कर अटका पेड़ों पर, जुगनू चमक रहे बागों में इतनी सुंदर रात कहाँ। मतलब कभी हमने प्रकृति को बहुत करीब से देखा था, वो बारिश होना, कागज की नाव, और आज के इस भौतिकवादी दृष्टिकोण को देखते हुए शायर ने कह भी दिया कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो मेरे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने बचपने के लिए तरसता है, और आजकल के बच्चे तो अब बचपन जी ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वो KG 2 में पढ़ता हूँ और 2 KG का बसता है, ये वाली हालत है इस समय। जी हाँ, अभी हमारे बाकी कई श्रोता उपस्थित नहीं हैं, तो फिर दर्द का सांस दे रहा हूँ तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूँ तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें, ये
गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। जी हाँ, तो मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँचे तो क्या बात है, और बहुत अच्छा लगता है भाई। ताबिश खान जी हैं, गुड इवनिंग, आदाब करते हैं आपको भी, आर लाइक ताजे, आपकी बातें बहुत ही क्लियर और बेस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलिए अब चलते हैं एक नगमे की ओर पुनः, और इसके बाद फिर लौटते हैं, और कुछ ही पलों में तो वो पल आने वाला है जिस पल की प्रतीक्षा आप सभी को है।

हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन। और अब भाई हमारे पास सबलू सावन जी कहते हैं, उदास रहता है बारिश का पानी आजकल, उदास रहता है बारिश का पानी आजकल, सुना है कागज़ की नाव बनाने वाले बड़े हो गए। क्या बात है भाई, और क्या बात है भाई, इट्स कुमार जी आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग आर जे मनु जी। हाँ वेरी गुड इवनिंग इट्स कुमार जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपको देखकर अच्छा लग रहा है और तबिश खान जी को गीत अच्छा लगा भाई, धन्यवाद मनु जी जी धन्यवाद। और अरे सर जी, दो लोगों का गाना सुना चुके, ऊपर मेरा गाना था, ऊपर आपका गाना था भाई, ये तो हमने देखा नहीं। और भाई कुछ भंडारा वंडारा की बात भी चल रही है, गुड इवनिंग जी। और क्या बात है भाई, तो धर्मेंद्र जी एक बार आपसे पुनः हम निवेदन करेंगे कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो एक बार पुनः भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि भाई चैट रूम में हमने आपको न देखा हो, और यह हो सकता है आपका संदेश यहाँ तक पहुँचा हो और हम तक न पहुँच पाया हो, क्योंकि इस समय जो है वो क्या बात है भाई। और इस दौर में जीना कोई आसान नहीं है, इस दौर में जीना कोई आसान नहीं है, वो खुश नसीब है जो परेशान नहीं है। इस दौर में जीना कोई आसान नहीं है, वो खुश नसीब है जो परेशान नहीं है। लुटते हैं उजड़ते हैं बिछड़ते हैं यहाँ लोग, ये राहे मोहब्बत कोई आसान नहीं है। जी हाँ, मोहब्बत की राह बड़ी मुश्किल।

शामिल होती है। और जी 7:41 हो गए हैं, अर्थात ठीक 4 मिनट के बाद वो समय जिस समय की आपको रहती है प्रतीक्षा। जी हाँ, हम ऐसा जुड़ चुके हैं भाई के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। और जी प्रणाम करते हैं आपको के गुप्ता जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बताइए आप कैसे हैं? और अब तो भाई वक्त तो हो चला है जी, तो एक गीत के बाद वही होगा कि अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम प्रतीक्षा करेंगे आपके फोन की 7:45 से। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ, फिलहाल ये गीत, और इस गीत के बाद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं आप सभी के लिए प्रारंभ।

जी हाँ, तो फरमाइशी गीतों की करते हैं शुरुआत। और आइए, अब पहली फरमाइश हमारे पास आई है भाई सबलू सावंत जी की सांता क्रूज से। तो आइए सबलू सावंत जी की फरमाइश से शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा कार्यक्रम गीत आपके नाम से।

0: जी हाँ, इस फरमाइश के बाद भाई बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश है हमारी अनु जी की बेलसर से, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। बहुत ही प्यारा सा गीत है, आइए पूरी करते हैं फरमाइश अनु जी की बेलसर से, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
1: नहीं नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ।
2: गाने दीजिए ना।
1: गाओ बेटे,
2: यही गाना गाओ, गाओ।

0: जी हाँ, और अब बढ़ते हैं भाई आज की अगली फरमाइश की तरफ। हमारे पास आशु मिश्रा जी की फरमाइश है लखनऊ से, उनको सुनना है गीत क्या बात है हम बेवफा हरगिज़ न थे। बहुत ही प्यारा सा गीत का चुनाव उन्होंने किया। अब आइए आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो हमको सुनते हैं लखनऊ से, आपको सुनवाते हैं हम बेवफा हरगिज़ न थे। बहुत ही प्यारा सा गीत।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। ये फरमाइश थी हमारी बहन जी की लखनऊ से। और अब चलते हैं भाई, हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता श्री कृष्ण कुमार जी हैं जी, तो सुनते हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से के गुप्ता जी की फरमाइश, और उनकी फरमाइश मौसम को देखते हुए है, और वो भी क्यों ना, आइए फरमाइश पूरी करते हैं श्री के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स से।

जी हाँ बिल्कुल, आने वाले सब आ चुके हैं और सबसे पहले आ चुके हैं हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी। और अब चलते हैं भाई एकदम उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले रईस जी की तरफ। और रईस जी की फरमाइश बहुत ही प्यारी है, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये प्यारा सा गीत रईस जी की फरमाइश पर आप सभी के लिए। सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन गन 89.6 FM। यह है गोंडा ही नहीं बल्कि आपके भी दिल की धड़कन।

जी हाँ, रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा गीत ये फरमाइश किया था हमारे रईस भाई ने। और अब चलते हैं निशा जी की तरफ, कहती हैं सोने की ला दो पायल चांदी की छोड़ दो। जी हाँ, तो चलिए भाई अब सोने की पायल का इंतज़ार करते हैं और चांदी की पायल को छोड़ देते हैं।

जी हाँ भाई, अब चलते हैं अपने बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता की तरफ। श्री राजेश सिंह जी मालवीय नगर से सुनते हैं हमको, और फरमाइश है, तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम कर लूंगा। रफी जी का बहुत ही प्यारा गीत है।

जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है इम्तियाज जी की। अब चलते हैं भाई भीम कुमार जी की तरफ, और फरमाइश है, तेरी आंखों की कसम तुझे प्यार करता हूँ। कुमार शानू की आवाज़ में।

बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया। भीम कुमार जी की फरमाइश पर अब चलते हैं भाई हमारे दादा गोरखपुर से, सुनते हैं अनिल बनर्जी जी और गीत उन्होंने चुना है रिमझिम के गीत सावन गाए।

सावन गाए, बिल्कुल सावन गा रहा है। चलते हैं भाई, बहुत ही प्यारी फिल्म भाई दादा आपको चरण स्पर्श गीत के लिए। और अब चलते हैं ओम जी की तरफ, और उन्होंने बताया है प्यार कैसे शुरू किया जाए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। आइए सीखते हैं इन्हीं से कैसे।

0: सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
4: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
5: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में 0 कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
7: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ भाई, चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी ये महेंद्र जी की फरमाइश थी राजस्थान से। अब चलते हैं, आनंद प्रताप सिंह जी की फरमाइश है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।

0: जी हाँ, बहुत ही प्यासा गीत और दर्द भरा गीत हमने सुना श्री अनंत प्रताप सिंह जी की फरमाइश पर। और चलते हैं अपने दर्द कुमार की तरफ, और बहुत ही प्यारा सा दर्द लेकर आए हैं, औलाद वालों फूलो फलो
1: की फिक्र ना, भविष्य की चिंता, कोई झंझट ही नहीं जीने, कोई सपना ही नहीं है।

0: बंद करो, ये रात बंद करो बाबा।
1: कुछ नहीं ठहरता ना पंच,
0: ये गाना यहां मत गाया करो, इन दीवारों से टकरा कर तुम्हारी दुआएं लौट जाएंगी, इस घर में ये फलने फूलने वाली नहीं है, अपनी दुआएं जाया ना करो बाबा, ये लो।

0: ये चमत्कार बॉबी ने किया है डॉक्टर। इस अंधेरे घर को इसने उजालों से भर दिया है। अब मैं जीना चाहता हूँ।
1: भूखे गरीब की
0: बाबा जी हैं।
1: यही दुआ
0: बहुत दिनों के बाद आए।

0: बाबूजी क्षमा करना, भूल हो गई, अब नहीं गाऊंगा।
1: क्यों नहीं गाओगे? जरूर गाओगे बाबा, रोज रोज गाओगे। बाबा तुम्हारी दुआएं इस घर को रास आ गई। गाओ।

क्या गजब का दर्द भाई, दर्द कुमार जी ने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, एक एक पंक्ति समझने वालों के लिए तो मौत है। अब चलते हैं अभिषेक जी की तरफ और फरमाइश है आने वाला पल जाने वाला है।

और इसके पश्चात भाई हम सब लोग सावन जी की फरमाइश पूरी करेंगे, सानू एक पल चैन ना आवे, और ईश्वर ने चाहा तो फिर अगले रविवार को आपसे मुलाकात होगी। गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल चुका है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। हम जब इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं तो हमने कहा कि हम नींव के ईंट की बात करते हैं, वो ईंट जो हमको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन जिस पर पूरा भवन खड़ा हुआ होता है, जिस पर इमारतें खड़ी होती हैं। गीत किसी गायक कलाकार ने गाया, किसी के ऊपर फिल्माया गया, लेकिन जिसने लिखा वास्तव में, द क्रेडिट गोज टू हिम आहार, श्रेय लेखनी को जाता है। और हम यहाँ उन दानिश्वरों की बात करते हैं, कलम के उन पुजारियों की बात करते हैं जिन्होंने मौका पड़ा तो कलम छोड़कर बंदूक उठा ली, और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर तलवारें छोड़कर लोगों ने कलमें भी उठाई हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, वो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी कहते हैं लोग, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि साहित्य का आईना दिखाता है। और आज जिस आईना दिखाने वाले की बात हम करने वाले हैं, उनका नाम आप सभी के जहन में है, आप सभी उन्हें जानते हैं। हाल ही में वो नहीं रहे, गोलोकवासी हो गए, निधन हुआ उनका, और वो नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी, जिनके कदमों में बैठकर न जाने कितने शायरों ने अपनी गजलों को संवारा है। उन्होंने लिखा कि जितने अपने थे सब पराए थे, जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे। जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे, जितनी कस्में थीं सब थीं शर्मिंदा, जितनी कस्में थीं सब थीं शर्मिंदा, जितने वादे थे सर झुकाए थे, जितने आंसू थे सब थे बेगाने, जितने आंसू थे सब थे बेगाने, जितने मेहमान थे बिन बुलाए थे, सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थीं, सारे किस्से सुने सुनाए थे, एक बंजर जमी के सीने में, एक बंजर जमी के सीने में मैंने कुछ आसमां उगाए थे, सिर्फ दो घूट प्यास की खातिर उम्र भर धूप में नहाए थे।

0: मुकद्दर है, आज कांटों भरा मुकद्दर है, हमने गुल भी बहुत खिलाए थे। जी हाँ, डॉक्टर राहत इंदौरी का अपना एक अलग अंदाज है और उनका जो अलग अंदाज है वो अंदाजे बयां उन्हें और बना देता है। जी, और आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: मॉडर्न पब्लिक स्कूल निखार रहे हैं

अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। जी हाँ, वास्तव में अगर आप मुस्कुराते रहते हैं तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। रोता हुआ इंसान शायद ही अच्छा लगता हो। जी हाँ, हमारे साथ सविता शास्त्री जी हैं, प्रणाम करते हैं आपको और चलते हैं राहत इंदौरी साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सिरहाने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चिराग उड़ा ले गई सिरहाने से। नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, कहते हैं जो प्यार करता है उनको आप नसीहत मत दीजिए, समझाइए मत। नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। आगे कहा कि बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, शराब खाने से निकलूं या चाय खाने से। और पंक्ति ये है कि नदी का कर्ज निकलता है मेरी आंखों पर। मतलब जिंदगी में इतने सारे दर्द हैं, इतने गम हैं कि लगता है नदी का पानी भी कम पड़ जाएगा। तो कहा कि नदी का कर्ज निकलता है मेरी आंखों पर, मैं सोचता हूं कि रो लूं किसी बहाने से। मैं ये सोच रहा हूं कि बस एक इंसान होता है जो बाहर से अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर ही भीतर इस दुनिया का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब दुखी होता है तो रोना चाहता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सिसक सिसक कर रो लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। अगर आपने गौर किया होगा कि अगर किसी की मृत्यु होती है, उसका कोई करीबी अगर नहीं रो रहा है तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है, नहीं तो वो अपने सेंस में, अपने होशो हवास में नहीं रहेगा और पागल हो सकते हैं। तो इंसान की जिंदगी में दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द की भी एक अदा है, वो भी सहने वालों पे फिदा है, सबके पास नहीं जाता। जो जानता है कि हम सह लेंगे उसके पास जाता है। और इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत है साहब। मैं कहता हूं कि जहर की भी अपनी एक कीमत है, मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। अगर आपको मरना है तो जहर की कुछ बूंदें काफी हैं, लेकिन अगर जीना है साहब तो जिंदगी दर्द का दूसरा नाम है। और ऐसी स्थिति में हर इंसान रोना चाहता है। और आज के परिवेश में मुझे माफ करेंगे मेरे बड़े या जो मुझे सुन रहे हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम पर दोस्त होते हैं, फेसबुक पर दोस्त होते हैं, असल जिंदगी में शायद एक दो या तीन नाम आपके पास होगा जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सकें। शायद बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनके पास वो साना है, वो कांधा है कि हम यहाँ पर सर रखकर रो सकते हैं। चार्ली चैपलिन विश्व का शायद सबसे बड़ा कॉमेडियन, उनसे पूछा गया था कि आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बारिश में चलना पसंद है।
पूछा गया कि क्यों, व्हाई, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं बारिश में चलते हुए रोना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू न देख पाए। तो रुदन में बड़ा ही क्या शब्द का प्रयोग करूं मैं, तो अंदर से आप एकदम से लगता है कि हाँ, बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मुंशी प्रेमचंद की भी एक किसी कहानी में ये पंक्ति है कि रुदन में बहुत चार प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है विलाप, एक है प्रलाप, एक कलाप और एक अलाप, चार चीजें। चलो में थोड़ा सा अंतर है, विलाप वो होता है कि आप अंदर से दुखी हैं और आप रो रहे हैं, उसे विलाप कहते हैं। इंसान दुखी है अंदर से और रो रहा है, तो विलाप हो गया। दूसरा होता है प्रलाप। प्रलाप कहते हैं कि अंदर से आप न सुख की स्थिति में है न दुख की स्थिति में है, लेकिन अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं दुखी हूं और इसलिए रो रहे हैं, तो वो प्रलाप होता है। अब आप कहेंगे इसका कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, तो उदाहरण के बिना चीजें समझ में नहीं आती। तो लक्ष्मण जी को जब तीर लगा था और ये हुआ था हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो भगवान राम के लिए प्रसंग आता है कि प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकल, आई गयो हनुमान जिम करुणा महबीर रस। प्रभु प्रलाप, प्रलाप है अंदर से, तो जानते ही हैं कि वो आ रहा होगा, सब कुछ उन्हें पता है, ही नोज वेल, सब जानते हैं। तो वहां पर कवि ने प्रलाप शब्द का प्रयोग किया, विलाप नहीं। विलाप शब्द का प्रयोग अंग्रेजी का साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पीवी शैले की एक पोम पढ़ी, एक कविता पढ़ी, और उसका नाम ही है लैमेंट। तो उन्होंने कहा कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, When will return the glory of your prime? No more, oh, never more. अर्थात पीवी शैले ने अपनी जिंदगी का उरूज देखा था, मतलब एक क्रेज था उनका, एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट थे वो, किंग ऑफ लिरिक्स उनको कहा जाता था। और धीरे धीरे जिंदगी में ऐसा दौर आया कि जिसका भी अच्छा आया है समय, उसका थोड़ा सा बुरा समय आता है, विधि का विधान है। तो वो विलाप करते हैं, अंदर से दुखी हैं कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, वो कहते हैं वाह रे दुनिया, वाह रे वक्त, वाह रे जिंदगी, तीनों पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, आप कभी पढ़ सकते हैं, लैमेंट उनकी एक कविता है। ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिंदगी के मैं सबसे निचले पायदान पर खड़ा हूं, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जब मैं ये सोचता हूं कि मैं कहां पर था और अब मैं आज कहां पर हूं, तो फिर मेरी अंतरात्मा से प्रश्न पूछता हूं कि मेरी जिंदगी का वो दौर कब आएगा, और अंदर से उत्तर आता है नो मोर, ओह नेवर मोर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिंदगी, ईश्वर ने सबको सब कुछ बहुत मात्रा में दिया, धन, बंगला, गाड़ी, दुनिया में सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज जो नहीं दी वो दिया समय। जो समय गया वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आया, वो नहीं लौटेगा। आप सबने सुना होगा जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा, तो कहीं कहीं
दौर होता है साहब। तो राहत इंदौरी साहब भी एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक। हाँ, तो भी विलाप और प्रलाप हुआ। कलाप क्या होता है? जब आप अंदर से सुखी हो और बाहर से दुखी होने का नाटक कर रहे हो तो वो कलाप होता है। अंदर से खुश हैं कि चलो, अरे उनके बेटे की जॉब लगनी थी, नहीं लग पाई, उनका बेटा 3 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, कंपटीशन नहीं निकला, अच्छा हुआ। मन में सोचते हैं अच्छा हुआ, लेकिन बाहर कहते हैं अरे जानकर बहुत दुख हुआ कि 1 नंबर से रह गया। और ये आपके अपने लोग होंगे जो कलाप करते हैं, अंदर से सुखी हैं, बाहर से दुखी होने को दिखा रहे हैं, वो कलाप है। और चौथा होता है अलाप। जब भी आपने देखा होगा कोई संगीतकार होता है, वो अपना अलाप भरता है करके, तो उसको अलाप बोलते हैं। 4 चीज़ें हैं, विलाप, प्रलाप, कलाप, अलाप। उम्मीद है आपके समझ में 4 चीज़ें आई होंगी। हम अंदर से भी दुखी हैं और बाहर से बोल रहे हैं, दुख भी है तो वो विलाप है। अंदर से कोई चीज़ नहीं है, कुछ भाव शून्य है, न सुख है न दुख है, फिर भी रो रहे हैं तो वो प्रलाप है। अंदर से सुखी हैं, बाहर से रोने का नाटक कर रहे हैं तो वो कलाप है। और संगीत की दुनिया में जो हम आते हैं तो अलाप होता है। जी हाँ, हमारे साथ इट्स कुमार जी हैं। जी क्या कहा है? रोना नहीं आता सर, भूल गए हैं, कितना भी दर्द हो, सैड कितने भी हो, लेकिन ये जरूरी है। जी देवसेना जी, पता नहीं कौन है, चलिए भाई जय महेश्वति श्रीमान। हमारे राज्य महर्षि में लोग अलाप गाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो गाएंगे ही गाएंगे गाएंगे, तो वो एकदम अलाप ही है। तो इन 4 प्रकार का लाप अपनी ज़िंदगी में होता है। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और फिर मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पास। सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए। और जी हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी आपका स्वागत करते हैं, और आपने हमारा किया स्वागत और हमने आपका स्वागत किया, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का स्वागत करते हुए आइए सुनते हैं एक प्यारी सी गज़ल।

एक टूटा हुआ शीशा हूँ सजा कर रख लो। जी हाँ, अनूप जलोटा जी की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल सुनी आपने। बात हम कर रहे हैं राहत इंदौरी की। हमारे यहाँ भाई धर्मेंद्र मोहन जी हैं। सर जी नमस्कार, मैं एक दीवाना हूँ, बाहर गजल में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, और हम दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। आपकी एक नज़र पड़ गई, बहुत अच्छा है। जी हाँ, मुस्तफ़ा सऊदी जी हैं। गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या, आदाब आपको, कैसे हैं आप? देव सेना जी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, तो कहिए दानव सेना नहीं है। और सर जी, आपकी वो आपकी चॉइस से मेरी चॉइस मिल जाती है, आपको धन्यवाद। और मैं मुझे बहुत खुश हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आशु मिश्रा जी हैं भाई, प्रणाम करते हैं चरण स्पर्श, बहुत दिनों के बाद आपको देखा भाई, और उपस्थित थोड़ा सा रहिए तो। जी जी बिल्कुल सर जी, बहुत मज़ा आया है गज़ल सुन के, क्योंकि चॉइस चॉइस की बात है। जी हाँ, और मोहब्बत भरा घर चाहिए। जी बात कर रहे हैं राहत इंदौरी की। उन्होंने कहा कि दोस्ती जब किसी से की जाए, गहरी बात है, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। मौत का जहर है फजाओं में, मौत का जहर है फजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए। बस इसी सोच में हूँ डूबा हुआ, बस इसी सोच में हूँ डूबा हुआ, ये नदी कैसे पार की जाए। अगले वक्तों के जख्म भरने लगे, अगले वक्तों के जख्म भरने लगे, आज फिर कोई भूल की जाए। लफ्ज धरती पे सर पटकते हैं, लफ्ज धरती पे सर पटकते हैं, गुंबदों में सदा न दी जाए। कह दो इस शहद के बुजुर्गों से, देखिए दर्द देखिएगा, कह दो इस शहद के बुजुर्गों से जिंदगी की दुआ न दी जाए। बोतलें खोल के तो पी बरसों, बोतलें खोल के तो पी बरसों, आज दिल खोल करके पी जाए। क्या बात है। तो और वो इतना ही नहीं, वो घर के मुखिया पर भी बात करते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि वतन परस्ती पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों से सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो कानों में सुनाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो बहुत प्यारी प्यारी बात करने के बाद वो परिवार के मुखिया का दर्द भी बयां करते हैं। उन्होंने कहा कि सबकी नींदों में चले ख्वाबों में शामिल हो जाए, सबकी नींदों में चले ख्वाबों में शामिल हो जाए, लोग सोए हैं चलो शहर में दाखिल हो जाए। कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं, उसकी कोशिश है कि हम उसे मुफ्त में हासिल हो जाएं। और अब दर्द देखिएगा कि ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाएं। जी हाँ, तो ये साहब परिवार के मुखिया का दर्द है। सर जी आपका साथ, सब साथ मिल जाए तो बेशक कोई नाथ ना रहे, कोई नाथ है भी नहीं, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं।
तो अनाथ कोई नहीं, खग मृग बसत रोग बन हरि अनाथ के नाथ। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अनाथ कोई नहीं है साहब इस दुनिया में, सबके साथ ऊपर वाला है, सबके साथ है और सब कुछ देख रहा है। जी ये सुनाते हैं एक तरह से गजल आपको, और जब बात बिखरने की हुई है तो चलिए थोड़ी सी बिखरन आपको और।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है बाहर ए गज़ल, ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका अपना पर्दा। मैं हूं आपकी फेवरेट वाली होस्ट उन्नति।
1: और मैं आयुषी।
0: आयुषी, आज का टॉपिक क्या है? तुमने कहा था तुम कुछ बहुत बड़ा लेकर आने वाली हो।
1: हाँ यार, मैंने कहा था, और आज मैं एक ऐसी चीज लाई हूँ जो सुन के तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी।
0: अब बता भी दो, तुम हमेशा ऐसे सस्पेंस क्रिएट करती हो। डायरेक्ट बताया करो क्या है।
1: ठीक है, तो सुनो, दुनिया में इल्यूमिनाटी का नाम सुना है?
0: हाँ, वो सीक्रेट सोसाइटी वाला हॉलीवुड मूवीज में अक्सर देखा है मैंने।
1: हाँ वही। अब भूल जाओ उसको।
0: क्यों? मतलब
1: ये कि जो मैं आज बताने वाली हूँ ना, वो इल्यूमिनाटी से 1000 गुना पुरानी है, 1000 गुना पावरफुल है, और 1000 गुना इंटरेस्टिंग है, और सीधा हमारे अपने देश से कनेक्टेड है।
0: अपने देश से, इंडिया से?
1: इंडिया से, भारत से, और अपने प्यारे देश से।
0: यार अब तो सीरियसली बता ही दो, क्या है ये?
1: देखो, इसका नाम है द 9 अननोन मैन।
0: 9 अननोन मैन, 9 अजनबी आदमी, ये क्या है? मतलब ये 9 लोग हैं कौन, और इन्हें अननोन क्यों कहा जाता है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ।
1: हाँ यार, ये पहली बार ही सुनी होगी। ये वो चीज है जो मेन स्ट्रीम में बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी है, आज तक एग्जिस्ट करती है, और इसको बनाया था एक ऐसे शख्सियत ने जिसका नाम तुमने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, जिसको पूरा इंडिया जानता है।
0: पूरा इंडिया जानता है, मैंने स्कूल में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। तुम बताओ कौन है?

0: सम्राट अशोका।
1: रुको, अशोका? हिस्ट्री वाले अशोका?
0: जी
1: वही लायन कैपिटल वाले?
0: वही अशोका, मौर्य वंश वाले, वही चक्र वाले।
1: यार ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वो एक राजा थे ना, बुद्धिस्ट थे, अहिंसा में बिलीव करते थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी की अखाक बनाई होगी।
0: हाँ, और यही तो पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो बुद्धिस्ट क्यों बने? उस एक मोमेंट ने ही ये सब स्टार्ट कराया था, और वो मोमेंट इतना पेनफुल था, इतना डिवास्टेटिंग था कि सच में आंखें भर आती हैं।
1: अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ?
0: तो सुनो, पूरी कहानी सुनाती हूँ मैं तुम्हें एकदम शुरू से, और बीच में जो भी पूछना हो पूछती रहना, ठीक है?
1: बिल्कुल।
0: देखो, तो इमेजिन करो कि ये है आज की रफली 2300 साल पहले का जमाना, 261 BCE के आसपास का। भारत में मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोका का दादा था, उन्होंने इस एम्पायर की नींव रखी थी। फिर बिंदुसारा आए, जो अशोका के पिताजी थे, और फिर अशोका की बारी आई।
1: हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ये तो बेसिक हिस्ट्री है, ये मैं जानती हूँ, स्कूल में भी पढ़ा था।
0: अच्छा, तो ये बताओ कि अशोका कैसा राजा था शुरू में? अच्छा था या फिर बुरा?
1: अच्छा ही था, धर्म अशोका बोलते हैं उसे, ऑब्वियसली अच्छा ही था ना, तभी तो उसे ग्रेट अशोका कहते हैं।
0: गलत।
1: क्या सच में?
0: मतलब आधा गलत। शुरू में अशोका बिल्कुल अलग इंसान था, बहुत बहुत अलग। इतना एग्रेसिव था, इतना रूथलेस था कि लोग उसे चंद्र अशोका बुलाते थे।
1: चंद्र अशोका, ये क्या होता है?
0: चंद्र अशोका, अशोका द फियर्स, अशोका द क्रूएल। वो एक तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस राजा था। उसने अपने भाइयों को खुद ही मारा था, सिर्फ इसीलिए कि उसे ताज पहनना था, कोई कंपटीटर ना हो और कोई चैलेंज उसे ना कर सके।
1: ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ये स्कूल में किसी ने पढ़ाया ही नहीं।
0: हाँ यार, ये वो एंगल है जो हम स्कूल में कभी नहीं पढ़े। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक साइड दिखती है, लेकिन अशोका की पूरी लाइफ एक यू टर्न है। पहले वो था एकदम क्रूएल, फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल बदल गया, और वो चीज जो हुई वो वही थी कलिंगा का युद्ध।
1: कलिंगा, ये कहाँ है?
0: आज का ओडिशा। तो देखो, अशोका के टाइम में ऑलमोस्ट पूरा भारत उसके कंट्रोल में था, लेकिन एक जगह थी जो स्टिल इंडिपेंडेंट थी, वो थी कलिंगा। और अशोका को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था। उसकी सोच थी कि पूरा मैप पर सिर्फ उसी का फ्लैग होना चाहिए, कोई कॉर्नर भी ऐसा ना बचे जो उसके राज के अंदर ना आता हो।
1: तो उसने अटैक कर दिया कलिंगा पर।
0: उसने अटैक किया अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी सेना लेकर, और जो युद्ध हुआ उन्नति, वो युद्ध इतिहास का सबसे खूनी युद्ध में से एक था। 1,00,000 लोग, सोचो एक पल के लिए कि 1,00,000 इंसान सिर्फ उस एक युद्ध में सीधा मारे गए, एक मैदान में मरे पड़े थे।
1: 1,00,000? यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 1,00,000 मतलब कितने घर बर्बाद हुए होंगे।
0: और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बचे वो वाउंडेड थे, जो पकड़े गए, जो हार गए, 1,50,000 से भी ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए। 1,50,000 अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपनी जमीन छोड़कर बंदी बन गए।
1: यार ये सुनकर ही ना मेरा दिल भारी हो जाता है, सच में।
0: अब इमेजिन करो एक सीन, अशोका खुद उस मैदान में खड़ा है विजेता की तरह। उसने वो सब पाया जो चाहता था, कलिंगा उसका हो गया, पूरा भारत उसका हो गया, जीत गया वो। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो क्या था उन्नति?
1: बर्बादी ही बर्बादी होगी ना,
0: पूरी तरह से बर्बाद। खून, लाशें, जली हुई बस्तियां और रोती हुई माएं जिनके बेटे भी नहीं रहे, बच्चे जो अपने बाप को ढूंढ रहे हैं, भाग भाग के इधर उधर बस अपने पिता को ढूंढते हैं, बूढ़े लोग जो अपनी जिंदगी की सारी कमाई, अपना घर, अपना सब कुछ मिट्टी में मिला हुआ देख रहे हैं। और अशोका, जो इतना खतरनाक था, जो चंद्र अशोका था, वो उस मैदान में खड़ा नहीं रह पाया।
1: मतलब टूट गया अंदर से।
0: बिल्कुल टूट गया, कंप्लीटली। और उस एक पल में, उस एक मोमेंट में, उस इंसान ने डिसाइड किया कि वो कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा, कभी भी नहीं। उसने हथियार रखे हमेशा के लिए और कसम खाई कि अब मैं सिर्फ धर्म की राह पर चलूंगा, सिर्फ अहिंसा, सिर्फ

0: है। ओ वाओ, तो एक्चुअली अशोका की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ये यही थी, और वो आज भी हमारे साथ है हमारे फ्लैग में।
1: सोचो कितना डीप कनेक्शन है, लेकिन उन्नति अब यहां से स्टोरी एक दूसरा डायरेक्शन लेती है।
0: अशोका का बुद्धिस्ट बनना और सीक्रेट सोसाइटी, ये कनेक्शन कहाँ से आया?
1: तो देखो, जब अशोका ने बुद्धिज्म अपनाई और दुनिया भर के ज्ञानी से मिलना शुरू किया, उनके दरबार में, मंदिरों में, सफरों में, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक ज्ञान बिखरा हुआ है।
0: मतलब कैसा ज्ञान?
1: मेडिसिन में ऐसा ज्ञान था जो आज भी हम पूरा डिकोड नहीं कर पाए। सर्जरी में ऐसी टेक्निक थी जो मॉडर्न डॉक्टर्स भी देख के हैरान हो जाएं। विज्ञान में ऐसी थ्योरीज थी जो न्यूटन से हजारों साल पहले थी। राजनीति में ऐसी वॉर स्ट्रेटेजीज थी जो किसी भी सेना को हराने की ताकत रखती थी। माइंड कंट्रोल, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ इतना पावरफुल नॉलेज था जिससे कि अशोका डर गए।
0: डर गए, नॉलेज से डर गए।
1: नॉलेज से नहीं, उस नॉलेज के गलत इस्तेमाल से डर गए। उन्हें थिंक अबाउट इट, अशोका खुद एक योद्धा थे। उसने खुद देखा था कि एक पावरफुल किंग क्या क्या कर सकता है। कलिंगा में उसने खुद वो तबाही मचाई थी, तो वो सबसे बेहतर जानता था कि अगर ये एडवांस नॉलेज, ये सुपर ह्यूमन ज्ञान अगर किसी और एम्बिशियस, किसी और रूथलेस इंसान के हाथ लग गया,
0: तो फिर वो तो और भी बड़ा कलिंगा हो जाता, या फिर उससे भी बड़ा कुछ और।
1: बिल्कुल पूरी सिविलाइजेशन एंड हो सकती थी, और अशोका ने ये रिस्क नहीं लेना था। लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहता था कि ये ज्ञान खो जाए, क्योंकि ये ज्ञान ह्यूमैनिटी के काम आ सकता था सही हाथों में। तो उन्होंने एक ऐसा प्लान सोचा जो आज भी अगर सच है तो चल रहा है।
0: क्या प्लान था?
1: उन्होंने पूरे ज्ञान को 9 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 9 किताबें, हर किताब में एक अलग डोमेन का नॉलेज था। और फिर उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में से 9 ऐसी हस्तियां चुनी जो अपने अपने फील्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स थे, सबसे काबिल लोग, और हर एक एक को किताब दे दी।
0: तो 9 लोग, 9 किताबें, और इसीलिए 9 अननोन मैन।
1: नौ अज्ञात पुरुष और एक रूल, एक ऐसा नियम जो इस पूरी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है।
0: क्या रूल था?
1: रूल ये था कि सोसाइटी हमेशा हमेशा सीक्रेट रहेगी। कोई तुम्हारा नाम नहीं जानेगा पब्लिकली, कोई तुम्हारी तस्वीर नहीं होगी, कोई तुम्हारा क्रेडिट नहीं लेगा, कोई तुम्हारा इतिहास नहीं लिखेगा। तुम एनोनिमसली काम करोगे हमेशा, और जब कभी तुम मरने वाले हो या रिटायर होने वाले हो तो तुम्हारा एक ही काम है, खुद से भी ज्यादा एक काबिल इंसान ढूंढना, उसे ट्रेन करना, उसे वो किताब सौंपना, और फिर वो अलग ले जाएगा।
0: यार ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब ये चेन 2300 सालों से यूं ही चली आ रही है।
1: एलिजेटली हाँ, और ये सिर्फ एक रैंडम क्लेम नहीं है उन्नति, इस थ्योरी को सीरियस लेने वाले लोग हैं, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो बिना इस थ्योरी को एक्सप्लेन ही नहीं होती और कुछ ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो बिना इस थ्योरी के एक्सप्लेन ही नहीं होती।
0: अच्छा क्या चीजें, कोई एग्जांपल दो।
1: अभी देती हूँ। पहले मुझे ये बताने दो कि वो 9 लोग कौन थे, क्योंकि वो नेम सुन के तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
0: जल्दी बोलो, मैं तो कब से वेट कर रही हूं।
1: तो सुनो, पहला नाम था चरक।
0: चरक, ये कौन थे?
1: चरक एक ऐसे महान चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर। उन्हें मेडिसिन की किताब दी गई थी। इनकी लिखी हुई चरक संहिता, ये आज भी आयुर्वेदा की एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो सोचो, 2000 साल पहले एक आदमी था जिसके पास मेडिकल नॉलेज इतनी एडवांस थी कि आज भी रिलेवेंट है।
0: वाओ, ठीक है। दूसरा?
1: दूसरे थे चाणक्य।
0: चाणक्य, अर्थशास्त्र वाले चाणक्य।
1: वही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। उन्हें वॉरफेयर और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज की किताब दी गई थी। और उन्नति, चाणक्य की इंटेलिजेंस के बारे में तो तुम भी जानती ही होगी। उन्होंने जो स्ट्रेटेजी सोची थी वो आज भी MBA कॉलेजेस में

0: पढ़ते हैं बच्चे।
1: हाँ यार, चाणक्य को तो मैं जानती हूँ, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल थे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चाणक्य तो अशोक के दादा के टाइम पर थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ।
0: हाँ, और यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो 9 नेम्स हैं, इनमें से कुछ अशोका के एग्जैक्ट टाइम के नहीं थे, कुछ पहले के थे, कुछ बाद के थे। थ्योरी के हिसाब से ये सब एक एक करके इस चेन में आए। कोई फाउंडिंग मेंबर था, कोई बाद में ऐड हुआ, क्योंकि ये एक लिविंग ब्रीदिंग सोसाइटी थी जो टाइम के साथ इवॉल्व करती जा रही थी।
1: अच्छा, ओके, ये समझ में तो आ गया। अब ये बताओ आगे क्या हुआ।
0: आगे तीसरा नाम, देखो तीसरा नाम था सुश्रुता।
1: सुश्रुता, ये नाम तो सुना हुआ लगता है।
0: हाँ, सुश्रुता को दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है। सर्जरी की किताब उनके पास थी। इनकी सुश्रुता समिता में इतना एडवांस सर्जिकल टेक्निक थी कि मॉडर्न डॉक्टर्स आज भी दंग रह जाते हैं ये पढ़ के। राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी सुश्रुता ने 600 BCE में की थी। ये कंसेप्ट मॉडर्न मेडिसिन में बहुत बाद में आया है।
1: यार ये तो सीरियसली अमेजिंग है, 600 BCE में नाक की सर्जरी।
0: हाँ, और ये सिर्फ नाक नहीं, कैटरैक्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब सुश्रुता के टेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेड है। अब बताओ ये नॉलेज कहाँ से आई, कोई एक इंसान इतना कैसे जानता था?
1: यार ये सुन के तो सच में लगने लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो बहुत बड़ा है। आगे बोलो।
0: चौथा नाम वो था आर्यभट्ट।
1: आर्यभट्ट, ये तो मैं जानती हूँ, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने।
0: जीरो और बहुत कुछ। उन्होंने बताया था कि अर्थ गोल है, उन्होंने बताया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, पाई की वैल्यू कैलकुलेट की, सोलर ईयर की कैलकुलेशन की। ये सब तब जब दुनिया के बाकी लोग ये सोच रहे थे कि जमीन फ्लैट है और सूरज जमीन के चारों तरफ घूमता है।
1: यार आर्यभट्ट तो अपनी टाइम से 1000 साल आगे थे।
0: एग्जैक्टली और थ्योरी के हिसाब से ये सब ज्ञान कहाँ से आया? उस किताब से जो अशोका ने उन्हें उनके प्रेडिसीजर्स को दी थी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की किताब।
1: ओके, कौन है आगे?
0: पांचवा, और पांचवा है नागार्जुन।
1: नागार्जुन, ये साउथ वाले नागार्जुन, ये उस जमाने में भी थे?
0: अरे नहीं, वो सुपरस्टार नागार्जुन नहीं, ये उस जमाने की एक बहुत ही महान रसायनी थे, मतलब एल्केमिस्ट। उनके पास एल्केमी की किताब थी। इनके बारे में कहा जाता है ये धातु को सोने में बदल सकते थे। अब ये सच था या नहीं, ये अलग अलग डिबेट है, लेकिन ये तो पक्का है कि नागार्जुन की केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एडवांस थी अपने टाइम में।
1: धातु को सोने में, यार ये तो हैरी पॉटर जैसी बात हो गई।
0: हाँ यार, लेकिन एल्केमी का कंसेप्ट सिर्फ फैंटेसी नहीं था, ये रियल लाइफ साइंटिफिक परस्यूट था। और नागार्जुन ने जो मेडिसिनल कंपाउंड बनाए वो आज भी आयुर्वेदा में यूज होते हैं।
1: ओके, और अब मुझे इंटरेस्ट और भी ज्यादा, अब मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आगे कौन था?
0: छठे थे पतंजलि।
1: पतंजलि, योगा वाले, यही बाबा रामदेव?
0: नहीं, वो नहीं, ये थे योग सूत्र लिखने वाले पतंजलि। उन्होंने माइंड और योगा की किताब दी थी। अब ये सोचो, योगा आज दुनिया में कितना पॉपुलर है, बिलियंस ऑफ पीपल योगा करते हैं, और ये सब एक इंसान की नॉलेज का एक्सटेंशन है। और थ्योरी कहती है कि ये नॉलेज एक सीक्रेट चेन का हिस्सा था।
1: ये एक्चुअली मुझे पता था कि पतंजलि वही होंगे। वेल, यार ये कनेक्शन तो और भी ज्यादा डीप होता जा रहा है, मतलब ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा।
0: हाँ, और सातवां था वराहमिहिरा।
1: इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम जो मुझसे बोला नहीं जा रहा, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं।
0: वराहमिहिरा एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष विद्या और कॉस्मोलॉजी इनके पास थी। इन्होंने पंच सिद्धांतिक लिखा था जिसमें 5 अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम का कंप्लीशन था। ये टेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि सेंचुरीज तक एस्ट्रोनॉमर्स इससे रेफरेंस की तरह यूज करते थे
1: और शायद आज भी करते हो। फिलहाल आठवां नंबर किसका था?
0: आठवां नंबर था विष्णु शर्मा का।
1: विष्णु शर्मा, ये तो हमारे जमाने के लग रहे हैं।
0: लेकिन ये हैं पंचतंत्र वाले विष्णु शर्मा। इन्हें लिटरेचर और स्टेटक्राफ्ट की किताब दी गई थी। और पंचतंत्र वो छोटी छोटी एनिमल स्टोरीज, वो सिर्फ बच्चों की कहानियां ही नहीं थी, उन्हें थी उनमें गवर्नेंस का सीक्रेट है, डिप्लोमेसी के लेसन हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप इनसाइट है।
1: यार सच में मैं तो बचपन में पंचतंत्र सुनती थी, पढ़ती थी, बट कभी सोचा नहीं था इसका मीनिंग इतना डीप निकलेगा जाकर के।
0: हाँ यार, ये तो सब सरफेस है, अंदर क्या है वो समझने में जिंदगी लग जाती है। और नौवा और लास्ट इंसान है बुद्ध धर्मा।
1: बोधि धर्मा का नाम मैंने सुना है, चाइना टू चेन्नई फिल्म में सुना था।
0: अरे नहीं, वो नहीं है, ये थोड़े से अलग है। बुद्ध धर्मा एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे। ये एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो चाइना गए थे,
1: और मुझे पता है इन्होंने मार्शल आर्ट सिखाया था।
0: वो तो आगे की कहानी में पता चलेगा, चलो मैं इसके आगे तुम्हें बताती हूँ। और वहाँ इन्होंने जेन बुद्धिज्म की नींव रखी थी, और साथ में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने मार्शल आर्ट्स भी डेवलप किया है जो बाद में कुंग फू के आधार बना है।
1: देखा, मैंने कहा था ना मैं इनके बारे में तो जानती हूँ।
0: अच्छा चलो, तुम ही ठीक गई।
1: चलिए अब ये बताओ, अब इन सब की थ्योरी क्या निकल रही है?
0: देखो, थ्योरी के हिसाब से उसकी रूट एक इंडियन मॉन्क से है, बुद्ध धर्मा, जो चाइना के शॉलिन टेम्पल में गए थे। वहां के मॉन्क इतने फिजिकली वीक थे कि मेडिटेशन भी नहीं कर पाते थे, तो बुद्ध धर्मा ने उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी और वही ट्रेनिंग इवॉल्व होके शॉलिन कुंग फू बनी।
1: यार मेरा दिमाग घूम चुका है, मतलब ये 9 लोग, डॉक्टर, स्ट्रेटजिस्ट, सर्जन, मैथमेटिशियन, एल्केमिस्ट, योगी, एस्ट्रोनॉमर, राइटर, मार्शल आर्टिस्ट, ये सब एक ही सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडर मेंबर्स थे।
0: अगर थ्योरी सच है तो थे,
1: और ये सब अशोका ने चूज किए थे।
0: अशोका ने शुरू किया, फिर एक चेन चलती गई, हर मेंबर अपना सक्सेसर चूज करता गया, और ये चेन आज भी एजेडली चल रही है।
1: आयुषी, ये सब सुन के ना मेरे दिमाग में एक सवाल है, पूछू?
0: पूछ लो, तुम कौन सा चुप्पी होने वाली हो।
1: ये सोसाइटी करती क्या थी? सिर्फ ज्ञान छुपाती थी या देती भी थी, मतलब कुछ और भी करती थी?
0: बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सिर्फ छुपाना नहीं था काम, काम था दुनिया को बचाना। जब भी कोई ऐसा मोमेंट आता था कि ये खतरनाक नॉलेज गलत हाथों में जाने वाली थी, ये इस सोसाइटी बीच में आ जाती थी। जब भी कोई ऐसा साइंटिफिक थ्योरी होने वाली थी जो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस थी, ये लोग पहले से वहां थे, साइलेंटली काम करते हुए। कोई क्रेडिट नहीं, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं, बस काम।
1: ये तो किसी सुपर हीरो मूवी का प्लॉट ट्विस्ट लग रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ में है।
0: हाँ, और उन्नति इस बात का एविडेंस भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस थ्योरी को सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहने देती।
1: क्या एविडेंस है? और अब तो मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है।
0: तो ये सुनो, पहला एविडेंस, कोनार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, जो सूर्य मंदिर है, वहाँ एक चक्र है, और उस चक्र में 8 तीलियां हैं जो सेंटर से जुड़ी हुई हैं। 8 के साथ एक सेंटर, कुल 9 संख्या। थ्योरी कहती है कि ये 9 अननोन मेन का सिंबल है।
1: अच्छा, तो टेम्पल में छुपा के रखे थे सारे सिंबल?
0: हाँ, इन प्लेन साइट, जो जानता है वो समझे, जो नहीं जानता वो बस टेम्पल देखे। और दूसरा एविडेंस, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पता है क्या?
1: क्या?
0: गंगा नदी।
1: गंगा, वो कैसे?
0: उन्नति एक फ्रेंच राइटर थे, लुई जैकोलाई। 19th सेंचुरी में वो इंडिया आए थे, जज की पोजीशन पर चंद्रनागौर में, और उन्होंने इंडिया में बहुत वक्त बिताया, बहुत रिसर्च की, और उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा कि गंगा नदी में लाखों लोग रोज नहाते हैं, पूजा करते हैं, लाशें भी बहाई जाती हैं कुछ जगह, लेकिन गंगा का पानी कंटेमिनेट नहीं होता। थ्योरी कहती है कि 9 अननोन मेन ने गंगा के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है जो पानी को हमेशा प्योरीफाई करती रहती है, रेडिएशन बेस्ड है, जो आज भी काम कर रही है।
1: यार ये सोच के ना गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब 2000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी एक्टिव है और हम जानते भी नहीं, और हम बस गंदगी फैला रहे हैं।
0: और अभी तक साइंस भी इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। बैक्टीरियोफेजेस एक रीजन है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियोफेजेस से गंगा जैसी नदी इतनी यूनिक नहीं होती, और भी कुछ जरूर है। क्या है वो अभी भी मिस्ट्री है।
1: ठीक है, अब एक और सवाल है, ये जो 9 किताबें थी, उनमें क्या था एग्जैक्टली? मतलब कुछ तो डिटेल में बताओ यार, 9 बुक्स में 9 टॉपिक, वो कौन से टॉपिक थे? 9 बुक्स में क्या सिर्फ 9 ही टॉपिक थे?
0: बिल्कुल, तो ये सुनो तुम ध्यान से। पहली किताब थी प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वेलफेयर, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर।
1: प्रोपेगेंडा मतलब लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना।
0: हाँ, ये किताब स्पेसिफिकली इस बारे में थी कि कैसे मासेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है, कैसे एक आइडिया को इतने पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि लोग उसे अपनी ओन सोच समझने लगते हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया पे जो होता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रोपेगेंडा होता है, वो सब इस साइंस का ही एक छोटा सा हिस्सा है।
1: यार ये तो बहुत डेंजरस नॉलेज है।
0: बहुत डेंजरस, इसीलिए अशोका ने इसे छुपाया। दूसरी किताब थी फिजियोलॉजी, मतलब ह्यूमन बॉडी का ज्ञान, लेकिन इस लेवल पर कि सिर्फ हाथ लगाने से किसी को मारा जा सकता है या ठीक किया जा सकता है।
1: सिर्फ हाथ लगाने से? ये तो सुपर नेचुरल लगता है।
0: सुपर नेचुरल नहीं, हाइपर एडवांस साइंस, ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट का एक ऐसा ज्ञान जो आज की मॉडर्न मेडिसिन भी एक्सप्लोर कर रही है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये सब उसी बड़े ज्ञान का छोटे छोटे हिस्से हैं। असली किताब में क्या था वो अभी भी हिडन है।
1: और तीसरी किताब?
0: तीसरी किताब थी माइक्रोबायोलॉजी, स्पेसिफिकली इवो माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इतना डीप ज्ञान कि उन्हें कंट्रोल किया जाए, डिजीज क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना। ये वो नॉलेज है जो आज भी बायो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न है।
1: यार ये तो सीधा बायो वेपन की बात हो गई।
0: एग्जैक्टली, और इसीलिए सबसे डेंजरस किताब में से एक ये मानी जाती है। अगर ये नॉलेज गलत लोगों के हाथ लग जाए तो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन खतरे में है।
1: यार सुन के सोच के ना बहुत ज्यादा डर लगता है कि अगर किसी के हाथ में ऐसी पावर होगी तो इसका इस्तेमाल वो कहाँ कहाँ करेगा।
0: डर लगना जायज है, लेकिन समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चौथी किताब है एल्केमी, मतलब मैटर को फंडामेंटली चेंज करने की साइंस, जो आज न्यूक्लियर फिजिक्स करने की कोशिश करती है। एटम्स को स्प्लिट करना, वो उस किताब का एक एंगल था।
1: मतलब नागा अर्जुन जो करते थे वो एक्चुअली न्यूक्लियर लेवल का काम था।
0: उस जमाने की लैंग्वेज में तो हाँ। और पांचवी किताब थी कम्युनिकेशन, लेकिन ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन नहीं, ये थी एक्स्ट्रा सेंसरी कम्युनिकेशन, मतलब बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी फिजिकल मीडियम के एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। आज हम इसे टेलीपैथी कहते हैं और डिसमिस कर देते हैं, लेकिन थ्योरी कहती है कि ये एक रियल साइंस है जिसे डेलिबरेटली सप्रेस किया गया है।
1: सिक्स सेंस वाली बात,
0: शायद उससे भी आगे। और छठी किताब है ग्रेविटी, ग्रेविटेशन का ऐसा ज्ञान जो न्यूटन से हजारों साल पहले था, और सिर्फ समझना नहीं उसे यूज भी करना। एंटी ग्रेविटी, लेविटेशन, ये चीजें जो आज साइंस फिक्शनल लगती हैं, वो उस किताब का हिस्सा था।
1: यार ये सब सुन के तो लगता है कि हम एक्चुअल में बहुत पीछे हैं। जो 2000 साल पहले जाना जाता था वो आज भी हम पूरा नहीं जानते।
0: हाँ, और शायद काफी लोग अभी यही सोच रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सातवीं किताब की, जो थी कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स का ज्ञान, स्पेस का ज्ञान, टाइम का ज्ञान। आर्यभट्ट ने जो किया, जो वरहमीरा ने किया, वो सिर्फ बिगनिंग थी। असली किताब में क्या था वो सोचते हैं तो दिमाग घूम जाता है।
1: और आठवीं,
0: लाइट की स्पीड, लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट को वेपन की तरह यूज करना। आज हम लेजर यूज करते हैं ना सर्जरी में, आज हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, वो सब उस किताब का एक बहुत छोटा पार्ट है। असली नॉलेज में लाइट को इतने पावरफुल तरीके से हार्नेस किया जा सकता था कि दुनिया बदल जाए या फिर खत्म हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें थी।
1: और नौवीं, लास्ट किताब के अंदर क्या था?
0: लास्ट किताब थी सोशियोलॉजी, लेकिन इस लेवल पर कि सोसाइटीज कैसे बिहेव करती है, सिविलाइजेशन कैसे राइज और फॉल होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन को डेलिब्रेटली एक डायरेक्शन में ले जाया जाए बिना उन्हें पता लगाए।
1: यार ये तो सबसे ज्यादा डेंजरस लगा मुझे, मतलब पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बिना उन्हें पता लगे।
0: और इसीलिए अशोका ने स्पेसिफिकली ये किताब छुपाई, क्योंकि अगर किसी एम्बिशियस रूलर को ये मिल जाए तो वो लिटरली पूरी दुनिया का मास्टर बन सकता था, बट साइलेंटली।
1: आयुषी, एक चीज पूछनी है।
0: अच्छा पूछो।
1: ये सब सुन के एक सवाल है जो बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: बोलो।
1: ये सोसाइटी जो इतनी पावरफुल है, जिनके पास इतना ज्ञान है, ये आज कहाँ है? आज के टाइम में क्या कर रही है? कोई तो होगा ना जो अभी भी इन किताबों का गार्डियन हो?
0: ये तो सबसे बड़ा सवाल है और ऑनेस्टली कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि कौन है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सजेस्ट करती हैं कि ये चेन आज भी कहीं ना कहीं चल रही है।
1: क्या चीजें?
0: सोचो, दुनिया में आज भी कुछ ऐसी डिस्कवरीज होती हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होती हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो सडनली आती हैं और कोई नहीं जानता एग्जैक्टली कहाँ से आई। अब मैं तुम्हें मॉडर्न इंडिया का कनेक्शन बताती हूँ जो इस पूरी थ्योरी को एक नया एंगल देता है।
1: हाँ, मॉडर्न इंडिया मतलब आज के टाइम में भी ये सोसाइटी है कहीं?
0: थ्योरी कहती है हाँ, जब तुम 20th सेंचुरी के इंडिया का ग्रेटेस्ट माइंड को देखते हो एक साथ, तो कुछ ऐसा लगता है जो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो। शुरू करते हैं एक नाम से जो शायद थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगे। एक आदमी था जिनका नाम था एड्रोगेन डेमेलो।
1: एड्रोगेन डेमेलो, ये कौन थे? ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना।
0: यही तो इंटरेस्टिंग है, ये इंसान इतने ऑब्स्कर हैं, इतना अननोन है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं इन्हें, लेकिन जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि इस इंसान का IQ, इसका इंटेलिजेंस कोटेंट 400 से ऊपर था।
1: 400? यार आइंस्टाइन का IQ 160 था। 400 मतलब, ओ माय गॉड,
0: मतलब लिटरली ऑफ द चार्ट था, ह्यूमन स्केल से बाहर। लेकिन दुनिया में किसी को खास पता नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, कोई फेमस वर्क नहीं, कोई नोबेल प्राइज नहीं। एक इंसान जिसका IQ 400 था और फिर भी कम्प्लीटली एनोनिमिटी रहा।
1: यार ये तो सीधा 9 अननोन मैन वाली स्टोरी है, एनोनिमिटी, ज्ञान और कोई पहचान नहीं।
0: एग्जैक्टली। अब दूसरा नाम है और ये नाम तुम्हें पता होगा, डॉक्टर CV रमन।
1: ओ, रमन इफेक्ट वाले, नोबेल प्राइज विनर।
0: हाँ, भारत रत्न, फिजिक्स में नोबेल प्राइज, रमन इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग का फिनोमेनन जो उन्होंने डिस्कवर किया, वो आज भी फिजिक्स के एक फाउंडेशनल डिस्कवरी है। थ्योरी कहती है कि डॉक्टर CV रमन 9 अननोन में से एक मेंबर थे, फिजिक्स और लाइट से रिलेटेड नॉलेज के गार्डियन।
1: मतलब जो उन्होंने डिस्कवर किया वो ऑलरेडी उस किताब में था और उन्होंने सिंपली उसे वर्ड में रिवील कर दिया।
0: इस एंगल से सोचो तो शायद हाँ, या शायद वो नॉलेज की उस चेन का हिस्सा थे जो आर्यभट्ट ने शुरू की थी। सेंचुरीज बाद वो नॉलेज CV रमन के थ्रू दुनिया तक पहुंची।
1: ये कनेक्शन इतना डीप है कि अगर सोचा जाए तो सच में गूज़बम्स आ रहे हैं। आगे कौन?
0: अब एक नाम आता है जो सच में जब मैं इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में सोचती हूँ तो आंखें भर आती हैं।
1: आंखें भर आती हैं? कौन है वो?
0: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
1: मिसाइल मैन, हमारे प्रेसिडेंट, लोगों के प्रेसिडेंट।
0: हाँ, अब्दुल कलाम, वो इंसान जिसे पूरा भारत प्यार करता था, जो रात को बच्चों से मिलते थे, जो अपनी लग्जरी प्रेसिडेंट हाउस की जगह एक सिंपल लाइफ जीते थे, जो अपनी डेथ तक स्टूडेंट को इंस्पायर करते रहे।
1: उनका 9 मैन से क्या कनेक्शन था?
0: देखो, थ्योरीज कहती हैं कि अब्दुल कलाम स्पेसिफिकली डेलिब्रेटली एक जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और वो जिम्मेदारी थी दुनिया में और इंडिया में शांति बनाए रखना। वो मिसाइल साइंटिस्ट थे, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके हाथ में था। वो चाहते तो इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में ले जा सकते थे जहां वॉर हो जाता, लेकिन उन्होंने हमेशा पीस की बात की, हमेशा डेवलपमेंट की बात की। उनका पूरा एग्जिस्टेंस, उनका पूरा मिशन ये था कि डिस्ट्रक्शन की तरफ बिल्कुल मत जाओ, बिल्ड करो, क्रिएट करो।
1: ये सुन के और उन्हें याद करके सच में आंखें भर आती हैं। मतलब एक इंसान जिसके हाथ में वेपन्स थे, जिन्होंने फिर भी पीस को चूज किया।
0: और यही तो अशोका की सोच थी ना। अशोका ने वेपन्स छोड़े थे, अब्दुल कलाम के पास वेपन्स बनाने की नॉलेज थी, लेकिन उन्होंने उस नॉलेज का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया, पूरी लाइफ पीस के लिए काम किया। ये एक ऐसा पैरेलल है जो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता।
1: तुम सच बोल रही हो, दोनों की स्टोरीज में एक ही थीम है, पावर का पास होना और फिर भी चूज करना कि हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे।
0: और अब आता है एक और नाम, ये कहना चाहिए कि दो नाम, वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
1: ये दोनों तो बहुत बड़े नाम हैं, इसरो के फाउंडर साराभाई और भाभा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर।
0: हाँ, अब ये सोचो, ये दोनों लोग एक ही टाइम पर एक ही देश में दो सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे थे, स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। दोनों दुनिया की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजीज हैं, अगर गलत हाथों में चली जाएं तो सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। और थ्योरी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लेम करती है, इसरो के फाउंडिंग विक्रम साराभाई की विजन इतनी क्लियर थी, इतनी स्पेसिफिक थी कि लगता था जैसे उन्होंने किसी से गाइडेंस ली है, किसी ऐसी सोर्स से जो सेंचुरीज पुराना है। आर्यभट्ट की एस्ट्रोनॉमी की किताब और सेंचुरीज बाद साराभाई ने आर्यभट्ट के नाम पर ही सैटेलाइट लॉन्च की, इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट।
1: वाओ, ये तो मेरे दिमाग में अभी जस्ट क्लिक किया, पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट, जो 9 अननोन मैन में एक नाम है।
0: कोइंसिडेंस या कुछ और?
1: यार, अब मैं कहने से डरने लगी हूँ, कोइंसिडेंस नहीं लगता।
0: और होमी भाभा, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर, उनके बारे में भी एक बहुत मिस्टीरियस चीज है। उन्होंने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतनी स्पीड से डेवलप किया कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। और फिर होमी भाभा की डेथ भी मिस्टीरियस थी।
1: मिस्टीरियस? वो कैसे?
0: 1966 में उनका प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया फ्लाइट 101 मॉन्ट ब्लैंक के पास, स्विट्जरलैंड में एक ये जगह है। और आज तक उस क्रैश के बारे में कई सवाल उठाए जाते हैं। CIA इन्वॉल्वमेंट की बात भी कुछ रिसर्चर्स ने की है, कुछ लोग कहते हैं कि वो जानबूझकर खत्म किए गए हैं।
1: लेकिन क्यों, उन्हें क्यों खत्म किया जाता?
0: क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानते थे, और जो वो जानते थे वो कुछ लोगों को पता नहीं चलना चाहिए था। एग्जैक्टली वही जो पोप स्लाइवेस्टर के साथ हुआ था।
1: ये पैटर्न तो बहुत क्लियर है, जो बहुत ज्यादा जानता है वो ज्यादा देर नहीं रहता।
0: और अब मैं तुम्हें वो चीज बताती हूँ जो इस सब को एक और एंगल देती है, पोप स्लाइवेस्टर सेकंड।
1: हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गई थी कि ये थे कौन, ये पोप का क्या हुआ, पूरी कहानी बताओ।
0: तो ये बात है लगभग 10th सेंचुरी की, आज से रफली 1000 साल पहले। यूरोप में उस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोप था जिनका नाम था पोप स्लाइवेस्टर सेकंड। ये अपने जमाने के पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, म्यूजिक में, फिलोसफी में, ये इंसान हर चीज में एक्सपर्ट था।
1: तो लोग क्या सोचते थे इसके बारे में?
0: लोग कहते थे ये इंसान जादूगर है, शैतान का बंदा है, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना कैसे जान सकता है, इतनी सारी फील्ड में इतना डीप नॉलेज, ये पॉसिबल ही नहीं था लोगों की सोच में। अब सवाल ये है कि ये ज्ञान कहाँ से आया। एक बुक है द मॉर्निंग ऑफ मैजिशियंस, जो लुई पॉवेल्स और जैकीज बर्गायर ने लिखी है, बहुत फेमस बुक है। और उस बुक में ये क्लेम किया गया है कि पोप स्लाइवेस्टर सेकंड ने अपनी लाइफ में एक लंबी यात्रा की थी, और उस यात्रा में वो इंडिया आए थे।
1: पोप इंडिया आए थे 1000 साल पहले? यार, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है।
0: हाँ, और इंडिया में थ्योरी के हिसाब से उन्हें कुछ ऐसी हस्तियां मिली जो 9 अननोन में से कनेक्टेड थीं, और उन लोगों ने स्लाइवेस्टर को कुछ दिया, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी चीज जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती है। और स्लाइवेस्टर वो लेके यूरोप वापस गए, रोम पहुंचे, पोप बने, और उस नॉलेज की वजह से वो इतने पावरफुल हो गए कि पूरा यूरोप उनसे डरता था।
1: और फिर क्या हुआ उन्हें?
0: हाँ, फिर बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी ऑब्वियस रीजन के, वो मर गए मिस्टीरियसली। उनकी डेथ का कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री में नहीं है, और थ्योरी कहती है कि 9 अननोन मेन ने इंश्योर किया कि जो सीक्रेट था वो बाहर ना जाए।
1: स्टार्ट करो। यार, ये सुन के तो सीधा अंदर तक लगा, मतलब ये सोसाइटी जो इतनी अच्छी लगती थी वो इतनी डेंजरस भी थी।
0: यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्नति, सोसाइटी की नीयत बुरी नहीं थी, वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका एक काम था, एक मिशन था, और वो था ह्यूमैनिटी की रक्षा करना। अगर कोई उस डेंजरस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करने वाला था या अगर कोई उस नॉलेज को एक्सपोज करने वाला था तो सोसाइटी के बीच में वो आते थे। ये ब्रूटल था लेकिन इंटेंशनली ह्यूमैनिटी की रक्षा ही हो रही थी।
1: ये समझ में आता है, ग्रेटर गुड वाली सोच।
0: और एक और एविडेंस है जो इस थ्योरी को और सॉलिड बनाता है, वो है प्लेग, ब्लैक डेथ। 14th सेंचुरी में यूरोप की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी प्लेग की वजह से।
1: ये पढ़ा था मैंने, बहुत भयानक था।
0: बहुत भयानक। अब एक फ्रेंच साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर अर्सिन, उन्होंने प्लेग का एंटीडोट डिस्कवर किया। आज भी उस बैक्टीरियम का नाम एर्सिना पेस्टिस है, एर्सिना पेस्टिस है उन्हीं के नाम पर। लेकिन जब एर्सिन ये रिसर्च कर रहे थे तो इतिहास में रिकॉर्ड है कि वो इंडिया आए थे मद्रास में, और वहाँ कुछ खास लोगों से मिले, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज जिनके बारे में ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, और फिर वो वापस गए, उनका डिस्कवरी हुआ।
1: मतलब हर कोई इंडिया में आता है किसी ना किसी क्लू के लिए।
0: थ्योरी के हिसाब से वो 9 अननोन मैन के उस वक्त के मेंबर से मिले जो मेडिसिन की किताब के गार्डियन थे, चरखा के लाइनेज के लोग, और उन्होंने एर्सिन को एक डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन ने प्लेग का एंटीडोट बनाया और मिलियंस की लाइफ बचा ली।
1: रुको, ये सोच करना दिमाग घूम गया। मतलब अगर 9 अननोन मैन ना होते, अगर एर्सिन को वो क्लू ना मिलती, तो प्लेग का एंटीडोट और लेट आता और ज्यादा लोग मारे जाते।
0: शायद यही तो इस थ्योरी की डेप्थ है। ये सोसाइटी सिर्फ बैकग्राउंड में बैठ के देख नहीं रही थी, ये एक्टिवली साइलेंटली दुनिया को बचा रही थी, बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी रिकग्नाइजेशन के।
1: यार ये तो बहुत प्रोफाउंड है। मतलब इमेजिन करो, कोई ऐसा ग्रुप पूरी दुनिया की हेल्प कर रहा है और कोई जानता भी नहीं। आयुषी, अब एक चीज पूछनी है।
0: पूछो पूछो।
1: जो मुझे बहुत टाइम से डिस्टर्ब कर रही है। ये सब सुन के ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सवाल आता है।
0: बोल तो दो।
1: अगर ये सोसाइटी इतनी अच्छी है, इतनी नॉबल है, तो उन्होंने ये ज्ञान शेयर क्यों नहीं किया? अगर उनके पास कैंसर का क्योर है या था, अगर उनके पास क्लाइमेट चेंज का कोई सोल्यूशन था, अगर उनके पास गरीबी खत्म करने का कोई तरीका था, तो उन्हें दुनिया को बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? कितने लोग मर गए और वो लोग जो मर गए वो बच सकते थे।
0: ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है उन्नति, और ये क्वेश्चन इस थ्योरी के क्रिटिक्स भी उठाते हैं, और ऑनेस्टली इसका एक ही जवाब है। वो जवाब थोड़ा सा डार्क है, लेकिन वो जवाब ऑनेस्ट है।
1: बोलो।
0: क्योंकि दुनिया रेडी नहीं थी और शायद अभी भी नहीं है।
1: मतलब
0: सोचो, अगर आजकल कोई आके दुनिया को बता दे कि ये लो कैंसर का कंप्लीट क्योर, ये लो अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी का फॉर्मूला, तो क्या होगा?
1: सब लोग खुश हो जाएंगे, लाइफ बेटर हो जाएगी।
0: कुछ लोग, लेकिन बाकी लोग? फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनकी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है कैंसर ट्रीटमेंट से, वो क्या करेगी? गवर्नमेंट्स जिनकी पावर ऑयल और एनर्जी पर बेस्ड है, वो क्या करेंगी? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो वेपन सेल करती हैं, वो क्या करेंगी? ये लोग उस नॉलेज को सप्रेस कर देंगे, या उस नॉलेज को वेपन बना देंगे, या उस नॉलेज के इन्वेंटर को ही खत्म कर देंगे।
1: ये थोड़ा सा साइनिकल व्यू है, लेकिन सच लगता है।
0: यही रियलिटी है। निकोला टेस्ला का नाम सुना है?
1: हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो तो बहुत जीनियस थे।
0: टेस्ला ने फ्री एनर्जी डिस्कवर की थी, लिटरली फ्री, वायरलेस, अनलिमिटेड एनर्जी। और क्या हुआ? उसकी फंडिंग कट कर दी गई, उसके पेपर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, वो पॉवर्टी में मरे। और आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, यही अशोका जानते थे 2300 साल पहले। दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पावरफुल नॉलेज पावरफुल लोगों को थ्रेटन करती है, तो बेटर है कि वो नॉलेज सेफ रहे। धीरे धीरे केयरफुली दुनिया को जितना हैंडल कर सकती है उतना ही दे दी जाए।
1: मतलब ये सोसाइटी एक तरह का फिल्टर है, नॉलेज का फिल्टर।
0: परफेक्ट वे टू पुट इट आउट, एक फिल्टर जो डिसाइड करता है कि क्या बाहर जाए और क्या अभी नहीं, और ये फिल्टर 2300 साल से काम करता आ रहा है।
1: और ये फिल्टर कभी गलत भी हुआ है? मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कुछ ऐसा बाहर जाने दिया जो नहीं जाना चाहिए था?
0: बहुत अच्छा सवाल, और ऑनेस्टली शायद हाँ। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, 2300 साल में कुछ तो चूक हुई होगी ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक एग्जाम्पल माना जाता है कुछ रिसर्च में, न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि हिरोशिमा नागासाकी में गिरा। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो शायद बाहर नहीं जानी चाहिए थी, और कुछ थ्योरी बिलीवर्स कहते हैं कि ये 9 अननोन मैन की एक फेलियर है कि वो इसको रोक नहीं पाए।
1: यार ये तो बहुत हैवी है। मतलब हिरोशिमा में जो हुआ, अगर वो थ्योरी सच है, तो वो एक फेलियर थी सोसाइटी की
0: शायद, या शायद वो एक डेलिब्रेट डिसीजन था कि इस बार इंसानियत को ये दिखाना जरूरी था कि न्यूक्लियर वेपन कितनी बड़ी गलती है, ताकि वो दोबारा यूज ना हो। और एक्चुअली देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद किसी ने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया, चाहे कितना भी टेंशन आ जाए। कोल्ड वॉर आया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आई, लेकिन बटन नहीं दबाया गया।
1: मतलब पेनफुल लेसन था, यानी कि लोगों को दर्द तो हुआ लेकिन लोगों ने एक सबक सीखा ताकि आगे ऐसा कभी ना हो।
0: इस एंगल से सोचो तो हाँ, कुछ चीजें होनी पड़ती है ताकि ह्यूमैनिटी सीख सके, और 9 अननोन मैन वो इंश्योर करते हैं कि वो लेसन सीखा जाए, चाहे कॉस्ट कितनी भी हो।
1: यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स एथिक्स है। एक तरफ लगता है कि ये सही नहीं कि कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं बाकी सबके लिए, दूसरी तरफ लगता है कि अगर ये ना होते तो शायद आज हम भी ना होते।
0: और यही इस पूरी थ्योरी की ब्यूटी है, ये ब्लैक और व्हाइट नहीं है, ये एक मॉरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी है जिसमें हीरोज भी कॉम्प्लिकेटेड हैं और डिसीजंस भी कॉम्प्लिकेटेड।
1: अब एक और सवाल है,
0: पूछो।
1: ये जो 9 की संख्या है, 9 क्यों, कोई सिग्निफिकेंस है क्या 9 का?
0: ओह बहुत अच्छा सवाल है। हाँ देखो, 9 की संख्या इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। 9 ये एक कंप्लीट नंबर माना जाता है। 9 प्लैनेट्स, 9 रस, 9 जेम्स, नवरत्न, कोंडरक टेम्पल का चक्र, वहाँ 8 स्पोक्स हैं और एक सेंटर है, यानी कि 9। और ये सिंबल, ये 8ों डायरेक्शन प्लस सेंटर, ये एक कंप्लीट यूनिवर्स का सिंबल है। हर डायरेक्शन कवर्ड है, हर एंगल प्रोटेक्टेड है।
1: मतलब 9 इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है, एक कंप्लीट सिस्टम।
0: हाँ, और एक डायमेंशन और है, 9 एक ऐसा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 9 ही वापस आता है। 9 times 2 18, 8 और 1 9, 9 times 9 81, 8 और 1 9, हमेशा 9। कोई भी मल्टीप्लिकेशन करो, रिजल्ट हमेशा ही 9 होगा।
1: यार ये तो सच में मैजिकल लगता है, मैथमेटिक्स में भी ये स्पेशल है।
0: और अशोका ने ये चूज किया डेलिब्रेटली क्योंकि ये सोसाइटी भी ऐसी थी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी टाइम जाए, ये अपने कोर वापस आएगी, ये अपने कोर पर वापस आएगी, अपने मिशन पर, अपनी पर्पस पर, 9 की तरह हमेशा खुद पर वापस।
1: यार इतनी डीप, यार ये इतनी डीप सिंबलिज्म है कि सच में फील हो रहा है कि ये सिर्फ एक कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता।
0: और उन्नति, अब वो लास्ट चीज बताती हूँ जो पूरी कहानी को अलग ले जाती है।
1: फाइनली बोलो जल्दी।
0: तो ये सोचो, पूरे एपिसोड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं 9 अननोन मेन रियल थे या नहीं, कि ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे या नहीं, कि ये आज भी हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ।
1: कौन सा सवाल?
0: क्या फर्क पड़ता है?
1: मतलब
0: ये, चाहे ये सोसाइटी रियल हो या नहीं, चाहे अशोका ने एक्चुअली 9 लोगों को 9 किताबें दी हो या फिर नहीं, चाहे आज भी कोई गार्डियन हो या फिर ना हो, इस सबसे अलग अशोका की जो सोच थी वो तो रियल थी। एक इंसान ने जो डिसीजन लिया कि मैं अपनी बाकी पूरी लाइफ इस बात को एंश्योर करने में लगाऊंगा कि वो गलती दोबारा ना हो, वो तो रियल था ना।
1: हाँ ये तो सच है।
0: और उस सोच में जो मैसेज था, वो मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि ज्ञान पावरफुल होता है, ज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। और उस सोच में जो मैसेज था, वो मैसेज आज भी उतना रेलेवेंट है कि ज्ञान पावरफुल होता है, ज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो सबके लिए नहीं होती, जो सिर्फ एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी के बाद शेयर की जानी चाहिए।
1: यार ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कही है।
0: और पर्सनली मुझे ये थ्योरी इसलिए इतनी ज्यादा पसंद है क्योंकि अगर ये सच है तो अमेजिंग है, अगर ये सच नहीं है, अगर ये सिर्फ एक स्टोरी है, तो भी ये एक ऐसी स्टोरी है जो 2300 साल से चल रही है। और जो स्टोरी 2300 साल तक चलती रहे, जिस स्टोरी में लोगों का इंटरेस्ट 2300 साल बाद भी उतना ही हो, वो स्टोरी अपने आप में कुछ जरूरी कहती है।
1: क्या कहती है?
0: ये कहती है कि इंसान अंदर से चाहता है कि कोई हो जो दुनिया को देख रहा हो, कोई हो जो इंश्योर कर रहा हो कि सब ठीक रहे, कोई हो जो इतना वाइज हो, जो इतना सेल्फलेस हो कि वो काम करे बिना किसी रिवॉर्ड के।
1: और ये स्टोरी लास्ट में आते आते बड़ी इमोशनल हो गई।
0: और वो नीड, वो डिजायर, वो होप, ये बिल्कुल रियल है, चाहे 9 अननोन मेन रियल हो या ना हो।
1: सच कहूं पूरी ईमानदारी के साथ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि काश काश ये रियल हो। और अब मुझे लगता है ना कि इस कहानी का नाम द 9 अननोन मैन नहीं, द 9 मिस्टीरियस मैन होना चाहिए।
0: भाई देखिए, मिस्ट्री तो उन्नति इसमें काफी सारी थी, क्या किसने कब क्यों किया, और जैसे जैसे इसकी एक परत उतरती गई हमारी आंखें और भी ज्यादा बड़ी होती गई।
1: इतिहास गवाह है और लोक कथाएं भी गवाह है, लेकिन अंतिम सच हमेशा छिपा रहता है। सम्राट अशोक की ये गुप्त संस्था, ये कहानी है या पूरी तरह से कल्पना, ये तो आप ही बताएंगे। ना पूरी तरह से सच, ना पूरी तरह से कल्पना। लोग इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं और समझते हैं। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह ना देखें, बल्कि इसे उस छिपे हुए रहस्य की तरह देखें, उस छिपे हुए इतिहास की तरह देखें जिसमें सच्चाई भी हो सकती है। अब आप इसे किस नजरिए से देखने वाले हैं, या आप हमें जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।
0: तो मिलेंगे दोस्तों आपके अपने वाले शो पर्दा के नेक्स्ट एपिसोड में एक और रहस्य का पर्दा उठाने।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आजकल पुराने गानों में थोड़ी सी बीट्स देकर उन्हें नया रंग रूप देकर नई फिल्मों में दिया जा रहा है, मगर ये काम बहुत पहले से किया जा रहा है। पड़ोसन फिल्म का क्लासिकल कॉमेडी सॉन्ग कैसे भूल सकते हैं हम, जो है एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार करके श्रृंगार। और झुमरू का ये दर्द भरा गीत कोई हमदम ना रहा। ये दोनों गाने इससे पहले दो अलग अलग फिल्मों में सुनाई दिए हैं। एक चतुरनार सॉन्ग 1941 की फिल्म झूला के लिए राष्ट्रीय कवि प्रदीप ने लिखा था, जिसे किशोर कुमार की सलाह पर पड़ोसन फिल्म में गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने दोबारा लिखा। इसी तरह कोई हमदम न रहा 1936 की फिल्म जीवन नैया का गीत है, जिसे झुमरू में किशोर कुमार ने गाया। ओरिजिनल दोनों गाने अशोक कुमार पर फिल्माए गए थे और उन्होंने ही इसमें आवाज भी दी थी। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, जो है गोंडा शहर की धड़कन पर भूले बिसरे गीत, जो लेकर आई है मैं यानी आपकी आरजे अनोखी। हमारी आज की कड़ी के नायक या नायिका का नाम डिस्क्लोज करने से पहले, ये दोनों ही बेहद लोकप्रिय गीत जो कि एक सैड और एक कॉमेडी सॉन्ग है का आनंद लेके आते हैं।
1: एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, ठाड़े अपने द्वार जिया ने किसो जात, एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो ऐसी चतुर।

अभी हमने जिन दोनों सॉन्ग्स को एंजॉय किया उसका ओरिजिनल म्यूजिक दिया था पहली प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा, सरस्वती देवी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जद्दन बाई को हिंदी फिल्मों की पहली महिला संगीतकार माना जाता है, पर उन्होंने अपने ही बैनर की फिल्मों में संगीत दिया था। लेकिन सरस्वती देवी एक फुल टाइम म्यूजिक डायरेक्टर थी जिन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। तो अब आप जान ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, एकदम सही समझा आपने, आज हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडियन हिंदी म्यूजिक और सिनेमा, इनके विषय में और भी जानेंगे, पर उससे पहले इन्हीं के कंपोजिशन और डायरेक्शन, साथ ही साथ इन्हीं की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग हो जाए। मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के उस पार, बने रहे हमारे साथ अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानस्ते 89.6 FM पर।

गाड़ी है गांव वाले इसे पागल समझते हैं, लेकिन बस इसी ने मेरे मरण को समझा और मेरा साथ दिया।

है जय जा मेरी तरफ से उससे कहना के अंत समय वो तुझसे मिलना चाहता है।

तो आज हम बात कर रहे हैं फुल टाइम फर्स्ट फीमेल इंडियन हिंदी सिनेमा म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी की, जिनका असली नाम था खुर्शीद मिनोचर होमजी, जो कि एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके म्यूजिक के प्रति लगाव को देखकर इनके पिता ने इन्हें म्यूजिक की शिक्षा दिलाई। जब मुंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की शुरुआत हुई तो वहाँ होमजी सिस्टर्स यानी सरस्वती देवी और उनकी बहनों की ऑर्केस्ट्रा पार्टी बेहद मशहूर हुई। और आपको ये जानकर तनिक भी हैरानी नहीं होगी कि इसी जगह से सिंगिंग सरस्वती जी की आदत बन गई। हालांकि ये कॉलेज टाइम से ही स्टेज परफॉर्मर थी और बाद में भी इन्होंने लोगों का दिल अपनी सिंगिंग से जीता, पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में सिंगिंग इनका रूटीन बन गया था। तो आइए प्रतिभाओं को निखारने वाले की म्यूजिक डायरेक्शन वाला ये सॉन्ग सुन लेते हैं।

सरस्वती देवी की मुलाकात म्यूजिक फंक्शन में हिमांशु राय से हुई, जो उस समय बॉम्बे टॉकीज शुरू करने जा रहे थे। हिमांशु राय के आग्रह पर सरस्वती देवी ने बॉम्बे टॉकीज में बतौर संगीतकार काम करना शुरू कर दिया। बल्कि दोस्तों यूं कहूं कि पूरा म्यूजिक डिपार्टमेंट उन्होंने अपनी देखरेख में रखा और निर्देशन भी उन्हीं के अनुसार होने लगे। सभी एक्सपर्ट्स म्यूजिशियन को उन्होंने ही चुना। यहाँ तक कि मशहूर संगीतकार SN त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे टॉकीज में उनके सहायक के रूप में ही की थी। सरस्वती जी के साथ उनकी एक बहन मणिका ने भी बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन किया, लेकिन बोथ ऑफ सिस्टर्स के फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से हड़कंप मच गया। हर जगह उनका विरोध होने लगा। एक बार तो हालात ये हुए कि वे हिमांशु राय के साथ कहीं जा रही थी और भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया और सरस्वती देवी को बाहर खींच लिया। आगे की कहानी भी आपसे बताऊंगी, पर उससे पहले ये खूबसूरत और छुटकुसा सॉन्ग आप सभी के लिए।

जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सॉन्ग सुना आपने, मैं बन की चिड़िया। इस सॉन्ग पर जाने के पहले मैं आपको बता रही थी सरस्वती देवी के साथ बेकाबू हुए पारसी समाज के भीड़ के किस्से के बारे में। जब सरस्वती देवी को भीड़ ने गाड़ी से बाहर खींचकर अपना क्रोध जताया तो हिमांशु राय ने ये बोलकर उनकी जान बचाई कि ये सरस्वती देवी नहीं बल्कि देव की रानी है। लेकिन इस विरोध को तो खत्म करना ही था, और फिर सोचा गया कि खुर्शीद हुम जी मिनोचर नाम को ही बदल दिया जाए। इसके बाद दोनों बहनों का नाम बदल दिया गया, तो इस तरह इनका नाम खुर्शीद हुम जी से सरस्वती देवी हुआ। बावजूद इसके सरस्वती देवी की पहली फिल्म जवानी की हवा, जो कि बॉम्बे टॉकीज की, इस फिल्म का पारसी काउंसलिंग ने जमकर विरोध किया। यहाँ तक जुलूस भी निकाले गए। मामला तब शांत हुआ जब बॉम्बे टॉकीज रॉबर्ट ऑफिस ट्रस्ट के सदस्यों ने बीच बचाव किया और खूब समझाया बुझाया, और जैसा कि होता आया है, हर मामला एक दिन ठंडा पड़ जाता है। ये विरोध भी ठंडा हुआ और सरस्वती देवी अपने कामों में आगे बढ़ने लगी।

श्रोताओं, कहते हैं कि प्लेबैक आने से पहले ही सरस्वती देवी और हिमांशु राय ने प्लेबैक टेक्निक का एक एक्सपेरिमेंट कर लिया था। जवानी की हवा फिल्म में सरस्वती देवी की बहन चंद्रप्रभा पे एक गाना फिल्माया गया, मगर उस दिन उनका गला खराब था तो हिमांशु राय की सलाह पर सरस्वती देवी ने वो गाना लाइव गाया और चंद्रप्रभा जिन्हें ये गाना गाना था उन्होंने उस पे एक्टिंग की और सिर्फ होंठ हिलाया। इस वाक्या का जिक्र सरस्वती देवी ने एक इंटरव्यू में किया था। सरस्वती देवी शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता थी, मगर फिल्मों में उनकी काबिलियत उभर कर नहीं आ पाई क्योंकि उस दौर में हीरो हीरोइंस को अपने सॉन्ग्स खुद गाने पड़ते थे। उस दौर की कुछ और बातें होंगी आपसे, पर उससे पहले ये सॉन्ग।

एक बार पुनः से स्वागत है और इस्तकबाल है आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में। मैं हूं आपकी आरजे अनोखी और हम बात कर रहे हैं इंडियन फर्स्ट फीमेल सिनेमा म्यूजिक डायरेक्टर खुर्शीद होमजी यानी सरस्वती देवी के बारे में। उस दौर में फिल्मों का संगीत भी कलाकारों की गायन क्षमता के हिसाब से देना होता था। उसके लिए ऐसी आसान धुनें तैयार करनी होती थी जिन्हें वे आसानी से गा सके, मगर यही सरल धुनें सरस्वती देवी की खूबी बन गई। ऐसे ही गीत सुनाई दी 1936 अछूत कन्या में, जो उनकी पहली हिट मूवी थी। तो आइए सुनते हैं उसी गीत का मुखड़ा एक बार फिर, और फिर इस गीत की कहानी आपसे बताती हूँ।

मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अशोक कुमार और देविका रानी को इस गाने का रियाज पूरे एक महीने कराया गया था। इसी साल सरस्वती देवी ने जन्मभूमि फिल्म की म्यूजिक दी। इस फिल्म में एक राष्ट्रीय गीत था जिसे जेएस कश्यप ने लिखा था। इस गाने की एक कोरस की धुन को बीबीसी लंदन ने अपनी इंडियन न्यूज सर्विस की सिग्नेचर ट्यून के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो आइए जन्मभूमि मूवी से ही ये सॉन्ग सुन लेते हैं, जिनके बोल हैं ये प्यारी प्यारी बाती। आवाज देविका रानी, संगीत निर्देशन सरस्वती देविका।

सरस्वती देवी ने बॉम्बे टॉकीज के जीवन नैया, जीवन प्रभात, जन्मभूमि, वचन, प्रेम कहानी, पुनर्मिलन और झूला जैसी अनेक फिल्मों में अकेले संगीत दिया और कंगन, बंधन और नया संसार में रामचंद्र पाल के साथ मिलकर संगीत दिया, जो बहुत ही मशहूर हुआ। पर 1940 में हिमांशु राय की मौत के बाद बॉम्बे टॉकीज के हालात बिगड़ने लगे। उसके बाद सरस्वती देवी ने

उसके बाद सोहन राव के मिनखा मूवी में काम किया और कुछ अन्य बैनर तले म्यूजिक डायरेक्शन दिया, पर काम में वो सरलता ना थी जो बॉम्बे टॉकीज में थी, और फिर इन्होंने संगीत जगत से संन्यास ले लिया।

इसे पागल समझते हैं, लेकिन बस इसी ने मेरे मरम को समझा और मेरा साथ दिया।

0: नहीं, दिन छुप रहा है। दिन छुप रहा है मेरे जीवन का, और रात भी नजदीक है। जाए जा, मेरी तरफ से उससे कहना के अंत समय वो तुझसे मिलना चाहता है।
1: पागल दुनिया कहती मुझको।

तो दोस्तों इस तरह से आज हमने बात की इंडियन फर्स्ट म्यूजिक फीमेल डायरेक्टर सरस्वती देवी के बारे में। अब चलते चलते बतौर तोहफा आपको उन्हीं के फिल्म निर्देशन वाला सॉन्ग, लेकिन आज के तौर पे मतलब जब वो नए वर्जन में सुना गया तो किस तरह लगा देखे जाऊंगी। और सुनिएगा जरूर, एंजॉय करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते रहिए रेडियो गैनेस्ली 89.6 FM, जो है आपके अपने शहर गोंडा की धड़कन। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा, एक पे रहे ना, या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना, गा
1: यक चतुर ना।

0: कहाँ का गया?
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8888109400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।